सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून 2026। इसमें स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 और 55 सेकेंड हुए हैं। हम उपस्थित हैं अपनी पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी पटना है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: द्वेष जीवन की बड़ी विसंगति है। यह एक तरह की मानसिक व्याधि है। ईर्ष्यालु मनुष्य में सुख एवं स्वास्थ्य का भाव दुर्बल होता है। कई बार छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर हम अपने जीवन को बोझिल बना देते हैं। किसी भी संबंध में जल्द राय बनाने की आदत भारी असर डालती है। अच्छा तरीका यह है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें। आप अपनी जिंदगी जिएं, अपने कौशल पर भरोसा कर आगे बढ़ें। ये समझें कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है। कई बार आप खुद को बाकी लोगों की तुलना में कम समझने लगते हैं। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर, सहपाठी या घर के किसी सदस्य को खुद से आगे बढ़ते देखते हैं तो आपको ये बात पसंद नहीं आती है। आप सोचने लगते हैं कि वह तरक्की करे लेकिन वह आपसे आगे ना बढ़े। इसी भावना को द्वेष की भावना कहा जाता है। ऐसा अक्सर ऑफिस, घर, रिश्तों में होता है। जैसे आपके ऑफिस में किसी साथी का प्रमोशन होना, लाख कोशिश के बाद भी आप प्रमोशन हासिल नहीं कर पाते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करते देख आप खुद को कम समझने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। जिस काम को करने में आपका मन लगा करता था उसे करने में आपको झिझक होने लगती है और मन ही मन यह सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये द्वेष है, जिसे ईर्ष्या भी कहा जाता है। द्वेष आपके रिश्ते भी खत्म कर सकती है और उनमें कुछ खटास भी ला सकती है। आमतौर पर आप अपने पार्टनर को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यह एक सामान्य बात है और अक्सर ऐसा होता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तीसरे व्यक्ति के साथ आपका पार्टनर घुलने मिलने लगता है। आप उस तीसरे व्यक्ति को खुद से ज्यादा बेहतर समझने लगते हैं। अपने पार्टनर को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ देखने के कारण आप उन्हें खोने से डरने लगते हैं। वक्त के साथ आपको खुद को समझना चाहिए और अपने पार्टनर को भी समझाना चाहिए। हर व्यक्ति को आजादी पसंद होती है और आपको अपने साथी को एक स्पेस देना चाहिए। अगर आप साथी को किसी तरह के बंधन में रखेंगे तो वह आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और आप उससे किसी की तुलना करते हैं, यह बात आपके बच्चे को पसंद नहीं आती है। वह खुद को कमजोर समझने लगता है और आपसे अपनी बात बेझिझक नहीं कह पाता है। कई बार परिवार में अपने भाई बहन को खुद से ज्यादा तरक्की करते देख आप जाने लगते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में उससे अधिक कामयाब हो। हालांकि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। इसी कारण से आप अपने भाई बहन से द्वेष करने लगते हैं और आपके बीच प्यार और लगाव कम हो जाता है। आपको अपने मन को समझाना चाहिए, अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि अपनी तरक्की के लिए खुद ही कार्य करना होगा। ऐसा हमेशा होता है कि आप किसी को अच्छा करते देख

0: اپنی قابلیت پر شک کرتے ہیں۔ جو آپ کی خوبیاں ہوتی ہیں ان کے لیے آپ خود کو سراہتے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو عام سمجھ لینے سے ہی آپ کے کام کرنے کی شکتی کم ہو جاتی ہے۔ یدی آپ کو اپنے کام کے لیے پرشنسا نہیں ملتی ہے تو آپ کو خود کے کاری پر گرو محسوس کرنا چاہیے اور جو آپ نے حاصل کیا ہے اس کے لیے خوش ہونا چاہیے۔ کئی بار اپنے سفلتا کے لیے اتسو منانا بھی اچھا رہتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا آتم وشواس اور سمان بڑھتا ہے۔ ہمیشہ ایرشا سے ایک سیکھ لے کر آپ کو اپنی غلطیوں اور کمیوں کو سدھارنا چاہیے۔
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। अब कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनिए जैविक खेती का महत्व विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता।
2: किसान भाइयों, आज से सदियों पहले हमारी खेती के तरीके में हरी खाद, गोबर की खाद, फसल चक्र, खेत को खाली छोड़ना इत्यादि तरीकों से न सिर्फ पैदावार बनी रहती थी बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कायम रहती थी, बीमारियां भी कम लगती थी और मिट्टी की दशा स्वस्थ थी। परंतु आज बढ़ती हुई आबादी को ज्यादा अनाज चाहिए और ऐसे में ज्यादा उपज देने वाले बीज की आवश्यकता होती है, पर इन सबके साथ कम उर्वरक से या बिना उर्वरक के पैदावार कैसे बढ़ाएं, ये आज बड़ी समस्या है और इसी समस्या का समाधान जैविक खेती है। जैविक खेती से मतलब है ऐसी खेती जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग न हो, चाहे हमें पोषक तत्व ही देना हो या खरपतवार अथवा कीटों का नियंत्रण करना हो, सभी चीजों के लिए प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। खाद के रूप में गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कल्चर द्वारा तैयार खाद, पौधों के बचे हुए हिस्से इत्यादि का प्रयोग कर पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। कुछ ऐसी दलहनी फसलों का प्रयोग अपनी खेती प्रक्रिया में की जाए जिससे मिट्टी में विभिन्न प्रकार के राइजोबियम जीवाणु का टीकाकरण मिट्टी में हो जाए और ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को इकट्ठा कर मिट्टी में मिलाते रहे। उसी प्रकार धान के खेत में नील हरित शैवाल, अजोला इत्यादि भी फसल को नाइट्रोजन प्रदान करने में सहायक होते हैं। प्रकृति के साथ जोड़ने से पौधों के अंदर किसी भी प्रकार के विष का समायोजन रसायन के रूप में नहीं होता जिससे मानव या पशु पर इसका बुरा प्रभाव नहीं होता। खरपतवार के निवारण के लिए मशीन या स्वयं करने से भी खरपतवार निरोधी रसायन से भी बचा जा सकता है। जैविक पदार्थ के बढ़ने से मृदा के अंदर कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात न तो ज्यादा होता है न ही ज्यादा कम होता है। इस प्रकार देखा जाए तो जैविक खाद के कई गुण हैं, जैसे इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रदूषण नहीं होता क्योंकि उर्वरक या अन्य खरपतवार कीटों का निवारक रसायन प्रयोग के द्वारा नहीं होता। कम से कम मृदा की छेड़छाड़ मशीनों से होती है। जैविक अंश के बढ़ने से मिट्टी की दशा में आमूल परिवर्तन होता है, उनकी जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और प्राकृतिक रूप से मृदा का तापमान भी बरकरार रहता है। दलहनी फसलों के समावेश से अत्याधुनिक नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से जीवाणुओं के प्रभाव से मिट्टी में जैविक कार्बन का समावेश बढ़ता जाता है और अंत में जैविक खेती द्वारा प्राप्त अनाजों की कीमत अधिक मिलने के कारण किसान बंधुओं की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। इस प्रकार किसान बंधु जैविक खेती से हम अधिक उपज के साथ साथ अच्छे वातावरण को बनाए रखने में भी सहायक हो सकते हैं। समय की मांग है कि अब हमें पारंपरिक खेती से हटकर जैविक खेती पर ध्यान देना चाहिए।
1: जैविक खेती का महत्व, इस विषय पर वार्ता भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब यहीं समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमरीका

0: अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में बिहार गान।

प्रेम की सीमा इतनी व्यापक होती है कि इसमें ईश्वर सहित पूरी सृष्टि समाहित हो जाती है। प्रेम में समर्पण भाव को सर्वश्रेष्ठ भाव माना गया है। कृष्ण कन्हैया के प्रेम में गोपियों ने अपना जीवन ही अर्पण कर दिया और खुद को कान्हा का गुलाम बना लिया।

प्रेम में व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण से गैया बनकर उन्हें ढूंढने कहती हैं। वो कहती हैं, मुझे वैसे ही ढूंढो जैसे अपनी खोई गैया को ढूंढते हो।

हनुमान आदित्य के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं रामचरितमानस से पाठ, मुख्य सर भूपेंद्र सिंह का है।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस पाठ, मुख्य स्वर महेंद्र सिंह का था। अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर विजय प्रकाश राय से चंद्रमणि भारती की बातचीत। विषय है दस्त, कारण, लक्षण और बचाव।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ दूरभाष पर उपस्थित हैं डॉक्टर विजय प्रकाश राय। आप राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बाल स्वास्थ्य हैं। आज हम बातचीत करेंगे डायरिया अर्थात दस्त पर। सर, डॉक्टर साहब, हम पहले पूछना चाहेंगे कि डायरिया के कारण क्या होते हैं, खास करके गर्मी का जो मौसम आया हुआ है उसमें डायरिया की शिकायत बहुत लोगों के साथ होती है, तो इसके कारण क्या है और लक्षण क्या है इसके?
2: जी, आपने सही पूछा है कि गर्मी का मौसम आ गया है। डायरिया मुख्य रूप से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और बच्चों में यह ज्यादा पाया जाता है, और गर्मी और बरसात के मौसम में अपने भारत में इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। लक्षण यह है कि अगर माँ या गार्जियन यह समझ रहा है कि बच्चे का दस्त यानी जो शौच की संख्या बढ़ गई है और उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो उसको हम दस्त मान करके चलते हैं
1: जी।
2: यानी सामान्य कल तक बच्चा जितनी बार शौच कर रहा था उससे उसकी संख्या बढ़ गई हो और उसमें पानी की मात्रा अधिक हो गई हो, तो इसको हम लोग दस्त मान करके चलते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, हम ये भी कहना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, और इसका एक कारण ये भी होता है कि जो खाना बनाया जाता है खास करके ग्रामीण परिक्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में भी जो बासी खाना हो जाता है, खाना बहुत जल्द ही बर्बाद हो जाता है गर्मी के मौसम में, तो उसको भी कई लोग खा लेते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे और क्या सुझाव देंगे हमारे श्रोताओं को कि क्या करना चाहिए?
2: देखिए, मैं पूरे डायरिया के बारे में ही एक सुझाव देना चाहूंगा कि चूंकि यह दूषित भोजन और पानी से ही फैलता है, और मुख्य रूप से अगर स्वच्छता की विधियों को हम नहीं अपनाते हैं तो इसका प्रकोप ज्यादा होता है या बढ़ता है या फैलने का माहौल तैयार करता है। जैसे शौचालय का प्रयोग न करना, अगर बच्चे या इन्फेक्टेड लोग खुले में शौच करते हैं तो अगर वो डायरिया से ग्रसित हैं, उनके शौच से फिर वो कीटाणु या विषाणु कई माध्यमों से फिर भोजन तक पहुंचते हैं। दूषित हाथ के माध्यम से पहुंच सकते हैं, मक्खियों के माध्यम से पहुंच सकते हैं, हवा के माध्यम से पहुंच सकते हैं, और उन खेतों में अगर हरी सब्जियां या सलाद वाले जो खीरा टमाटर इत्यादि हैं वे भी दूषित होते हैं, उनको भी अगर स्वच्छता से धो करके नहीं खाया जाए तो इस तरह से डायरिया होने का चांसेस रहता है। आपका प्रश्न था कि बासी भोजन से,
1: जी जी,
2: तो मुख्य रूप से ये तरीका हुआ कि शौच के बाद खाना खाने से पहले, खाना पकाने से पहले अगर साबुन से बढ़िया से हाथ अगर हम धोते हैं तो बच सकते हैं डायरिया के प्रकोप से।
1: जी।
2: बाहर निकलने पर जूतों का प्रयोग हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो,

0: कहीं से प्रदूषण उसमें न आए। खास करके अर्बन एरिया शहरी इलाकों में कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो पानी की सप्लाई है वो कहीं पर कंटामिनेट हो जाती है सीवरेज से,
1: पाइप टूटा रहता है,
0: वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमारा डायरिया फैलने का कारण होता है
1: जी।
0: और गर्मी और बरसात में ये जीवाणु और जो विषाणु होते हैं जो डायरिया या फूड पॉइजनिंग भी करते हैं, और वो उच्च तापमान में और ह्यूमिड वातावरण में जिसमें नम्रता ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, उस माहौल में वो जल्दी पनपते हैं, जल्दी बढ़ते हैं। इस प्रकार से भोजन को वो ऐसा विषैला कर देते हैं कि अगर हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो उससे भी डायरिया होने का, उल्टी होने का चांसेस रहता है। तो बिल्कुल यही है कि खाना फ्रेश खाएं, उसे ढक करके रखें।
1: कई बार ऐसा देखा जाता है कि डायरिया अथवा जो भी बीमारी होती है तो ग्रामीण परिवेश में आम लोग जो होते हैं वो सामान्यतः जो प्रयोग में लाई जाती हैं दवाएं वो उपयोग कर लेते हैं, डॉक्टर साहब को नहीं दिखाते हैं, अस्पताल में जाकर नहीं दिखाते हैं, खुद से चिकित्सा करने लगते हैं। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि उन लोगों को अस्पताल कब जाना चाहिए और किन किन दवाइयों का सामान्यतः प्रयोग करना चाहिए।
0: डायरिया के बारे में कई तरह के कार्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी चलाए जाते हैं जिससे जनता में अवेयरनेस लाया जा सके। और प्रत्येक वर्ष बरसात के समय में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के माध्यम से घर घर जा करके आशा बहने 5 साल तक के उम्र वाले बच्चों वाले घरों में ORS का पैकेट देती हैं, ORS बनाना सिखाती हैं, डायरिया कैसे फैलता है ये बताती हैं और डायरिया से कैसे बचा जाए ये बताती हैं, और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, साथ ही कब हमें चिकित्सक से दिखाने की जरूरत होती है, ये सारी चीजों पर चर्चा होती है। तो मैं इसको पुनः आम जनता के लिए बताना चाहता हूँ कि डायरिया होने पर बच्चे को खतरे जो होते हैं वो पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस, शुगर की कमी, इन वजहों से बच्चा सीरियस होता है और कभी कभी मृत्यु तक हो सकती है। और अगर हम सही समय पर ORS का प्रयोग शुरू कर दें तो डायरिया सहारे होने वाली मौत को हम लोग बचा सकते हैं
1: जी। डॉक्टर विजय प्रकाश राय, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बाल स्वास्थ्य, आपने आकाशवाणी को इतना समय दिया और दस्त के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी छोटी छोटी जानकारियों से रूबरू करवाया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: दस्त, कारण, लक्षण और बचाव, इस विषय पर डॉक्टर विजय प्रकाश राय से चंद्रमणि भारती की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम हालचाल में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे। प्रातः 7:15 पर शंभुराम और साथियों की आवाज़ों में कुछ बज्जिका लोकगीत और 7:25 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे किशोरी अमोनकर का गायन। प्रातः 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी और 10:30 पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिले के अंतर्गत वरिष्ठ चित्रकार श्यामल दास से सचिन कुमार की बातचीत आप सुनेंगे। बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम प्रतिदिन आप सुनते हैं दोपहर 12:00। इसके तहत आज सुनिएगा कुछ भोजपुरी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे ब्रजकिशोर आरती और कृति उपाध्याय। और दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण होगा। रात 9:30 पर रेडियो नाटक, रात 10:00 लोक संगीत का कार्यक्रम गूंज बिहार का प्रसारण होगा और रात 10:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लेंगे।

0: श्रोताओं, ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्यशश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां संपर्कं च समेत्य देशद्वयोः संबंधानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिणपूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढ़यिष्यति। वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
4: I am confident that this comprehensive agreement
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
4: of our shared future.
1: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षा मंत्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमंत्री रक्षामंत्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्।

0: प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉ संवितपात्रवर्यः नरेन्द्रमोदी प्रशासनस्य द्वादशवर्षाणां सेवायाः विषये संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले CBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार एशियाई खेलों में रजत

0: पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हालचाल के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और अपने स्क्रीन टाइम को कैसे कम करें, साथ ही कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे। तो सबसे पहले जानिए इतिहास में आज के दिन का महत्व। श्रोता, इतिहास में 2 जून का दिन विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भारतीय राजनीति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। इसी दिन वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिष्ठित अकादमी की स्थापना हुई। चंद्रमा पर मानव मिशनों की राह आसान करने वाला एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष अभियान सफल हुआ और दुनिया ने पहली बार किसी ब्रिटिश राज्याभिषेक समारोह का सीधा टेलीविजन प्रसारण देखा। भारत के इतिहास में भी ये दिन खास महत्व रखता है, क्योंकि इसी तारीख को देश को अपना 29वां राज्य तेलंगाना मिला। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र हम यहाँ करते हैं। 1739 में वैज्ञानिक शोध के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना हुई। 1953 में लंदन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह आरंभ हुआ। इसे पहली बार विश्व भर में दूरदर्शन से प्रसारित किया गया। 1966 में अमेरिकी यान सर्वेयर एक पहले ही प्रयास में चंद्रमा पर उतरा। 2005 में भारत, रूस, चीन, व्लादिवोस्तोक सम्मेलन समाप्त हुआ। साल 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। इसके अलावा कुछ महान हस्तियों के जन्म और निधन की बात करें तो 1878 में वालेस हार्टेल का जन्म हुआ। वालेस हार्टेले, जो RMS टाइटैनिक पर बैंड लीडर थे और जहाज में डूबते समय संगीत बजाते थे, उनके इस साहस और इस जुनून को दुनिया भर के लोगों ने सराहा। उनका जन्म इंग्लैंड के लंका शायर में हुआ था। 2 जून को बॉलीवुड के महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर का साल 1988 में निधन हुआ था। तो ये थे आज के दिन का इतिहास। हम आगे बात करेंगे अपने स्क्रीन टाइम को कैसे कम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं मुकेश और साथियों की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

श्री 420 फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मुकेश की और मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था श्री 420। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी शंकर जय किशन ने। श्रोता, अब बात स्क्रीन टाइम की करें तो फ़ोन पर अनावश्यक समय बर्बाद करना एक गंभीर आदत बन सकती है जो मानसिक तनाव नींद में कमी भी ला सकती है। इस आदत को कम करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य अनावश्यक ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें, क्योंकि ये ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण है। स्क्रीन टाइम सीमा तय करें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप्स के लिए समय सीमा निर्धारित करें। फ़ोन को ग्रेस्केल मोड यानी ब्लैक एंड वाइट मोड में डालें, जिससे स्क्रीन कम आकर्षक लगती है और आपकी लत भी कम होती है। साथ ही होम स्क्रीन को व्यवस्थित करें। ध्यान भटकाने वाले ऐप्स को हटा दें या उन्हें फोल्डर में छुपा दें। सोते समय या काम करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें। समय देखने के लिए फ़ोन उठाने से आप अक्सर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, इसलिए घड़े का इस्तेमाल करें। ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करना दुष्प्रभाव भी ज़्यादा हो सकता है। आँखों में तनाव, गर्दन में दर्द और सिर दर्द जैसी मानसिक समस्याएँ भी बढ़ सकती हैं। इससे एकाग्रता में कमी आती है, तनाव और नींद की कमी आती है और सामाजिक अलगाव भी होता है। परिवार और दोस्तों के साथ आमने सामने की बातचीत में भी कमी देखी जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम दोस्तों के साथ भी बैठे रहते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ भी होते हैं तो एक दूसरे से बात करने के बजाय फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताते हैं। तो इसलिए फ़ोन पर कम समय बिताएँ और अपनों का साथ दें, अपनों से बातें करें।

मशहूर फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। बोल थे संतोष आनंद के और धुन बनाए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये थे कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही कार्यक्रम हालचाल अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता अब आइए सुनते हैं शंभूराम और साथियों की आवाज़ों में कुछ बच्चे का लोकगीत। सबसे पहले सुनिए ये लोक भजन।

शुभोराम, और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे कुछ भज्जिका लोकगीत। अब कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए किशोरी अमोनकर का गायन राग अहीर भैरव।

0: किशोरी अमोनकर का गायन अभी आप सुन रहे थे, राग अहीर भैरव। इसके साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त हुआ।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर। इसमें स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली

0: योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।

0: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2-3 ब्रांचेस।
0: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: 21 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
4: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले CBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ATS ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। ATS ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्ता ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन फ्लाइंग सेज कंट्री हिज कंट्री

0: एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कुश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। और हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। म्यांमार के सदर ओमिन ऑनलाइन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमार के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तिजारत, दिफा, तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए वसीतर मौजूआत पर बातचीत की। म्यांमार के सदर भारत के 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामानिकारों को जानकारी देते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के इख्तदारे आला और इलाकाई सालिमियत के तईं भारत की हिमायत का इरादा किया और तरफैन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मुनाफी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के बेजा इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की।
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the president has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
0: खारिजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने खास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, तवानाई और मसनूई जहानत जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमार के सदर आला सतह के वफद के हमरा आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबारी और सनती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है और अब मुजाकरात में चंद मामूली उमूर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमरीकी टीम दोतरफा तिजारती मुआहदे के पहले मरहले को हतमी शक्ल देने के बारे में बातचीत के लिए नई दिल्ली आई हुई है। ये बातचीत नई दिल्ली में आज से जुमेरात तक जारी रहेगी। कॉमर्स के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन भारत के आला मुजाकरातकार हैं, जबकि अमरीकी टीम की सरबराही उसके आला मुजाकरातकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के आला अहदेदारों और कारकुनान के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल तंजीमी तौसी और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने से मुतालिक बातचीत के कलीदी निकात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने 12 साल मुकम्मल कर रही है और हर किसी ने ये महसूस किया है कि कैसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में हर शोबे में तरक्की रूनुमा हुई है। जनाब पात्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में बीजेपी और एनडीए को मुल्क की 22 रियासतों में खिदमात अंजाम देने का मौका हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम हुकूमत की जानिब से ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक किए गए इकदामात का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़िश्ता 12 साल में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक इकदामात में नुमाया तब्दीली आई है। हुकूमत की जानिब से हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, रोज़गार के मौके और मुआशी शमूलियत के लिए किए गए इकदामात इस तब्दीली के मुहर्रिक हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, जिसका आगाज 2015 में किया गया था, करोड़ों ख्वातीन अपने कारोबार को शुरू करने और वसअत देने के लिए ज़मानत से मुबर्रा कर्ज हासिल कर पाई हैं। मस्कुरा स्कीम के तहत इस साल मार्च के आखिर तक 40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत का कर्ज दिया जा चुका है, जिसमें से 17 लाख करोड़ रुपए ख्वातीन को दिए गए। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए तिरुपुर तमिलनाडु की रिहायशी वंशीरी ने बताया,
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक

0: शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उमानिया जैसी कलीदी स्कीमों की बदौलत बैंकारी बचत और कारोबारी प्लेटफॉर्मों तक ख्वातीन की पहुंच बढ़ी है। जनधन योजना के तहत ख्वातीन के 33 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश में शिमला की रिहायशी सरोज बाला ने कहा कि हुकूमत की स्कीमों से मुतालिक रकम अब सीधे उनके बैंक खाते में मुंतकिल की जाती है।
2: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: इख्तराई प्रोग्रामों और मौजूद पॉलिसियों के साथ ख्वातीन एक खुद कफील और सबकी शमूलियत वाली मईशत को तश्कील देने में अहम रोल अदा कर रही हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: सुप्रीम कोर्ट में नौ तकरीर शुदा 5 जज आज हलफ लेंगे। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकरीरी की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने तलबा के लिए नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने ये जानकारी दी है। CBSE ने तलबा को ये सलाह दी है कि वो नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए दरख्वास्त देने के तरीके के बारे में हिदायत के ताल्लुक से वीडियो को ध्यान से देखें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूनेस्को आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। मजकूरा मकाम रियासत के चमोली जिले में है। जंगलात के महकमे ने सैयाहों से अपील की है कि वो वैली के मालामाल हयातियाती तनवो और पौधों की कमयाब अकसाम के तहफ्फुज में तआवुन करें। महकमे के मुताबिक वैली ऑफ फ्लावर्स में सरेदस्त फूलों की 300 अकसाम और पौधों की मुतअद्दिद कमयाब अकसाम हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चेतना खंडपाल ने बताया कि वैली 31 अक्टूबर तक सैयाहों के लिए खुली रहेगी।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: काबिले जिक्र है कि वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहां मुश्किल जुग्राफियाई हालात हैं। मौसमी हालात और सलामती के मेयारात को मद्देनजर रखते हुए सयाहों को ज़रूरी रहनुमा खतूत जारी किए जा रहे हैं ताकि उनके सफ़र को महफूज और लुत्फानंदोज बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर ज़िले में बेतवा दरिया पर ज़ेर तामीर पुल का कुछ हिस्सा गिरने के वाक़े की तहकीक़ात के लिए आला सतह की 2 इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील दी हैं। इस सानहे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। हमीरपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया के जिला इंतजामिया की जानिब से तश्कील दी गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी इस वाक़े से वाबस्ता सभी इंतजामी, तकनीकी और तरीक़ाकार से मुतालिक पहलुओं की तफसीली जांच कर रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस हादसे के सिलसिले में कुरारा थाने में केस दर्ज किया गया है। साल 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी अब कश्ती रानी के मुकाबले वाले बड़े बैन अल-अक़वामी खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करेंगे जिसमें एशियाई खेल और वर्ल्ड कप सर्किट शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: खेलों के महकमे की वजारत ने कहा है कि इन कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया जाना तमकों के इनफरादी इम्कानात पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय कश्ती के कई खेल मुकाबलों में पायदार इस्तेहकाम कायम करने की एक और कोशिश है। जिन खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है उनमें 2024 के पेरिस ओलंपिक में खेलने वाले बलराज पंवर, एशियाई गेम्स 2022 में चांदी का तमगा

0: हासिल करने वाले अरविंद सिंह और 2022 के ही एशियाई गेम्स में दो तमगे जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। शामिल किए गए बेशतर खिलाड़ियों को खासतौर पर 2026 के एशियाई खेलों को जहन में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: हॉकी में जापान में काका मेगाहारा के मकाम पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के तीसरे और 36वें मिनट में 2 किए। वरिंद्र सिंह ने 5वें मिनट में 1 किया, जबकि शाहरुख अली ने खेल के 54वें मिनट में जोरदार तरीके से गोल किया। इस कामयाबी के साथ ही पूल ए में कोरिया और जापान के साथ साथ भारत के भी 6 पॉइंट हो गए हैं। भारत कल अपना आखिरी पूल मैच चीनी ताइपे के खिलाफ खेलेगा। केरलम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर 14 जिलों में से 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन में बारिश में शिद्दत आने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की और सालिसों के तवस्सुत से लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप को इससे मुत्तला किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर गुफ्तगू के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। अमरीकी सदर ने कहा कि अब कोई भी फौजी बेरूत नहीं जाएगा और जो फौजी वहां रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। सदर ट्रंप ने बताया कि हिजबुल्ला ग्रुप ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि सभी तरह की गोलीबारी बंद हो जाएगी, इसराइल उस पर हमला नहीं करेगा और वो भी इसराइल पर कोई वार नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने 2 MLA संदीपन साहा और ऋतव्रता बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया है। ये कार्रवाई दोनों रहनुमाओं की जानिब से पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयों, कलीदी मीटिंगों में अदम मौजूदगी और पार्टी क्यादत मुखालिफ बयान की वजह से की गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
2: शुक्रिया नीतिका। दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमा के सदर के दरमियान हुई बातचीत को नुमाया किया है। वजीर आजम ने म्यांमा के तई हिमायत का इरादा किया, जबकि सदर उमिन आउलाइन ने कहा कि म्यांमा में भारत मुखालिफ अनासिर के लिए कोई जगह नहीं है। अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की कुल तादाद 37 हो गई। रोजनामा इनकलाब की नीट इम्तिहान से मुतालिक सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का नीट इम्तिहान कंप्यूटर से कराने से इनकार, पेपर लीक की वजह से दोबारा इम्तिहान के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर की गई है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। म्यांमा के सदर उमिन आउलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर प्रदेश के नगर निकायों में भी आज हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। राज्य के प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर नहीं कराना होगा निबंधन। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम समाप्त किया। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा जिले के बरबीघा में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, साथ ही आमस पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री शेखपुरा को 53 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सामस स्थित विष्णु धाम के सौंदर्यीकरण की योजना के साथ अन्य योजना इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है कि मुख्यमंत्री पटना से यहां पहुंचते ही पहले सामस स्थित विष्णु धाम में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद सहयोग शिविर में शामिल होकर वहां मौजूद लोगों से सहयोग शिविर के बारे में फीडबैक प्राप्त करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार।
0: मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत परसौनी नाथ पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। राज्य की पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में उद्योगों, निवेशकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने में जटिलताएं दूर की जाएंगी। पटना में

0: आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को लाइसेंस निर्गत करने, अनुमति प्रदान करने और प्रक्रियाओं को सरल तथा आसान बनाने का निर्देश दिया है। श्री चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक उनके खाते में राशि भेजने को सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि संगठन पार्टी की शक्ति है और उसी के जरिए सरकार की उपलब्धियां और विचारधारा को जन जन तक ले जाना है। इसके तहत महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम को समाप्त कर दिया है। अब दुकान और प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर दुकानदारों को निबंधन नहीं कराना होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन की सहमति के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना के अनुसार अब नए लेबर कोड में 10 और इससे अधिक कर्मी रखने पर ही दुकानदारों को निबंधन कराना होगा। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नियमों का अनुपालन करते हुए सरकारी आवास खाली करना होगा। श्रीमती सिंह ने पटना में जदयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राबड़ी देवी वरिष्ठ नेत्री हैं, इसलिए उन्हें भी नियमों का सम्मान करना चाहिए। श्रीमती सिंह ने कहा कि सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई प्रतिशोध और द्वेष की भावना से नहीं की जा रही है। राजद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुरक्षा कारणों से आवास दिया गया है। इधर राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार यदि द्वेषपूर्ण राजनीति करेगी तो राजद के सभी नेता सरकारी आवास और सुरक्षा वापस कर देंगे। बेगूसराय की एमपी एमएलए अदालत ने केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जमानत दे दी है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। पटना के बिहटा स्थित इरेडिएशन सेंटर और इनलैंड कंटेनर डिपो के निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री सिंह ने कहा कि सरकार प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक और कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

0: उन्होंने कहा कि इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
1: सिर्फ जरदालू आम ही नहीं, मखाना के उत्पादन और मखाना की खरीद बिक्री और एक्सपोर्ट में बिहार जल्द से जल्द अव्वल नंबर पे पहुंचे, इसकी परिकल्पना हम लोग करते हैं। और उस उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह की सुविधाएं ताकि किसान से लेकर जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, उन सबको मिल सके, उसके ऊपर भी हम लोग एक चेन फैसिलिटी बनाने का काम कर रहे हैं। रेडिएशन सेंटर अभी बिहार में एक है, और भी रेडिएशन सेंटर हम लोग बिहार के अलग अलग कोने में भी खोल सके, जिससे कि इस एक्सपोर्ट फैसिलिटी को और ज्यादा सुगम बनाया जा सके।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। लोकभवन ने राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित है। लोकभवन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है। पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और बक्सर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: प्रदेश में 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन और बालू उठाव पर रोक लगा दी गई है। खान और भूतत्व विभाग ने कहा है कि आगामी मानसून के दौरान नदियों के जलस्तर में संभावित वृद्धि के मद्देनजर ये प्रतिबंध लगाया गया है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान सभी बालू घाटों पर खनन गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों में बालू की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक बनाने का निर्देश भी दिया है। निगरानी विभाग ने पूर्णिया के नगर प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी रूपक कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी पर जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया के लिए राशि की मांग करने का आरोप है। मुंगेर की एक अदालत ने न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने के मामले में मुफस्सिल थाना प्रभारी विपिन कुमार सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। वर्ष 2010 के इस मामले में मुख्य अभियुक्त की मृत्यु संबंधी रिपोर्ट नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। बिहार संग्रहालय की ओर से पटना में आज से 7 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला तथा कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह करेंगे। अररिया जिले के प्रभारी सचिव मोहम्मद सुहेल ने संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन पर संतोष व्यक्त किया है। वहीं जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने

0: एक महिला के साथ उत्पीड़न मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले के फुलहर से प्राप्त अभिलेख युक्त बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा और पुरावशेष को मिथिला ललित संग्रहालय को सुपुर्द कर दिया गया है। गोवा में संपन्न राष्ट्रीय महिला मास्टर्स एथलेटिक प्रतियोगिता में भोजपुर की अंजू कुमारी ने 3 स्वर्ण पदक जीता। अंजू ने 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और रिले स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया है। पटना में 6 से 10 जून तक बिहार राज्य सब जूनियर फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन साइट फिर ठप हुई, परेशान रहे विद्यार्थी। दैनिक जागरण लिखता है, करोड़ों की सरकारी दवाओं पर नकली रैपर लगा, बांग्लादेश में तस्करी। दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और गया समेत कई जिलों के अस्पतालों से आती थी दवाएं। दैनिक भास्कर ने बिहार में काली कमाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, काली कमाई से बिहार के अफसरों की प्रॉपर्टी खरीद का खुलासा, मामाजी के जरिए बागडोगरा पहुंच रहा है बिहार के अफसरों का कैश। प्रभात खबर जेई एडवांस परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखता है, गुवाहाटी जोन के सफल छात्रों में 45% बिहार के। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर प्रदेश के नगर निकायों में भी आज हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। राज्य के प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर नहीं कराना होगा निबंधन। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम समाप्त किया। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी पटना दरभंगा से पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

हमारे सामीन को उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की जानिब से आज की पुरनूर सुबह सेहतमंद सुबह का सलामो आदाब पेश है। शगुफ्ता हाजिर है आपके रूबरू अंजुमन लेकर सामीन प्रोग्राम का आगाज़ कर

दोबारा से अंजुमन में हम आपका खैर मकदम करते हैं। सामिन, कुदरत ने हमारे मुल्क में बदलते मौसम का खूबसूरत नज़ारा बनाया है और ये निज़ाम बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हर मौसम की अपनी खूबी के साथ कुछ खामियां भी होती हैं। जी हाँ, जहाँ तपिश वाली गर्मी अनाजों और फलों और सब्जियों के पकने में अहम होती है, वहीं इस तपिश वाली गर्मी से अगर इंसान और हैवानात खुद को ना बचाएं तो जाने गंवा बैठते हैं या बीमारियों से कि चपेट में आकर बिस्तर पर लग जाते हैं। इस गर्मी के मौसम में खासकर घर के बच्चों और बुजुर्गों को महफूज रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जहाँ बच्चे मौका पाते ही धूप में खेलने निकल जाते हैं, वहीं बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अरे, हमने इससे भी कई ज़्यादा गर्मियाँ और तपिश अपने

में देखी है, पर वो अक्सर भूल जाते हैं कि उनकी बढ़ती उम्र के साथ बीमारियों को बर्दाश्त करने की उनकी जिस्मानी सलाहियतें कम हो गई हैं, इसलिए वो इससे कई गुना ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। सामिन, हम जानेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे घरों की रौनक, बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों इस गर्मी में भी सेहतमंद रहें। पर फ़िलहाल आइए एक प्यारी सी गज़ल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ, समात कीजिए।

0: जिसमें पानी की कमी ना होने देना ये बहुत अहम हो जाता है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि जिसमें पानी की कमी ना हो ताकि जिस्म बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। अक्सर इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना जिस्म में कमज़ोरी पैदा करता है। सूती और हल्के रंग के कपड़े उन्हें पहनाइए और वक्त वक्त पर उनको ठंडे पानी से नहाने की ज़रूर याद दिलाते रहिए। ज़्यादा चुस्त कपड़े ना पहनाएं ताकि उनके जिस्म में हवा ना जा सके। इसलिए ख्याल रखिए कि उनके कपड़े ढीले हों और हल्के रंग के हों, गहरे रंग के ना हों। सामिन, हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी, फिलहाल आइए आज की खास पेशकश का वक्त हुआ जाता है। समाप्त करते हैं मुज़ाकरा। उनवान है, नौजवानों के सुनहरे मुस्तकबिल की तामीर में वालिदैन का किरदार। स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा मेहमान खसूसी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। मेहमान हैं मोहम्मद आकिफ फकास और शहदाई। सामीन, शगुफ्ता आपके रूबरू हाजिर है आज एक मुज़ाकरा लेकर। क्या आप जानते हैं कि नौजवानों के सुनहरे मुस्तकबिल की तामीर में वालिदैन का किरदार किस कदर अहम होता है? जी हाँ, आज हमने इसी मौजू के तहत हमारे स्टूडियो में खास मेहमानों को मदऊ किया है। सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ आज हमारे पहले मेहमान खसूसी हैं मोहम्मद आकिफ वकास, जो कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं नालंदा से, और हमारे साथ दूसरे मशहूर सहाफ़ी हैं शहदाई साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के इस मुज़ाकरे में।
1: शुक्रिया आपका।
0: सबसे पहला सवाल तो शहदाई साहब आपसे ही है कि हमारे नौजवानों के बारे में हमें बताइए कि ये जो हमारे जो नौजवान हैं, ये नौजवान होने से पहले हम कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं। तो कहते हैं कि बच्चों का मकतब सबसे पहला जो होता है वो माँ की गोद होती है, तो वहीं घर और ख़ानदान जो है वो उनका पहला यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल कहलाता है। तो कैसा होना चाहिए हमारे इस घर का, हमारे पहले मकतब का माहौल, जिसमें हमारे बच्चे और नौजवानों के मुस्तकबिल पर अच्छे और बेहतर असरात पड़े?
1: आपने सही फरमाया। दरअसल बच्चा जब आँख खोलता है तो माँ की गोद से ही उसकी तरबियत शुरू हो जाती है, इसीलिए माँ की गोद को पहली दरसगाह कहा गया है। रहा सवाल उसके बाद, जैसे जैसे उसके अंदर होशमंदी के रुझानात पैदा होते हैं तो वो अपने घर के आसपास के माहौल से मुतासिर होता है। अगर घर का माहौल बहुत ही पुरसुकून है, बहुत ही हौसला अफजा है, एक दूसरे से जुड़ाव है, मोहब्बत का माहौल है, तो यकीनन जो बच्चा वैसे माहौल में परवरिश पाएगा वो सारी खूबियाँ खुद ब खुद उसके अंदर धीरे धीरे परवरिश पाती चली जाएंगी।
0: अच्छा, यही सवाल हम आपसे करना चाहते हैं आकिफ साहब, कि बच्चे जो अक्सर शुरू के वक्त में जो पढ़ना शुरू करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो सोते हैं, फिर उठना नहीं चाहते हैं स्कूल के लिए, कई बार माँ बाप उनको डांटते हैं, झड़कते हैं, तो उनको किस तरीके से उस वक्त में उनकी तरबियत की जाए कि वो स्कूल की तरफ बढ़ सकें, उनके अंदर रग़बत आए स्कूल के लिए और वो आसानी से उठ सकें, कैसा माहौल उनको देना चाहिए?
2: वालदैन का जो किरदार है वो काफ़ी अहम होता है, जैसा कि सर ने ही बताया। तो वालदैन नौजवानों की अखलाकी तरबियत में बुनियादी किरदार अदा करते हैं शुरू से ही। तो उसमें ये होना चाहिए कि अच्छे अखलाक, सच्चाई, ये सब सिखाएं। और जहाँ तक स्कूल की बात कर रहे थे, तो स्कूल के लिए उनको थोड़ा सा एक इंसेंटिव टाइप का दें कि आप स्कूल जाएंगे तो बदले में हम लोग कुछ इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव इन द सेंस के स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ आप उनको कुछ फराहम कर रहे हैं या ऐसा कुछ।
0: कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान दिलाना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। तुम्हारी पसंद का कोई खाना बना देंगे या लंच दे देंगे, या कोई इस तरह की चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो शायद आसानी हो जाएगी। एक और सवाल बनता है कि अक्सर बच्चों की पढ़ाई की तरफ माँ बाप पैसे बहुत खर्च कर देते हैं, और ये सवाल आप दोनों से है। तो खर्च तो करते हैं पैसे, लेकिन वो उनको वक्त नहीं दे पाते हैं, वो कभी जान नहीं पाते हैं कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे शहदाई साहब?
1: देखिए, ऐसा है कि जब तक बच्चा, स्कूल की बात तो आप छोड़ दीजिए, अगर वो आला तालीम की दरसगाहों में भी है तो उस वक्त तक भी ये सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वो देखें, परखें और अपने बच्चों के रابطے के बारे में जानें कि वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कौन उसके दोस्त हैं, दोस्तों को वो घर पे बुलाए। उससे बच्चों के बहकने के और गलत किस्म के रास्ते इख्तियार करने के ज़राए अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ स्कूल तक ही निगरानी हो, ऐसी बात नहीं है। निगरानी तो वो आखिरी, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है और ख़ुद सरपरस्त नहीं बन जाता है, उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए।
0: हाँ, चूँकि अक्सर ये सुनने में आता है ना कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए वो हमेशा ही बच्चे ही रहते हैं, जब माँ बाप बाहर।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया।
0: इस पर आकिब साहब आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं भी वही बात कहना चाहूँगा कि वालदैन की

फसल के बाद फिर हम हाजिर हैं अंजुमन के साथ। सामीन, इस गर्मी में प्यास का एहसास वैसे तो खुद बखुद हो जाता है, पर बच्चे खेल में भूल जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उन्हें पानी भी पीना है, इसलिए उन बच्चों को थोड़े थोड़े वक्त पर पानी पिलाते रहें। सादा पानी उनमें ऊब ना पैदा करे, इसलिए आप उन्हें नींबू पानी, नारियल पानी, ORS और फलों के जूस वगैरह वक्त वक्त पर पिलाते रहिए, ताकि जिसमें नमकियात की कमी पूरी होती रहे। यही काम हमें अपने घर के बुजुर्गों के साथ भी करना ज़रूरी है। हाँ, अगर उन्हें शुगर हो तो फिर चीनी की मकदार का ख्याल रखते हुए उन्हें हाइड्रेट रखिए।

0: मोहब्बत और रहनुमाई, ये नौजवानों को गलत रास्तों से बचाती है। तो इसमें दोनों चीज़ होना चाहिए कि वालदेन जो है एक दोस्त बन के भी और एक रहनुमा बन के भी बच्चों को गाइड करें ताकि राह रास्त पर चलें और एतमाद के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें।
1: ये सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि
0: जी
1: अक्सर बच्चे जो है वो दोस्त ढूंढते हैं, तो क्या हमारे वालदेन को जो है वो सबसे पहला दोस्त माँ बाप को बनना चाहिए अपने बच्चों
0: एग्जैक्टली
1: का?
0: बनना चाहिए
1: क्योंकि मुझे लगता है अगर वो दोस्त रहेंगे तो फिर ज्यादा उनके लिए आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में।
0: बेशक।
1: सवाल और ये भी आता है कि अक्सर वालदेन चाहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी बहुत हाई लेवल के पोस्ट पर पहुंचे, लेकिन कई बार बच्चे और नौजवान जो होते हैं उनका इंटरेस्ट अलग जगह पर होता है, उनकी ख्वाहिश कुछ और करने की होती है, कुछ को पेंटिंग्स वगैरह में कॉम्पिटिशन में अगर मान लीजिए इंटरेस्ट है, तो आप उनके बारे में बताइए कि वैसे जो वालदेन हैं जो अपने बच्चों की उसके जो पसंद की जो फील्ड है उसके साथ में अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं, तो फिर वालदेन उनके साथ कैसी तरबियत का निजाम करें कि जिससे उनके बच्चे आगे बढ़ सके ना कि पीछे हो जाएं?
0: इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वालदेन बच्चों को जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ आगे लेके जाएं। सपोज़ बच्चा अगर जैसे पेंटिंग ही के फील्ड में या इवन स्पोर्ट्स के फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहता है, तो वालदेन को चाहिए, यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी है कि उसी फील्ड में आगे बढ़ें जिसमें उसका इंटरेस्ट हो और पैशन हो। इससे ये फ़ायदा होता है कि उसमें लगन से और मेहनत से वो काफ़ी ज़्यादा वो जोश भी रहती है। अब ज़बरदस्ती आप उसको सपोज इंजीनियर बनना चाह रहा है, आप उसको डॉक्टरी करवा रहे हैं, तो फिर वो इंटरेस्ट उसमें उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, आप चाह कर भी उसमें नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसके तरफ अगर आप थोड़ा भी कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है।
1: एक सवाल आपसे ही है आकिब साहब, जो
0: जी
1: बच्चे यूपीएससी बीपीएससी वगैरह की जो कंपटीशन की जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें वक्त काफ़ी लगता है, उस सिचुएशन में जहाँ पे एक बार में बच्चे कम्पीट नहीं कर पाए, दो बार में नहीं कर पाए, तो उस सिचुएशन में वालदेन को क्या करना चाहिए?
0: ऐसे सिचुएशंस अक्सर आते हैं जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लोग करते हैं तो सक्सेस रेशियो इसमें भी कम होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में वालदेन को यह भी बताना चाहिए कि आप एक प्लान बी रखें। सपोज आपका नहीं होता है इनकेस 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद, तो प्लान बी रखें। और ऐसा नहीं है कि 1-2 अटेम्प्ट करके आप छोड़ दें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग के साथ भी रहे हैं, जो 3rd अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई करते हैं। यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स होते हैं जनरल के लिए, इसी तरह से बीपीएससी में भी काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, एज क्राइटेरिया होती है तब तक आप दे सकते हैं। तो उसमें वालिदैन की यही जिम्मेदारी भी है कि आप बच्चों को रोके नहीं तब तक आप प्रिपरेशन करवाएं जब तक वो दे रहे हैं। लेकिन उसमें चेक करना ज़रूरी है कि आपका मार्क्स, जैसे प्रीलिम्स दे रहे हैं आप, तो कितने मार्क्स से आपका छूट रहा है। बहुत ज़्यादा छूट रहा है तो आपको लगना चाहिए कि नहीं, या तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम सारे अटेम्प्ट्स देते जा रहे हैं, आप 5 साल बर्बाद कर रहे हैं, फिर शुरू से बैक टू द पवेलियन वहीं पर पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे केस में प्लान बी रखना चाहिए। तो दोनों चीज़, चेक एंड बैलेंस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही असेसमेंट हो जाता है प्रीलिम्स के बाद ही कि आप थोड़ा सा से छूट रहे हैं या बहुत ज्यादा से छूट रहे हैं, तो मार्जिन पे डिपेंड करता है।
1: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जब बहुत ज्यादा जब छूटते हैं बच्चे हैं वो कई बार हिम्मत हार जाते हैं, और फिर अचानक से आप सुनते ही हैं कई बार कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, कोई भी ऐसी चीज हो गई किसी भी तरह के कंपटीशन के लिए, सिर्फ वो बीपीएससी यूपीएससी की नहीं, मतलब नीट वगैरह के लिए
0: नीट
1: भी है,
0: आईआईटी
1: इंजीनियरिंग के
0: जी
1: लिए भी है, तो उस टाइम में जो कहते हैं ना कि बच्चों के अंदर एक हौसला, तो वो हौसला वालदेन किस तरीके से पैदा करें, क्या करके उनको मोटिवेट रखें कि नहीं भाई जिंदगी बहुत कीमती है?
0: जाहिर सी बात है जो भी काम हम लोग कर रहे हैं तो ज़िंदगी चलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में वो कमी पाई जाती है क्योंकि बच्चे जो खास करके 10th या 12th लेवल के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, वर्ल्डली एक्सपोजर नहीं होता है, तो ऐसे केस में वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दोस्त बन के वालदैन उनको सपोर्ट करें और ये बताएं कि जिंदगी इन एग्जाम से ज्यादा बड़ी है, जिंदगी अपने आप में खुद एग्जाम है, इसीलिए ये छोटी मोटी फेलियर्स को ऐसा ना बनाएं कि ये लाइफ एंड हो जाएगा, क्योंकि फेलियर के बाद ही सक्सेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जो शुरू में फेल किए बाद में बहुत अच्छा किए हैं, तो इसलिए उनको मोटिवेट करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: पर आप क्या कहना चाहेंगे शादाई साहब?
2: ये ऐसा है कि जो बच्चे हैं वो भले ही अपने मुस्तकबिल के बारे में एक अपनी मंजिल तय करते हैं, लेकिन उसमें वालदेन की रहनुमाई, उनकी हौसला अफजाई और सबसे बढ़कर उनका जो माहौल है वो, या जो असाज़ा हैं वो, ये सारे लोगों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ये बताएं कि सिर्फ कंपिटिटिव एग्ज़ाम ही ज़िंदगी का मकसद नहीं है, उसके अलावा भी

0: बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जिसमें कामयाबी के बेपनाह इम्कानात हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो नाकाम हो गए, फिर जब वो दूसरी लाइन में गए तो बहुत बड़े ओहदे पर वो पहुँचे और उन्होंने अपनी एक शनाख्त बनाई, पहचान बनाई। तो बच्चों के दिमाग में महदूद सोच पैदा नहीं होने देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि एक जिंदगी गुजारने के लिए बहुत वसी मैदान है। सिर्फ अफसरान और ब्यूरोक्रेट ही वो शोभा नहीं है। आज मान लीजिए कि अगर साइंस के लीजिए तो साइंटिस्ट हैं, कला के लीजिए तो रक्स है, मौसिकी है और भी बहुत सारा जो है फिल्म साजी है, जिसमें हमारे मुल्क में बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता लोग पैदा हुए। तो अगर हम सिर्फ ये बच्चों को बता दें कि डॉक्टर बनना है, वकील बनना है और अफसर बनना है, तो फिर बाकी शोबे जो हैं वो खाली हो जाएंगे ना, अगर सब लोग वही बनने लगेंगे तो। और इससे मुल्क का वकार जो है वो तो उस वक्त बुलंद होगा जब हर शोबे में एक नुमाया शख्सियतें होंगी। तो बच्चों की ये जो महदूद सोच है उससे उनको निकालना पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
1: अच्छा, अभी जो मौसम है उस हिसाब से एक बहुत अहम सवाल आ जाता है, अक्सर इतनी तपिश वाली गर्मी होती है तो वालदैन कहते हैं अरे बहुत गर्मी है मत जाओ, जैसे ट्यूशन का टाइमिंग या कोचिंग का टाइमिंग उस तरह से हो गया तो। फिर वैसे ही सर्दी होती है तो ये कहीं ना कहीं जो ओवर प्रोटेक्शन जो बच्चों के लिए जो करते हैं वालदैन, या उनको उनके कंफर्ट जोन से नहीं निकलने देते हैं, तो ऐसे वालदैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह का ओवर प्रोटेक्शन उनके मुस्तकबिल में रुकावट बनता है?
2: कोई भी चीज़ अगर ओवर हो जाती है तो वो थोड़ी रुकावट तो हो जाती है, इसलिए ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स के वजह से भी बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। और इकबाल का एक शेर है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो गर्मी रहे, बरसात रहे या सर्दी रहे, मेहनत करनी ही होगी, बाहर जाना ही होगा, आपको फील्ड में आना होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो मुश्किल है।
1: मतलब ये कि बच्चों के लिए वालदैन को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना होगा कि भाई बाहर निकलो, धूप है तब भी। पर आप क्या कहेंगे इस पर सर?
0: नहीं, ऐसा है कि देखिए, वो जो आपका सवाल है वो शहरी हदूद तक ही आपको देखने में मिलेगा, वरना जो हमारे गांव के इलाके हैं, देही इलाके हैं, मैंने देखा है तपती धूप में और लू में बच्चियां साइकिल से जाती हैं और आती हैं। तो वहाँ का जो कल्चर है वो मेहनत कशों का कल्चर है, वहाँ ये सवाल या इस किस्म के रुझान बहुत कम देखने को मिलेंगे। और फिर वापस आके वो अपने वालदेन की खिदमत करती हैं, अगर लड़कियां हैं तो अपने माँ के कामों में हाथ बटाती हैं। तो ये जो शहरी और देही कल्चर के बीच में जो फर्क है, शहर है हमारे जो नाम नेहाद कहिए, वहाँ के जो बच्चे हैं या वहाँ का जो माहौल है वो हमारे उससे मेल नहीं खाता है।
1: कई बार ये वन चाइल्ड जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी ये मसला,
0: और जो सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है बल्कि अगर इसको आप वसी पैमाने पे देखेंगे, शहरी इलाकों का जो कल्चर है वो अपने तक महदूद रहना और बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिलना जुलना, तो ऐसी कई बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं जो के अंदर अंदर बच्चों को खोखला बना रही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आते हैं बहुत हाई फाई, जो अपने दिल्ली में जो है 5 साल से 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन कामयाब कौन हो रहा है? सब्जी बेचने वाले का लड़का, ठेला चलाने वाले का लड़का, छोटे मोटे रोजगार करने वालों का लड़का क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये है कि वो बच्चे जो हैं वो वेस्टर्न आपके सोच है, उनके रख रखाव है, वो हमारे यहाँ मेल नहीं खाता है। वालदेन का ये फर्ज है कि उनको जो है मेहनतकश बनाए और हार्ड से हार्ड लेबर करने का आदी बनाए। मान लीजिए कि अगर वो बन भी जाते हैं अफसर तो उनको कहीं भी भेजा जा सकता है। जब इतनी ठंड में हम आप कंबल से और लिहाफ से सर बाहर नहीं निकालते हैं, सियाचिन में हमारे सैनिक मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
1: कभी तो वो तरबियत कहीं ना कहीं घर से ही मिली।
0: तो मेन जो अहम मुद्दा है वो वालदेन की तरबियत का है। वो आपका सवाल एकदम सही है कि वो लू है तो बस अंदर चले जाओ और ये है तो जाओ, इस तरह के जो रुझान है बच्चों में वो नहीं होने चाहिए।
1: तो बेटियों के बारे में जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो बेटियां हैं, बराई धन है, तो इनकी तो शादी हो जाएगी, तो बेटियों का जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ शादी तो नहीं है, कहीं ना कहीं जब बात बराबरी की आती कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, तो क्या बेटियों को उनके ख्वाब पूरे करने के लिए वालदेन को मौका और वक्त देना चाहिए?
0: ये सवाल तो आपका बहुत अच्छा है लेकिन हकीकत इससे ज्यादा कड़वी है, क्योंकि हमारे

0: सोसाइटी की जो बनावट है माशरे की, वो बहुत सारी फरसूदा रिवायतों पर अब तक मुनहसिर है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अच्छे पढ़े लिखे घरों में भी जाएंगे और अगर बेटियों पर बातचीत आप देखेंगे होती हुए, तो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हुए पाए जाएंगे कि नहीं, लड़कियां तो बहुत नाजुक होती हैं और बहुत सारा काम नहीं कर सकती हैं वगैरह वगैरह। तौर पर आप अच्छे पढ़े लिखे घरों में भी जाएंगे और अगर बेटियों पर बातचीत आप देखेंगे होती हुए, तो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हुए पाए जाएंगे कि नहीं, लड़कियां तो बहुत नाजुक होती हैं और बहुत सारा काम नहीं कर सकती हैं वगैरह वगैरह। जबकि धीरे धीरे लड़कियों ने ही रिवायत को तोड़ा है
1: जी।
0: और अब तो हवाई जहाज चला रही है और फिर वाकई वो बराबरी वाला दर्जा उनको मिलने लगा।
1: आकिब साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेटियों को इस तरीके से उसके इल्म को हासिल करने में वक्त देना चाहिए, फिर मान लीजिए वो कंपटीशन को प्रिपरेशन करना चाहती हैं तो शादी कहीं ना कहीं बीच में एक ब्रेकर की शक्ल में उनको लगता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको, वालदेन को उनके साथ कैसा सलूक रखना चाहिए वहाँ पर? फिर
2: देखिए, दीनी पॉइंट से भी और दुनियावी पॉइंट से भी बेटियों को भी पढ़ाई के शोबे में बराबर मौके फराहम करने चाहिए। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म के हुसूल को तमाम मर्द और औरत के लिए वो फ़र्ज करार दिया गया है
1: जी।
2: और इकरा से कलाम पाक की शुरुआत हुई है। और गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, खासकर आजकल इवन बिहार गवर्नमेंट का आप देखें तो 35% रिजर्वेशन टू वीमेन है इन डिफरेंट गवर्नमेंट फील्ड्स। चाहे आप बीपीएससी का देख लें तो उसमें भी मिनिमम 35% गर्ल्स आ रही हैं और बाकी फील्ड में भी गर्ल्स आ रही हैं। तो यही है।
1: इसके अलावा और क्या है?
2: इसके अलावा ये है कि इस्लाम तालीम के फरोग का हामी है और औरतों की तालीम तो घर को बनाने और बच्चों को संवारने के लिए और भी ज्यादा जरूरी है।
1: चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, अगर वो स्पेशली एकदम बीपीएससी और यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहती हैं, तो वालदेन किस तरीके से, किस ढंग से उनकी परवरिश करें, वालदेन कैसे उनको तरबियत दें या किस तरीके का उनको माहौल दें घर में, जिससे कि वो सही मायने में एक दो चार अटेम्प्ट मान लीजिए अगर है तो उसमें कम से कम वो कामयाब हो जाएं वैसे बच्चे।
2: एकदम 100% तो गारंटी कोई नहीं दे सकता, बट हाँ, तालीमी माहौल बहुत ज्यादा जरूरी है कि घर में एक तालीमी माहौल हो, शाम में मगरिब के बाद एकदम पढ़ाई का माहौल हो। और इसमें यह हो सकता है कि आप उसको फरोग दें, जैसे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो बाकी जो घर के काम होते हैं कभी कभी एक्स्ट्रा काम जो हम लोग लेने लगते हैं, तो उससे थोड़ा बचें, खास करके एग्जाम टाइम में या एग्जाम करीब है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक तरह से होता है ना कि आपका लय जो है वो टूट रहा है, तो उस तरह से ना हो। बाकी इसमें वालदैन की कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे को शुरू से ही, जब 10th कर रहे हैं 12th कर रहे हैं, उसी टाइम से ही आपको जनरल नॉलेज की तरफ, आजकल तो इंग्लिश स्कूलों में क्लास 1 से 1 स्टैंडर्ड से ही जीके वगैरह
1: शुरू हो जाता है,
2: पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें उस तरह का इंटरेस्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आर्ट्स जो सब्जेक्ट होते हैं, आजकल ज्यादा लोगों का इंट्रैक्शन साइंस की तरफ हो रहा है, तो कुछ आर्ट्स पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हर तरह के सवाल आते हैं। आजकल के बच्चे आप देख रहे होंगे कि इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा रुझान है ओवरऑल, हम लोग देखेंगे 12th के बाद तो उसमें, लेकिन इंजीनियरिंग के अलावा भी बाकी आप आर्ट सब्जेक्ट्स, सोशल साइंस है मेरी मुराद है, तो उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब पे पकड़ होनी चाहिए। तो शुरू से ही उस तरह की चीजें बताई जाएं। उस तरह के चैनल्स भी हैं, इवन टीवी चैनल्स भी हैं, जैसे आप न्यूज पे ज्यादा फोकस करें, आप चाहें तो उसमें टीवी में आप मूवीज भी देख सकते हैं, सीरियल्स भी देख सकते हैं, न्यूज भी देख सकते हैं। इवन एक लोकसभा और राज्यसभा का भी चैनल है, उससे कौन कौन सा बिल पास हो रहा है, उसमें क्या प्रोविजन है, या एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या प्रोविजन है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया, उसके क्या रूल्स हैं, तो वो धीरे धीरे सीखेगा तो एग्जाम में उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। इवन जो यूपीएससी बीपीएससी का मेंस होता है, तो जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है उससे सवाल आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल आते हैं, तो आप न्यूज पे और न्यूज पेपर पे अगर आपकी पकड़ रहेगी, एक वालदैन की जिम्मेदारी यह भी है कि घर में एक न्यूज पेपर रहे, उस तरह का माहौल रहे, ताकि वो लोग एक तरह से प्रिपेयर्ड रहें और करंट अफेयर से रूबरू रहें शुरू से ही।
1: अच्छा, इसमें क्या ये भी है लैंग्वेज के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है?
2: लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश से ही हो जाएगा। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आप किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, बीपीएससी में तो उर्दू में भी आप लिख सकते हैं। हाँ, बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए, क्योंकि आपको मल्टी डायमेंशनल काम करना होता है, काफी सारी चीजें इंग्लिश में भी होती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्टेट का है तो हिंदी भी आनी चाहिए आपको,
1: भी आनी चाहिए।
2: और अगर आपको उर्दू में पकड़ है तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, जनरल पेपर 1 2 सब अलाउड है।
1: अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल है, वो शायद आई साहब आपसे सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना बच्चे के

0: साथ हमें बच्चा बनना पड़ता है। तो क्या पढ़ाई के दरमियान में भी बच्चों के साथ में वालदेन को बच्चे बनना चाहिए, मतलब उनको नई जो जो कोर्सेज आ रही हैं, जैसे बच्चा कहता नहीं मैं ये नहीं बनना चाहता ये बनना चाहता हूँ, तो क्या उसके लिए वालदेन को अपडेट रहना ज़रूरी है, उस जो नई जदीद जो कोर्सेज हैं उसके बारे में मालूमात होनी ज़रूरी है?
1: वालदेन की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है, तमाम वालदेन अपने बच्चों का जायज़ा लें। जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके बच्चे, अभी मैं हाल में एक चैनल देख रहा था वो जापान के बच्चों के बारे में, कि वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही जिम्मेदार होते हैं, अब जिस शोबे में जाते हैं बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। तो उसकी वजह यह है कि बचपन से ही उनके रुझानात पर वालदेन की निगाह है, कि हमारे बच्चे की दिलचस्पी किस, मान लीजिए कि वो लड़ाई भिड़ाई की तरफ है, ज़्यादा शरारती है, तो जाहिर बात है कि उसकी लाइन दूसरी होगी। अगर वो गाने बजाने की तरफ है, गा रहा है, बच्चे से शुरू से ही गाने का शौक़ है, तो मौसीकी की तरफ जाएगा। अगर वालदेन पूरी ईमानदारी के साथ और बजाय आस पास से मुतासिर हुए बगैर, यहाँ होता क्या है कि उनका बच्चा बैठ रहा है तो तुम भी बैठ जाओ, वो ऐसा कर रहे हैं आप भी कर लीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा है। तो ये इस तरह की जो मेंटिलिटी है, जो रुझान है, ये बच्चों पर बहुत ही मनफी असर डालते हैं। वो दबाव की वजह से एडमिशन ले लेगा, कहीं चला जाएगा, तो आप उसके ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, जो इनपुट है आपका, उसकी क्या गारंटी है कि उसका आउटपुट आपको मिलेगा, यही वजह है। लेकिन वो जो समझदार वालदेन हैं वो ऐसा नहीं करते। मैट्रिक तक ये मालूम हो जाता है, अगर कोई वालदेन ये कहें कि मुझे पता नहीं चला, तो या तो उसके गफलत का नतीजा है या उन्होंने तवज्जो नहीं दी अपने बच्चों। मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते बच्चे के रुझानात की अलामत मालूम हो जाती है कि वो साइंस की तरफ उसका रुझान है कि आर्ट्स की तरफ है, मौसीकी की तरफ है कि स्पोर्ट्स की तरफ है। तो अगर उस मुनासबत से अगर वालदेन फैसला करते हैं तो मैं नाकामी के बहुत कम चांसेस हूँ, क्योंकि बच्चा खुद अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए दिलचस्पी का मुजाहरा करेगा, उसको किसी दबाव वबाव की जरूरत नहीं।
0: मगर साहब आपसे एक सवाल ये है कि जो अभी जो बहुत सारे जो बच्चे देख करके या दोस्तों की वजह कर आ जाते हैं बहुत सारे फील्ड में कि ठीक है हम भी, मेरा दोस्त पढ़ रहा है इस चीज़ का कोर्सेज में, उसने एडमिशन लिया तो मैं भी करूंगा, ऐसा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वालदेन के कुछ ख्वाब अलग होते हैं, मतलब वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, अब ये चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो डॉक्टर बने और बेटे को इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो वो दोनों जगह पर जो उलझ जाते हैं जो बच्चे जो नौजवान, इस तरह से कि वो दोस्त को देख करके उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इधर वालदेन का होता है कि नहीं तुम्हारा ये नहीं तुम ये करो, तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है इसमें वालदेन को अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से वो उस सिचुएशन को हैंडल करें कि उनका बच्चा जो है वो एकदम जिसे बोलते हैं ना नेगेटिविटी का शिकार ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन कि नहीं हम तो ये करना चाह रहे थे लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं और अब मेरे माँ बाप हमको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे ऐसे वालदेन को कि उनके ऊपर अपने ख्वाब थोपने चाहिए या फिर उनको आगे अपना अपना आसमान जो है वो अपने आसमान में उनको उड़ने देना चाहिए?
2: जाहिर सी बात है, बच्चा जो चाह रहा है वही इंटरेस्ट उनको डेवलप करने देना चाहिए। आप जबरदस्ती उन पे कुछ थोप नहीं सकते हैं कि आप इसी फील्ड में जाओ या किसी और फील्ड में जाओ। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि बच्चे को भी देखना चाहिए कि वो दोस्त अगर सपोज मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दोस्त के चक्कर में खुद भी मेडिकल लाइन में चला जाए। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, नॉट कंपैरिजन। बच्चे क्या करते हैं कि वो जा रहा है तो चलो हम भी चलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या इंटरेस्ट है वो सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 10th 12th तक बच्चे को भी समझ में आ जाता है, वालदेन को भी समझ में आ जाता है। तो उसी हिसाब से जैसे सपोज आपका मैथमेटिक्स ठीक चल रहा है, साइंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप IIT की तरफ जाएं। अगर आपका सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट है तो आप कंपटीशन की तरफ जा सकते हैं। इवन इंजीनियरिंग वाले भी करते हैं, हमने ही किया है, तो इंजीनियरिंग करके फिर इधर आए, तो उसमें हर तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, क्योंकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट डेवलप्ड था सोशल साइंसेज की तरफ, तो इसलिए। और वालदेन ने पॉजिटिव सपोर्ट किया, फोर्स नहीं किया कि यही करो, हमने फिर इसकी तैयारी की। तो इस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स पेरेंट्स का मिलना बहुत ज़्यादा
0: पॉजिटिव
2: ज़रूरी
0: रिस्पांस
2: होता
0: बहुत
2: है।
0: ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, उन बच्चों के बारे में आप, दोनों से सवाल बनता है, उन बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे जो कई बार कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो किसी तरह का कंपटीशन हो, जो कि कहीं भी आपको एडमिशन लेने के लिए एक कंपटीशन से तो गुजरना होगा, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए जाए, नीट के लिए जाए,
2: एंट्रेंस
0: चाहे फिर
2: एग्जाम्स
0: कहीं से भी, तो वो बिना एंट्रेंस एग्जाम के नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता है वो अपने वालिदैन को बताते नहीं हैं कि वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, किस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इंटरनली उनको क्या फीलिंग्स आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो क्या क्या वैसे बच्चे जिनको हम बाहर भेज देते हैं कि भाई वो बाहर जाकर के

0: पढ़ें, ठीक है, दूसरे इंस्टीट्यूशन में बैठ करके वहाँ पढ़ाई करें और फिर वो कंपटीशन निकाल लेंगे, इंट्रेंस निकाल लेंगे ये सोच करके, तो वो बाहर भेजना ज़्यादा बेहतर है या फिर बच्चों को घर में ही ऐसा माहौल दिया जाए कि घर में वो पुरसकून पढ़ सकें? दोनों में से कौन सा बेहतर होगा? सबसे पहले आप बताइए शायद ये सर।
1: देखिए, ऐसा है कि बाहर और घर का कोई सवाल नहीं है। देखा गया है कि अगर बच्चे के अंदर जज्बा है और जुनून है कुछ बनने का, तो वो कहीं भी अपनी तैयारी कर सकता है, उसको किसी किस्म की गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज के दौर में तो इतना वसी फील्ड है, इंटरनेट है,
2: इंटरनेट
1: सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, कि आप एकदम में पसमानदा इलाके में बैठकर भी बड़ी से बड़ी तैयारी कर सकते। यहाँ शर्त है उस बच्चे की दिलचस्पी, उसका जुनून। अब मैं आपको महाराष्ट्र की बात बता दूँ या इस तरह के, तो अमूमन आप देखिएगा कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो इतने तरक्की याफ्ता नहीं हुए जो बाहर से गए। ज़्यादातर डॉक्टर आपको बिहार के मिलेंगे, ज़्यादातर डॉक्टर आप यूपी के मिलेंगे, मध्य प्रदेश के मिलेंगे। तो ये क्या मतलब हुआ, वहाँ क्यों नहीं हुआ? वहीं पढ़ के, वहीं पढ़ा उन्होंने जाके, लेकिन वो नहीं होना, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर एक जज्बा जुनून था, उनके पीछे माली बैकग्राउंड भी था कि मुझे अपने वालदेन की माली हालत को बेहतर बनाना है, बहनों की शादियों की जिम्मेदारियाँ थीं। तो इस तरह के जो बच्चे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का एहसास है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, वो कहीं भी रहकर कर सकते हैं। अब सवाल ये है आपका, ये सवाल भी बहुत जेन्युइन है कि घर के अंदर, घर में रहकर या बाहर, तो जाहिर सी बात है कि बाहर एक वसी मैदान उसको मिलता है, तो जाहिर बात है कि जो जेएनयू का जो माहौल है वो बिहार के यूनिवर्सिटी को हासिल नहीं है। तो जो बच्चा वहाँ जाएगा, अब आपको सुनकर ताजुब होगा कि वहाँ रात भर लाइब्रेरी खुली रहे, तो जाहिर सी बात है कि उसके तरक्की के मौके, उसके कंपटीशन के एतबार से वसी हैं बाहर में। वो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिर्फ वसी माहौल होने से नहीं होता है, उसकी अपनी मेहनत है, लगन है, मैंने बताया शुरू से। तो अगर वो जज्बा होगा तो मौके के लिए बाहर जाना उसका लाजमी है, क्योंकि हमारे बिहार में जो माहौल है, जो ख़ास तौर से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का, उसमें कंपटीशन की तैयारी करने के इम्कान बहुत कम होते हैं। घर का माहौल ठीक नहीं होता है, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, मोहल्ले टोले के जो माहौल होते हैं वो मुनासिब नहीं होते हैं।
0: दोस्तों करके बुला के
1: लेके चले जाते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत जहीन बच्चे जो शुरू में बहुत अच्छे थे, मैट्रिक तक उन्होंने फर्स्ट किया और अच्छे नंबर से पास हुए, फिर वो उनका जवाल शुरू हो गया, और उसकी वजह यह है कि उन पर तवज्जो नहीं दी गई, उन्हें खराब माहौल से निकाला नहीं गया, वालदेन ने उनके लिए मौके फराहम नहीं किए। तो मौके फराहम करना भी लाजमी होता है, और उसके लिए बड़े शहरों में जाना जरूरी हो जाता है।
0: इस पर आप क्या कहेंगे आकिब सर?
2: काफी हद तक मैं मुत्तफिक हूँ, जैसा कि सर ने बताया, तो बड़े शहरों में आपको एक्सपोजर मिलता है, लेकिन हाँ, ये गारंटी नहीं है कि कामयाबी आप 100% हो जाएगी। ये ज्यादा जरूरी है कि हम लोग पहचाने अपने कैपेबिलिटी को, कि हम लोग कहाँ से कर सकते हैं। सर ने पहले भी बोला, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इंटरनेट का दौर है। इसमें क्या होता है कि जो भी, सपोज आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की या कंपटीशन की, उसमें होता है कि आप मॉडल आंसर सेट आप बुक्स खरीदते हैं, अब आजकल आप मोबाइल से ही निकाल सकते हैं, उसके आंसर कीज निकाल सकते हैं, उसके बनाने का तरीका, इवन पूरे कोर्सेज आप ऑनलाइन कहीं से भी रह के देख सकते हैं। तो ये एक चीज है। दूसरा, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अलग अलग टीचर से खुद भी पढ़ सकते हैं, इवन मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक्सपोजर की बात हुई तो एक्सपोजर वो आपको थोड़ा कंपटीशन से पहले कंपटीशन आप दोस्तों के बीच में या उस तरह का जो माहौल होता है उसके वजह से पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसका। और दूसरी चीज है, जैसे हमको पता रहना चाहिए कि हमारे आसपास, अब जरूरी नहीं है कि हम कुछ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली या कोटा ही जाएं, हमारे आसपास जैसे पटना में ही हम कोशिश करें कि उस तरह का माहौल बेहतर क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज के लिए मैं देना चाहता हूं कि अब नीट एग्जाम जैसे हो गया, इसी तरह से बीपीएससी यूपीएससी के लिए यहां पर ही हज भवन है, तो आप उसका एंट्रेंस देके उसमें आप दाखिला लें तो उसमें भी लाइब्रेरी 24 आवर्स खुली रहती है। सारे किताब जो मेन होते हैं, ऑलमोस्ट सारे किताब उसमें दस्तयाब हैं उसकी लाइब्रेरी में। साथ ही बाहर के टीचर्स, जैसे दिल्ली जाते हैं लोग मुखर्जी नगर और दीगर इलाके में, तो वहाँ के फैकल्टीज को बुलाकर यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। बच्चों को पता होना चाहिए, हमारे जरिए ही अगर बच्चों को ये चीज़ पता चले, तो इस तरह की जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है।

0: तो उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें बच्चे, ताकि इनपुट आप जितना लगा रहे हैं आउटपुट उसमें ज्यादा मिले,
1: ज्यादा
0: कम
1: मिले।
0: इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिले, क्योंकि एट द एंड आपका रिजल्ट मैटर करता है, आप कहाँ से हैं वो नहीं।
1: हाँ, ये बहुत सारी बातें निकल करके आई आज हमारे इस गुफ्तगू में। इसके साथ ही सामिन, हम आज के इस मुज़ाकरे को इख्तिताम पज़ीर करेंगे, और मैं आज के हमारे ख़सूसी मेहमान दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आकिफ साहब आपका भी और शहदाई साहब आपका भी, आप दोनों यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने बहुत कीमती बातें बताईं, और मुझे यकीन है कि हमारे सामिन इससे इस्तफ़ादा हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामीन, धूप और गर्मी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप बेवजह घर से बच्चों और बुज़ुर्गों को ना निकलने दें, ख़ासकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के दरमियान में। उस वक्त की तेज़ धूप बहुत हद तक सेहत को ख़राब करती है। इनके साथ इस बात का भी ख्याल रखिए कि उनकी खुराक खास अच्छी रहे, हल्का हो, खाना ऐसा हो जो हल्का हो, कम मसालेदार और आसानी से हज़म होने वाला हो। बासी खाने से बचाइए था, और ताज़े खाने, हरे सब्जियां वगैरह उनकी सेहत बनाने में बहुत हद तक मददगार साबित होंगी। बच्चों और बुज़ुर्गों को कूलर और एसी से फौरन निकलकर धूप में जाने से रोकें, क्योंकि लू जैसी हवाओं से बचाने के लिए आम का पना पिलाएं, तो साथ ही साथ कच्चे आम से उन्हें नहाने की भी आदत दिलवाइए। आम से उन्हें नहाने से बहुत हद तक फ़ायदा हासिल हो सकता है। सामिन, हर मौसम का लुत्फ़ आप तब उठा सकते हैं जब घर का हर फर्द सेहत याब हो। सबकी अच्छी सेहत तभी होगी जब हमारी छोटी छोटी सी कोशिशें आसानी के साथ हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी। तो आइए, फ़िलहाल वक्त हुआ जाता है एक प्यारी सी गज़ल का, समाप्त करिए एक खूबसूरत सी गज़ल।

सामीन, बदलता मौसम हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम जुज़ होता है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ साथ हमें बदलना भी आना होता है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि मौसम कोई भी हो, हमें उससे नफ़ा हासिल लेना है। बस सबका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी आसान हो जाती है। इन अच्छी बातों के साथ आज अपनी दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी पटना, और आज के लिए खुदा हाफिज़।

0: शुदा अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पटना दरभंगा से प्रसारित किया गया।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम डस मंजरी।

कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं दिल से फिल्म से, उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ों में, बोल हैं गुलजार के संगीत ए आर रहमान का।

कलयुग फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। अब लीजिए सुनिए बॉम्बे फिल्म का गाना चित्रा की आवाज़ में। बोल है महबूब के और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
5: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
6: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
7: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम डिस्मंजरी।

0: डिफ्यूजिव फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत अन्नू मलिक का। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब पेश है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम के तहत सुनिए वरिष्ठ चित्रकार श्यामल दास से सचिन कुमार की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और केवल अपने लिए ही नहीं, लोगों को देने के लिए, समाज को प्रेरित करने के लिए भी इनके पास कई सारे अनुभव हैं, और इन्हीं अनुभवों से हम लाभान्वित होते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ चित्रकार, कार्टूनिस्ट, आप हैं श्यामल दास जी। कह सकते हैं कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। श्यामल दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: सब श्रोताओं को नमस्ते।
1: श्यामल दास जी, हम बता दें श्रोताओं को कि आप स्केच आर्टिस्ट हैं, आप कार्टूनिस्ट भी हैं, और आप कई कलाओं से रुचि रखते हैं, आप फोटोग्राफी भी करते हैं। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें इससे पहले हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट चन्ना नगर में रहने वाला हूँ। तो चन्ना नगर एक ऐतिहासिक जगह है।
1: क्या खासियत है चंदन नगर की?
2: चंदन नगर एक्चुअली 1947 में इंडिया स्वाधीन हुआ था, लेकिन चंदन नगर स्वाधीन हुआ था 1948 में, एक साल बाद,
1: आज़ाद
2: क्योंकि
1: हो?
2: एक साल बाद आज़ाद हुआ।
1: अच्छा, इसके पीछे क्या कारण
2: इसका
1: है?
2: पीछे ये कारण है, उस जगह पे फरासी लोग रहता था। तो ऑल ओवर इंडिया जब स्वाधीन हुआ 1947 में, चंदन नगर एक साल बाद

0: बाद फरासी लोग छोड़ के गया,
1: अच्छा
0: स्वाधीन करके गया।
1: अच्छा तो इस हिसाब से वो इतिहास में एक अलग ही स्थान रखता है। और
0: और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जेहेतु वो फरासी जगह, फरासी लोग वहाँ पे रहता था, तो इंग्रेज लोग वहाँ घुस नहीं पाता,
1: अच्छा
0: तो सारे फ्रीडम फाइटर वहाँ पे आते थे और वहाँ ही प्लानिंग होता था सब कुछ का। रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ पे आते थे, सुभाष चंद्र बोस कहीं पर आया, उसके बाद ऋषि अरविंदो वहाँ आना जाना था, खुदीराम बोस, सारे एक्टिविटीज जितना हुआ था सब वहाँ से प्लानिंग होता था उस जगह
1: यानी कह सकते हैं कि
0: पे।
1: बंगाल का वो एक ऐसा स्थान जहां पर आजादी की लड़ाई के लिए बीज बोए गए, प्लानिंग की गई, वो एक ऐतिहासिक जगह है चंदननगर।
0: हाँ, और एक खासियत वहाँ पे है, चंदननगर में जगदात्री पूजा बहुत फेमस है। वहाँ पे
1: जी
0: 4 दिन का जगदात्री पूजा होता है दुर्गा पूजा के बाद, तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड उसको जानता है, वह एक
1: अच्छा
0: बहुत बड़ा फेस्टिवल वहाँ पे 4 दिन के लिए होता
1: जी, तो
0: है।
1: ऐतिहासिक और धार्मिक जगह से आप आते हैं, आप ताल्लुक रखते हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई क्या चंदन नगर में हुई और आपकी हायर स्टडीज क्या है?
0: पढ़ाई लिखाई तो मैंने चंदननगर स्कूल में किए, लेकिन कॉलेज मेरा यूनिवर्सिटी था, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, जो कि कलकत्ता में है। मैं वहाँ पे कमर्शियल आर्ट के ऊपर मैंने डिग्री किया, उसके बाद ना मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट
1: जी,
0: बने।
1: तो ये देखा जाता है कि बचपन से ही लोग कलाकारी या जिस भी कला की ओर रुचि रखते हैं, उनको बचपन से ही उसमें रुचि होती है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि आपकी भी रुचि कलाकारी में बचपन से ही है, या कैसे आप प्रेरित हुए कलाकारी की ओर?
0: जब प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ रहा था, तो उस समय का कुछ स्केचेस अभी भी हम याद करते हैं वो, और अभी भी मैं साथ में भी रखते हूँ वो स्केचेस। कुछ नंदलाल बोस का था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ वो सारे किताब था, और उनके सारे पेज में स्केच था जो कि ब्लैक एंड वाइट और लाइंस, तो वो चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बात बताता हूँ, नंदलाल बोस मेरा बिहार का हवेली खड़गपुरा का आदमी है,
1: जी,
0: तो उनका वो हमको बहुत पसंद था, तो उसको हमने उस समय से कॉपी भी करते थे, देखते तो थे, अच्छा तो लगता था, कॉपी भी करते थे। तो धीरे धीरे बाद हमको लगा जे हम इसके आर्ट कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई किए।
1: बीच में मैं पूछना चाहूंगा, क्या जब आप कॉपी करते थे तो आपको पता था कि ये नंदलाल बोस के स्केचेस हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं
1: जी
0: पता नहीं था।
1: जी
0: यही यही सबसे बड़ी क्वेश्चन आपका है, ये आदमी का काम दिख जाता है,
1: जी
0: नाम तो बाद में लोग ढूंढ लेता है,
1: जी
0: लेकिन ये
1: उस
0: जो बोलता है जो लोग काम ही बड़ा होता है, नाम बड़ा नहीं, नाम
1: जी
0: तो हम बाद में ढूंढे जो नंदलाल बोस
1: कि
0: का
1: ये
0: था,
1: स्केचेस मैं आखिर किनका बना रहा हूँ।
0: हाँ किनका बना रहा हूँ, तो
1: जी
0: वो नंदलाल बोस का स्केचेस हमको प्रभावित किया है,
1: जी
0: और आज भी मैं उनको गुरु ही मानता हूँ, उसी का काम को हम फॉलो करके अपना काम भी करते रहता हूँ।
1: जी फिर आगे का सफर आपका कैसा रहा?
0: आगे मैं आर्ट कॉलेज से निकालने के बाद मैं कहीं इंडिया का दो बड़ा न्यूज़पेपर हाउस में चीफ डिज़ाइनर का काम करते रहे, उसके साथ साथ मैं कार्टून, कैरिकेचर, ये सब मैंने काम शुरू किए, और न्यूज़पेपर हाउस में हमने बहुत काम किए, मैगज़ीन का भी बहुत काम किए। तो जब न्यूज़पेपर हाउस में काम कर रहे थे, तो अब एक और एक आदमी का काम हमको बहुत पसंद आया, जो कि आर के लक्ष्मण,
1: जी, महान कार्टूनिस्ट।
0: महान कार्टूनिस्ट था, तो वो भी एक समय मेरा कॉलीग ही थे,
1: अच्छा
0: वो उन्होंने दिल्ली ऑफिस में बैठते थे तो हम लखनऊ ऑफिस में बैठते थे, तो उनसे भी हमको बहुत सारी चीज़ सीखने का मिला।
1: आर के लक्ष्मण आपके कलीग थे, आपकी भेंट उनसे होती थी, तो जब वो कार्टून बनाते थे तो क्या सोचते थे? कार्टून बनाने के समय उनके दिमाग में क्या चलता रहता था? हमारे बीच ये उत्सुकता है।
0: देखिए कार्टून तो उन्होंने बनाते, तो वो तो बहुत बड़ा कार्टूनिस्ट है, लेकिन हमसे काफ़ी सीनियर भी था,
1: जी
0: लेकिन बात यह है कि जब कार्टूनिस्ट जब कार्टून बनाते हैं, वो तो कार्टून एक रिफ्लेक्शन होता है, समाज का रिफ्लेक्शन, ये एक जस्ट कम्युनिकेशन है, एक पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, एक फेमस आदमी क्या कर रहा है, तो उसके ऊपर लोग कार्टून बनाता है, जो कि एक जस्ट कम्युनिकेशन,
1: ये बड़े बड़े मुद्दों को एक हल्के फुल्के
0: हल्के
1: ढंग
0: फुल्के
1: में
0: ढंग
1: देखा
0: में
1: है,
0: देखा है, जो कि
1: आम आदमी
0: आसान
1: की
0: आसान तरीका,
1: छवि।
0: हाँ आसान
1: जी
0: तरीका से सीख जाए, आसान तरीका से
1: समझ
0: ये
1: जाए।
0: समझ जाए, यही है कार्टून। बाकी यार की कार्टून में कुछ कुछ चीज़ें बहुत महत्व रखता है, जैसे लैंग्वेज, बहुत पॉलिश लैंग्वेज होना चाहिए, कार्टून में कोई ऑफ सीन नहीं होना चाहिए,
1: जी
0: बा किसी को कोई गंदा तरीका से ना प्रेजेंट कर।

0: करना, ये सब अच्छा कार्टूनिस्ट का बहुत बड़ा लक्षण होता है,
1: पॉजिटिव पोर्ट्रेल होना चाहिए।
0: पॉजिटिव होना चाहिए। हैं,
1: जी
0: और कार्टून बेसिकली रिफ्लेक्ट होता है कि एक आदमी क्या काम कर रहा है, उसका रिफ्लेक्शन।
1: जी तो आप चित्रकार भी हैं, आप कार्टूनिस्ट भी हैं, आप फोटोग्राफर भी हैं, कई सारी कलाएं हैं आप कर रहे हैं। इसके अलावा क्या आप गीत संगीत में भी रुचि रखते हैं?
0: देखिए, जेहेतु मैं बंगाल से नाता रखता हूँ, बा मैं जो कॉलेज से पढ़े हूँ वो रविंद्रनाथ टैगोर का ही बना हुआ कॉलेज है, ये
1: शांति
0: तो
1: निकेतन,
0: रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी,
1: रविंद्र भारती
0: शांति
1: यूनिवर्सिटी।
0: निकेतन और रविंद्र भारती दोनों ही उन्हीं का बना हुआ है।
1: जी
0: तो वहाँ पे रविंद्र संगीत तो मैं सुनता ही हूँ, पसंद भी करता हूँ, नजरुल गीति भी सुनता हूँ, लेकिन ये भी बात, मैं क्लासिकल म्यूजिक भी सुनता हूँ, मैं फोक सॉन्ग भी सुनता हूँ, मैं अच्छा फिल्म संगीत भी मैं सुनता हूँ।
1: जी बिल्कुल, तो कई प्रकार के गीतों में और विभिन्न विधाओं के संगीत में भी आपकी रुचि है, तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को आपके पसंद का कोई एक फिल्म संगीत सुनवाएं? क्या सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: एक गाना हम श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ, अभी ना जाओ छोड़ के, ये
1: जी
0: हम दोनों फिल्म का
1: फिल्म
0: गाना
1: का है।
0: हुआ,
1: जी
0: ये गाना हमको बहुत अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल, तो आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए में। आज हमारे स्टूडियो में अतिथि हैं श्यामल दास जी, जो एक वरिष्ठ चित्रकार, कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर और अनेक कला की विधाओं से संबंध रखते हैं। श्यामल दास जी, हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि चित्रकारी तो एक पैशन के रूप में अच्छा है, एक हॉबी के रूप में अच्छा है, लेकिन करियर के रूप में इसे चुनना ये एक चैलेंज के रूप में आता है। अभी भी लोग सोचते हैं कि चित्रकारी को करियर के रूप में कैसे चुने, तो आपसे हम जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस कि आपने चित्रकारी को करियर के रूप में लेने का निर्णय कब लिया?
1: मैंने तो पहले तो आर्ट कॉलेज में मैंने डिग्री हासिल की है। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर हाउस में काफ़ी दिन तक काम करते रहे। सिर्फ विजुअल आर्ट का बेसिक ही मैं बना लिया अपना करियर, और ये करियर अच्छा करियर है। इसमें आज अभी ये डिजिटल जगह पे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन व अपॉर्चुनिटी है, व करियर अच्छा बन सकता है। और जो मैं किया हूँ व मैं जो करता हूँ, मैं ये आर्ट को टोटल विजुअल आर्ट के ऊपर ही मैं काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं न्यूज़पेपर हाउस में पेपर का डिज़ाइन, उसके बाद मैगज़ीन का डिज़ाइन, मैगज़ीन का कवर पेज, कार्टून बनाना, कैरिकेचर बनाना, इलस्ट्रेशन बनाना, उसके बाद तो बहुत काम तो हो ही जाता है।
0: यानी
1: और लोग को करियर भी बना सकते हैं, क्योंकि आज का दिन में इसका करियर बनाना आसान भी है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है।
0: जी, तो चित्रकारी में करियर की अपार संभावनाएं हैं, जैसा हमारे वरिष्ठ चित्रकार अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप स्केच बनाते हैं, स्केचिंग हम कह सकते हैं, खास करके आपकी विधा है, तो उसमें आपने बताया कि फोटोग्राफी भी करते हैं, तो विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि आपकी एक विशेषज्ञता क्या है आपके चित्रकारी की।
1: देखिए, मैं बेसिक थ्योरी मेरा ये है जी, मैं लाइन आर्ट को विश्वास करता हूँ, क्योंकि
0: जी
1: मैं न्यूज़पेपर हाउस में जब काम शुरू किए थे उस समय तो ब्लैक एंड वाइट ही था, और कंप्यूटर मार्केट में आया भी नहीं।
0: ये किस समय की बात कह रहे हैं?
1: ये काफ़ी 30 साल पहले का बात बोल रहा
0: जी
1: हूँ।
0: जी जी
1: तो उस समय होता क्या था, तो मेरा जो बॉस बोलता था जी, श्यामल लाइन्स का बहुत महत्व है, तुम लाइन से ही कुछ काम करो। तो हमको लाइंस के बेसिस से ही हमको काम करना होता था, कार्टून, कैरिकेचर, इलस्ट्रेशन, व मैं जो कवर डिज़ाइन करता हूँ वो बेसिकली लाइंस का बेस पे ही है,
0: जी
1: लाइंस का बेस पे। और कुछ कुछ तो मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ अभी, जो कि हेरिटेज साइट का मैं फोटोग्राफी, हमको पसंद है। तो हेरिटेज साइट में बिहार का बहुत सारे हेरिटेज साइट है, जिसको मैंने अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में एस्टेब्लिश कर पाए कुछ फोटोग्राफी, जैसे मुंडेश्वरी मंदिर, जल मंदिर, गुरुद्वारा, महाबोधि टेम्पल और सोनपुर मेला, तो ये सब मेरा फोटोग्राफ्स अभी इनक्रेडिबल इंडिया में शामिल हुआ है। मैं अभी
0: जी
1: भी कोशिश कर रहा हूँ और कुछ हेरिटेज साइट को मैं यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए। इसके लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तो मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ
0: तो आपकी जो फोटोग्राफीज है वो अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया
1: इंडिया में
0: के पोस्टर के रूप
1: पोस्टर
0: में
1: के
0: हम
1: रूप
0: देख
1: में।
0: सकते हैं,
1: हाँ, देख सकते हैं।
0: तो ये केवल बिहार के लिए आप कर रहे हैं या भारत के अन्य साइट्स की भी फोटोग्राफी आप करते हैं?
1: अभी मैं ये बिहार में, जेहेतु मैं अभी हूँ तो बिहार में कर रहा हूँ, लेकिन यूपी का कुछ फोटोग्राफी मेरा किया हुआ है, दिल्ली
0: जी
1: का भी किया हुआ है, लेकिन वो अभी तक मैं इनक्रेडिबल इंडिया में स्टैब्लिश नहीं कर पाया।
0: जी
1: अगला दिन में मैं
0: जी
1: करूँगा।
0: ये सफ़र जारी रहेगा आपका, हम शुभकामनाएं देते हैं। आप बर्ड्स की फोटोग्राफी, चित्रकारी भी करते हैं, स्केचेस बनाते हैं, तो इसके पीछे

0: पीछे का क्या कारण है, चिड़ियों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, ये भी आप कुछ काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स मेरा एक सोच था। ये सोच का थोड़ा सा अलग टाइप का समय आ गया था, जो कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, हम घर पे बैठे हुए थे, पूरा सन्नाटा। तो जब एनवायरनमेंट भी उस समय थोड़ा कुछ चेंजेस आया, तो हमको मेरा गार्डन में बाहर का चिड़िया भी आना शुरू किया। हमने अपना पेड़ में हॉर्नबिल देखे, हमिंग बर्ड देखे, बुलबुल देखने लगे। तो हम बैठे बैठे फोटोग्राफी भी कर रहे थे और स्केच भी कर रहे थे। ऐसे स्केच करते करते प्राय 50 स्केच मैं बना लिया था।
0: अच्छा
1: तो उसी समय आया था आज़ादी के अमृत महोत्सव,
0: जी,
1: इंडिया का 75 ईयर्स,
0: इंडिपेंडेंस के
1: इंडिपेंडेंस डे।
0: जी।
1: तो उसका और 6 महीना बाकी था, तो हमने सोचा क्यों नहीं इसको 75 किया जाए। तो मैंने फिर उसमें लगे तो 50 से 75 चिड़िया को हमने ड्रॉ कर लिए। तो उसके बाद मैंने सोचा जी एक एग्जीबिशन करते हैं। तो हम एग्जीबिशन के लिए जब गए बा बोले, तब एग्जीबिशन के लिए एग्री किए लोग। बा 20 दिन का मेरा एग्जीबिशन चला बिहार में ललित कला एकेडमी में, और बहुत बच्चा लोग देखने भी आया, सारा स्कूल को इनवाइट किया गया था। और 20 दिन ये एग्जीबिशन चला, और 20 दिन मैंने वहाँ पे बच्चा लोगों को वर्कशॉप करवाए स्केच के ऊपर। उसके बाद हम सोचे जी ये काम को बंद करने से नहीं होगा, ये यंग जनरेशन को जानना चाहिए बर्ड्स के ऊपर, जाने ये जानते जानते थोड़ा एनवायरनमेंट के ऊपर भी उसको जानना पड़ेगा। ये बहुत नेसेसरी समझ के हमने उसको और बढ़ाने गए। वो अभी द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स 100 के ऊपर वो चिड़िया मैंने किया
0: ये आपकी पुस्तक है
1: है। तो ये पुस्तक मैं बोलते हूँ, लेकिन ये 2 फीट बाई 1.5 फीट का पैनल है, और इसको हमने पेज को ओपन करके, एक किताब का पेज को ओपन करके जैसे डिस्प्ले किया जाता है, इसको मैंने डिस्प्ले किया। रिसेंट हमने बर्ड फेस्टिवल में जमुई में इसको डिस्प्ले किए थे, और बहुत बच्चा प्राय हर बहुत सारे स्कूल से बच्चा लोग आया वहाँ पे, उसको देखा, सीखा, हमसे बातचीत हुआ। एक बार एग्जीबिशन घूरने के बाद, देखने के बाद, प्राय 100 बर्ड्स के जानकारी वो बच्चा न्यू जनरेशन को मिल जाता है। यही एक फ़ायदा है।
0: तो आप ये जो बर्ड्स का कलेक्शन, जो स्केचेस आपने किए हैं 100 से ऊपर, तो क्या ये प्रायः सभी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या कॉमनली पाए जाते हैं? कैसे बर्ड्स इंक्लूड हैं इसमें?
1: नहीं, इंडेंजर्स स्पीसीज तो है ही, क्योंकि स्पीसीज सबको यहाँ पे मिलना भी मुश्किल है।
0: जी,
1: लेकिन बात है कि ये हर चिड़िया को अगर आप प्यार से खिलाइएगा, पानी दीजिएगा, तो वो अपना बन जाता है। लेकिन चिड़िया बहुत ही ह्यूमन के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करता है, ये हमको जानकारी है। हम मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं चिड़िया को जब देखता हूँ, सिर्फ आर्टिस्ट के तरह मैं नहीं देखता हूँ, एज ए गुड ह्यूमन बींग के तरह देखता हूँ, तो चिड़िया भी वैसा ही आपसे बिहेवियर सुंदर करेगा।
0: जी, आपने कहा कि एज ए गुड ह्यूमन बीइंग के रूप में आप चिड़ियों को, पक्षियों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इस प्रदर्शनी, आपके स्केच बुक 100 बर्ड्स का जो आपने कलेक्शन किया है, क्या इसके पीछे सोच है? क्या ये पेंटिंग तक ही सीमित है या इसके आगे भी पर्यावरण के प्रति भी आपका कुछ सोच है?
1: नहीं, ये पेंटिंग तो ये बेसिकली स्केच है, स्केच ऐसे ही पेंटिंग से ज़्यादा ये
0: अट्रैक्टिव होता
1: अट्रैक्टिव होता है,
0: जी।
1: क्योंकि ये बहुत जल्दी नज़र करता है, क्योंकि एक तो ब्लैक एंड वाइट, और दूसरी बात इसमें डिटेलिंग्स इतना अच्छा कर सकते हैं। एक एक चिड़िया को आप देखिएगा तो लगेगा जी आप जिंदा देख रहे हैं।
0: जी
1: और एक सबसे बड़ी भी बात की जे न्यू जेनरेशन बार्ड्स का फोटोग्राफी बहुत लोग देखता है लेकिन याद नहीं रखता, लेकिन जो मेरा एग्जीबिशन में आता है उसको लेकिन याद रखता है, याद पड़ जाता है जी ये ब्लैक एंड व्हाइट में मैं इतना चिड़िया का स्केच।

0: लिखा था। तो ये एक प्लस पॉइंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये हम जानते हैं जी इसका वैल्यू है और वैल्यू रहेगा भी, और ये समाज के ऊपर बहुत न्यू जनरेशन को बहुत काम देगा व एनवायरनमेंट को भी बहुत फायदा पहुंचाएगा ये चीज।
1: न्यू जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को आप पक्षियों से अवगत कराना चाहते हैं, और आपने कहा कि उन चिड़ियों से प्रेम करने की ज़रूरत है, उनको जानने की ज़रूरत है, केवल फोटोग्राफी देखकर उसे हम एडमायर करें यही काफ़ी नहीं, आप उनसे प्रेम करें, आप उन चिड़ियों का संरक्षण करें, आप ये मैसेज भी देना चाहते हैं।
0: एकदम, एक तो है आर्ट को समझना, दूसरी
1: जी
0: बात आर्ट का समझते समझते बायोडायवर्सिटी को समझना। बायोडायवर्सिटी जब समझिएगा तब सब कुछ आपका पॉजिटिव थिंकिंग भी शुरू होगा। तो एक आर्टिस्ट हमेशा क्रिएटिव वर्क करता है, और मेरा भी सोच ऐसा ही है, क्रिएटिव वर्क लोग को फायदा ही पहुंचाएगा व न्यू जनरेशन के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगा।
1: जी बिल्कुल, तो काफ़ी सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे भी आपका ये कार्य अनवरत जारी रहेगा। आपने बातचीत के दौरान ये कहा कि हाल में ही आपने जमुई में एक एग्जीबिशन लगाया था स्केचेस के, बर्ड्स के स्केचेस के, तो उसकी क्या खासियत रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या-क्या आपने उसमें किया?
0: वहाँ पे तो 100 के ऊपर स्केच तो लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक नयापन मैंने किया, तो वहाँ पे एक मॉडल बनाया था जो कि न्यू जनरेशन को ये जानना चाहिए। जोमुई में एक टाइप का बाहरी चिड़िया आता है जो कि यहाँ कभी कभी रह भी जाता है, अंडा भी देता है,
1: प्रवासी
0: ये
1: पक्षी,
0: प्रवासी पक्षी
1: जी
0: जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये तीन जगह में है, एक तो असम में है इंडिया में, और कंबोडिया विदेश में, और ये सेकेंड पोजीशन में बिहार है।
1: अच्छा
0: तो ये चिड़िया का पेलिकॉन इसका नाम है, तो हम इसको एक मॉडल बनाए थे, ये पेलिकॉन घोंसला में बैठा हुआ है, अंडा भी दिया, और आप उसको ऐसे ही तरीका से बनाए थे जो आप सामने खड़ा होंगे तो वो मुंडी हिला के रिस्पॉन्स करेगा। तो
1: अच्छा
0: बच्चा लोग को ये बहुत, माने बच्चा लोग मतलब स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट व न्यू जनरेशन को ये बहुत अच्छा लगा। तो ये फायदा हुआ जी, ये जो इस मैसेज जे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक चिड़िया यहाँ पे आके अंडा देता है, बिहार के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। ये ऑल ओवर इंडिया में सेकेंड पोजीशन में बिहार में ये जमुई है। तो ये मेरा न्यू जनरेशन ये चीज़ को आराम से सीख के गया, जान के गया, यही मेरा
1: जी
0: एक प्लस प्लस
1: जी
0: पॉइंट वहाँ पे
1: जी
0: हुआ, मैंने किया।
1: जी आपने एक संदेश दिया कि प्रवासी पक्षियों को संरक्षित करने की ज़रूरत है, ऐसा पक्षी जमुई में आता है, इसके माध्यम से आपने ये दिखाया। आगे आपका क्या ध्येय है, आप और क्या आगे करना चाह रहे हैं आर्ट के फील्ड में, चिड़ियों की दुनिया के लिए?
0: चिड़ियाघर दुनिया में स्केच को तो हम आगे बढ़ाते रहेंगे,
1: जी ये
0: और
1: 100 तक सीमित नहीं रहेगा।
0: नहीं 100 तक सीमित नहीं रहेगा, और बहुत सारे स्केच हमको करना है, और हम कोशिश करते हैं, बाकी गवर्नमेंट हमको मदद भी करता है जो कि बाहर कई जगह पे बाहर में ये एग्जीबिशन लगाए, और न्यू जनरेशन ये चिड़िया को जाने, एनवायरनमेंट को जाने, और ये चिड़िया को रक्षा करना। अब तो न्यू जनरेशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: तो ये मेरा एक सोच है, इसीलिए
1: जी,
0: मैं इसको कोशिश करूँगा और बहुत जगह पे एग्जीबिशन करके ये न्यू जनरेशन को इसमें आके इसको रक्षा करे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
1: जैसा कि बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बीच ये जागरूकता फैले और हम भी इसके लिए कदम उठाएं। काफ़ी सराहनीय कार्य है आपका, और काफ़ी महत्वपूर्ण मैसेज आपने हमारे श्रोताओं को दिया कि किस प्रकार हम अपने छोटे छोटे कार्यों से इस धरती को और अच्छा और बेहतर सभी जीवों के रहने के लायक बनाएं, इसके लिए हमें प्रेरित किया है आपने। अंत में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप बंगाल के रहने वाले हैं, तो बिहार को अपना कार्य क्षेत्र आपने चुना, इसकी एक क्या खास वजह है?
0: देखिए, जब हम कॉलेज से निकले हुए हैं तो मेरा वहाँ पे एक एग्जीबिशन चल रहा था, तो एग्जीबिशन चलते चलते ही बिहार का एक एडिटर से मेरा परिचय हुआ, उन्होंने हमको ऑफर किया, आओ तुम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ काम है करो। तो हम कुछ दिन के लिए काम करने आए थे, लेकिन वो तो हमको परमानेंट ही रख लिया।

0: तो इसीलिए मैंने एक नेशनल न्यूज़पेपर में ही जुड़ गए।
1: जी
0: उसके बाद मैंने बिहार में काम किए काफ़ी दिन, उसके बाद नेशनल न्यूज़पेपर में, फिर दूसरा नेशनल न्यूज़पेपर में भी मैं यूपी में काम किए। तो ऐसे ही हो गया मेरा
1: जी
0: बिहार और यूपी।
1: जी तो आप बंगाल से अब बिहार में परमानेंट ही हो गए।
0: बिहार एक्चुअली ये बात हम इसीलिए नहीं बोलना चाहता हूँ ये बिहार मेरा नहीं है, क्योंकि बिहार को मैं कभी अलग से देखा ही नहीं।
1: जी,
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: जब नंदलाल बोस ही बिहार का है, तब इसको
1: जी
0: अलग करके देखने का
1: जी
0: मेरा कोई तरीका नहीं
1: जी
0: है।
1: और किसी क्षेत्र के होने से पहले हम भारतवासी हैं, हम
0: हाँ,
1: सब
0: एक
1: भारतवासी हैं।
0: भारतवासी है।
1: जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, काफ़ी रोचक बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपने संदेश भी दिया जैव विविधता के संरक्षण के लिए। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये बातचीत काफ़ी पसंद आई होगी। तो वरिष्ठ चित्रकार श्यामल दास जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: वरिष्ठ पत्रकार चित्रकार श्यामल दास से सचिन कुमार की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए अब यही समाप्त होता है।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं वादा फिल्म से रूप कुमार राठौर की आवाज़ में, बोल हैं गुलजार के, संगीत उस्ताद अमजद अली खान का।

नक्श कल्याणपुरी का लिखा गाना भी आप सुन रहे थे। धुन बनाई थी रविंद्र जैन ने, फिल्म का नाम था हिना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की।

0: Akashwadi at 90.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म से। आवाज़ें हैं अमीन सबरी और फरीद सबरी की। इस गीत को लिखा है समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं ब्रजकिशोर आरती और कीर्ति उपाध्याय।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे ब्रजकिशोर आरती और कीर्ति उपाध्याय। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: श्रोता सखियों को रेडियो सखी रंजना का नमस्कार। हम सब सखियों से मिलते हैं तो कुछ अपनी बातें करते हैं, कुछ उनकी बातें सुन तो नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ हमारी जो बातें होती हैं हमारी सखियों के दिल की ही बातें होती हैं, क्योंकि हम दूसरे से जुड़े होते हैं और सब सखी की घर की बातें और अपनी बातें लगभग एक सी ही होती है। तभी तो चार सखियाँ जब बैठती हैं तो कुछ बातें और कुछ हमारी समस्याएं बिना बताए ही सुलझ जाती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को छू भी जाती हैं। और ऐसा ही एक रिश्ता होता है बहनों अपनों के साथ अपनों का, यानी माता पिता का। और माता पिता के नज़र में तो बच्चे हमेशा ही बच्चे होते हैं, चाहे उम्र कोई भी हो जाए। और सचमुच ये जो रिश्ता है ना, एक ममता प्यार दुलार भरा संबंध होता है और हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है माता पिता के सामने रहना, उनसे बातें करना। उनकी बातों को याद करके भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, या फिर जो अच्छा बुरा होता है या कोई खुशी होती है। और यदि हमारे माता पिता हमारे पास नहीं भी हैं तो उनको याद करके बहुत सुकून और चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आ जाती है, क्योंकि उन्होंने ही हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हर मुश्किल में हमारा हाथ थामा और हमको हर मुश्किल में रास्ते से अच्छे रास्ते पर चलाया। और जब हम व्यस्क हो जाते हैं, हमारे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, या जिस भी उम्र में उन्हें सहारा देना हो, उनकी देखरेख करनी हो, हर समय उनके लिए हमेशा ही मन में विश्वास कि हम उनके साथ उनको खुश कर सकेंगे, उनकी मदद कर सकेंगे, इस विश्वास से हमको उनकी मदद करनी चाहिए। और बहनों ये सिर्फ हम करते ही नहीं हैं, हम जो करते हैं, हम जैसा व्यवहार करते हैं, हमारे बच्चे हमारी आने वाली पीढ़ी भी वही अपनाती है, बिना सिखाए बहुत कुछ वो सीखते भी हैं। इसीलिए माता पिता का हमेशा सम्मान करें। और सिर्फ वही माता पिता नहीं जो हमको जन्म देते हैं, उनका तो हमसे खून का रिश्ता होता ही है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो उम्र के साथ अपने जगह के साथ बनते हैं, और ऐसे में होते हैं हमारे आसपास जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे रिश्ते में हमारे सास ससुर हैं, जो भी हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब का सम्मान करें। और सम्मान करने के लिए हमको सबसे पहले तो अपनी जुबान मीठी रखनी होती है, अपने व्यवहार में मधुरता लानी होती है। इन सब बातों का ख्याल रखें तो हमको बहुत कुछ वो मिलता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं और जो बिना मांगे भी खुशी मिल जाती है सखियों। और बुजुर्गों की मुस्कान जो होती है वो असली बरकत होती है हमारे घर की। और इस तरह से हम जब अपनी नज़रों से सबको अच्छा देखेंगे और सबके लिए अच्छा सोचेंगे

0: तो अगला भी हमारे लिए अच्छा सोचेगा जो इस गीत में है।
1: मदन मोहन जी बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर। मेरे पिताजी में और उनमें बहुत दोस्ती थी और दोस्ती शुरू हुई गाने से और वो चलते चलते घोड़े तक पहुंच गई। और मदन मोहन जी कोई भी कंपोजिशन करे नए गाने का तो वो मेरे पिताजी को पकड़ के रेस कोर्स में ज़रूर सुनाए। तो एक बार डर्बी में मेरे डैडी ने कहा चल, दूर से मुझे मदन जी आते नजर आए। मैंने कहा मैं तो बहुत बोर हो गई, आज मैं क्यों आई हूँ डर्बी में आपको पता है, ओनली आपका नया कंपोजिशन सुनने के लिए। तो उन्होंने मुझे मेरे डैडी को एक गाना सुनाया, तब वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो गाना। जब भी वो गाना बजता है तो मुझे मदन जी मेरी आंखों के सामने वो नज़ारा फिर से आ जाता है।

सखियों, नजर में सबके अच्छे लगे ये तो हम चाहते हैं, लेकिन अगले नजर में हम क्या लगते हैं वो तो सामने वाला बताता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, कुछ ऐसा समय होता है कि हमको लगता है कि हाँ, हम सबके नजर में अच्छे बने और बनते भी हैं, लेकिन मौसम से कभी भी हम ज्यादती नहीं कर सकते। अब गर्मी का मौसम है, ऐसे में हम चाहें दिन भर हम बाहर रहें और खान पान का ख्याल ना रहे, पानी कम पिए, या फिर जरूरत नहीं है तब भी हम बाहर निकले, तो मौसम का असर तो हम पर पड़ता ही है। और अभी जो गर्मी है, सुबह का समय तो बहुत सुहाना लगता है, रात में भी अच्छा लगता है, लेकिन दोपहर जो होती है ना, उसमें जैसे 9-10 बजे से ही तेज धूप यदि

0: जरूरत ना हो तो घर से कम निकलें, अब जरूरत है तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन रख रखाव अपना ऐसा करें कि मौसम के साथ चलें और गर्मी के मौसम का आनंद लेंगे, तभी तो फिर बारिश भी आएगी, उसके बाद ठंडी भी आएगी। तो इसलिए हर मौसम के अनुकूल ही चलना चाहिए, और सिर्फ मौसम नहीं, मौसम का जो खान पान है, पहनावा है, जिस तरह से रहने का तरीका है, उसको हमको ज़रूर अपनाना चाहिए। जैसे इस मौसम में मौसमी फल जो मिलते हैं उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और हमारे शरीर में गर्मी के दिन में ताप की वजह से पानी की कमी होती है, जो ये फल और सब्जियां पूरी करते हैं। तो इसका ख्याल रखें, और पहनावा भी ऐसा पहने जिससे आप गर्मी के पसीने को सोखता हुआ कपड़ा पहने, जिससे कि आपके अंदर स्किन प्रॉब्लम वगैरह कम हो, और जब धूप में निकले तो भी आपको घुटन सा महसूस ना हो। मोटे कपड़े, सिंथेटिक कपड़े, इस तरह के गाढ़े रंग के कपड़े, इन सब कपड़ों से थोड़ा बचें, तभी मौसम का आनंद ले पाएंगे। और बहुत सी हमारी बहनों को शौक भी होता है कि मौसम के अनुकूल ही कपड़े होते हैं अपने पास, अपनी अलमारी में, अपने बक्से में, लेकिन मौसम शुरू हुआ नहीं कि खरीदारी कर ली। तो इससे भी थोड़ा तो बचना चाहिए, जब जरूरत हो तभी लें। और यदि आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं, और ऐसे में आप क्या कर सकती हैं, यदि आपको शौक है कपड़ों का, तो जो कपड़े आपके पास पड़े हुए हैं, आप उनको रखी हुई हैं, उनको रख कर नहीं ऐसे लोगों को दें जिन जो वो शौक से पहन सकें, और आप अपने नए कपड़े खरीद कर पहन सकें। तो इसका भी ख्याल रखें, खान पान में भी यही करना चाहिए। हम खुद तो खूब खाते हैं, अपनी पसंद का खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ ऐसे रख के बर्बाद भी कर देते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ज़रूरतें उनसे पूरी नहीं होती। हमारे आसपास कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फल वगैरह नहीं मिलता है, तो कुछ ऐसे दान पुण्य का काम भी करें, आपको भी संतुष्टि मिलेगी, और जिनको आप दे रही हैं वो तो दिल से आपको दुआ करेंगे, देंगे। इस तरह की बातों का ध्यान रखें, और हम ध्यान रखते हैं अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक काव्य पाठ अपनी बहनों को सुनवाते हैं रेखा भारती से।
1: पहली कविता है बेटी से बहू बनने तक के सफर पर। शीर्षक दिया है आसान नहीं होता। पंक्तियां हैं बेटी से बहू बनने तक का सफर आसान नहीं होता, बेटी से बहू बनने तक का सफर आसान नहीं होता, आसान नहीं होता, एक अल्हड़ मदमस्त लड़की का अचानक परिपक्व हो जाना। आसान नहीं होता एक अल्हड़ मदमस्त लड़की का अचानक परिपक्व हो जाना, क्योंकि उन्मुक्त उड़ते कांधे पर रख दी जाती है जिम्मेदारियों की गठरी। आसान नहीं होता खिलखिलाते अधरों पर गंभीर मुस्कान का सजना, आसान नहीं होता खिलखिलाते अधरों पर गंभीर मुस्कान का सजना, बेतुकी बातें करते होठों पर कभी कभी शब्दों के धुंध का बनना, बेतुकी बातें करते होठों पर कभी कभी शब्दों के धुंध का बनना, क्योंकि खींच दी जाती है हद की लकीर होठों पर। छोटी छोटी बातों पर रूठने वाली बिटिया, छोटी छोटी बातों पर रूठने वाली बिटिया, ससुराल की दहलीज लांघते ही कर दी जाती है मानसिक परिपक्वता से लैस। छोटी छोटी बातों पर रूठने वाली बिटिया ससुराल की दहलीज लांघते ही कर दी जाती है मानसिक परिपक्वता से लैस। भाभी चाची पत्नी की भूमिकाएं निभाते, भाभी चाची पत्नी की भूमिकाएं निभाते, बना दी जाती हैं जिम्मेदारियों का केंद्र, और फिर इस केंद्र में गुम हो जाती है वह अल्हड़ सी मदमस्त तितली। दिखती है बस भावना और संवेदना से भरी स्त्री। सच आसान कहाँ होता है बेटी से बहू बनने तक का सफर। ये दूसरी कविता उन लड़कियों के नाम जो अपनी मजबूती और सशक्तता के माध्यम से आकाश को नापती हैं। शीर्षक भी मैंने इसका दिया है आकाश नापती लड़की।

पंक्तियां हैं, सुदूर इलाकों से निकलकर, सुदूर इलाकों से निकलकर संघर्ष की आग में तपकर कांटों को फूल करती हैं ये लड़कियां, आकाश को नापती हैं। कांधे पे लटके बैग में, कांधे पे लटके बैग में रखती हैं छोटी छोटी खुशियां, खुले लहराते बालों के संग बिखेर देती हैं जीवन के आनंदित पल, खुले लहराते बालों के संग बिखेर देती हैं जीवन के आनंदित पल, गहरे सपनों के रंग से करती हैं काजल, और बेखौफ बेपरवाह उड़ती हैं ये लड़कियां, आकाश को नापती हैं। वो इंतजार नहीं करती कोई सहारे का, वो इंतजार नहीं करती कोई सहारे का, वो राह नहीं तकती किसी हिमायती का, वह बनाती है खुद को ही पिलर, वह बनाती है खुद को ही पिलर, और फिर गढ़ती है सपनों की इमारत, बिना रुके बिना थके, बिना रुके बिना थके, लहलहाती हैं खेतों की फसल सी, क्या खूब नायाब दिखती हैं ये लड़कियां, आकाश को नापती हैं। अगली कविता स्त्रियों की मुखरता पर, इसका शीर्षक भी मैंने दिया है मुखरित होकर बोलेंगे। पंक्तियां हैं, दृढ़ता की चादर ओढ़ेंगे अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे, दृढ़ता की चादर ओढ़ेंगे अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे, गार्गी वैदेही की अनुजा हम मुखरित होकर बोलेंगे, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, बहनों अपना मुख तो खोलो, घुट घुट कर जीना छोड़ेंगे, गार्गी वैदेही की अनुजा हम मुखरित होकर बोलेंगे। निज सपनों को पंख बनाए, निज सपनों को पंख बनाएं, दूर गगन में हम लहराएं, अवरोधों को पार करेंगे, गार्गी वैदेही की अनुजा हम मुखरित होकर बोलेंगे। घर के अंदर घर के बाहर, घर के अंदर घर के बाहर, खुद को दृढ़ स्तंभ बनाकर तारीखी गाथा लिख देंगे, गार्गी वैदेही की अनुजा हम मुखरित होकर बोलेंगे, गार्गी वैदेही की अनुजा हम मुखरित होकर बोलेंगे। ये एक और कविता है स्त्रियों की, सशक्त स्त्रियों के नाम मैं उनको करती हूँ, इसका शीर्षक मैंने दिया है गिलाफ। स्त्रियाँ छली गई हैं, स्त्रियाँ छली गई हैं पुरातन युग से वर्तमान समय तक, कभी अपमानित कभी तिरस्कृत हुई, कभी अपमानित कभी तिरस्कृत हुई, तन ही नहीं मन भी रौंदा गया, तन ही नहीं मन भी रौंदा गया, बावजूद इसके वह विमुख नहीं हो पाती अपनत्व और ममत्व से, बावजूद इसके वह विमुख नहीं हो पाती अपनत्व और ममत्व से, वह मिटा नहीं पाती हृदय में स्थापित स्नेह को, हर युग में करती हैं रिश्तों की परवाह, हर युग में करती हैं रिश्तों की परवाह, जिद रखती हैं जिम्मेदारियां उठाने की, निभाती है हर रिश्ते को पर छोड़ती नहीं वह सपनों की डोर, निभाती है हर रिश्ते को पर छोड़ती नहीं वह सपनों की डोर, सभी को समेटते सभी को जीते, सभी को समेटते सभी को जीते, वह बुन ही लेती है एक गिलाफ हृदय से उठी उस वेदना से, और फिर ओढ़ लेती है वह गिलाफ, और फिर ओढ़ लेती है वह गिलाफ, और खड़ी हो जाती है एक मजबूत स्तंभ बनकर, जिसे डिगाना हर युग में असंभव होता है। ये कविता उन लड़कियों के नाम जो अपनी मेहनत और लगन से, अपने मजबूत इरादों से आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करती हैं, अपनी क्षमताओं का बखान करती हैं इन शब्दों के माध्यम से। पंक्तियां हैं, हमारा दौर आएगा जरा हमको संभलने दो,
हमारा दौर आए।

0: जाएगा, जरा हमको संभलने दो, शिखर पर पाओगे हमको ये चौखट पार करने दो। हूँ नाजुक पंखुड़ी सी मैं, यही क्यों सोचते हो तुम? हूँ नाजुक पंखुड़ी सी मैं, यही क्यों सोचते हो तुम कि जानोगे मुझे भी तुम, जरा मुझको संवरने दो। मचलती एक नदी हूँ मैं, सुनहरी भोर भी हूँ मैं। मचलती एक नदी हूँ मैं, सुनहरी भोर भी हूँ मैं। तपिश सूरज की भी होगी, कदम बस चार चलने दो। तपिश सूरज की भी होगी, कदम बस चार चलने दो। हमारी साफ गोई पर सदा ही रश्क खाओगे, हमारी साफ गोई पर सदा ही रश्क खाओगे। हमारी बेजुबानी पर जरा तुम धार चढ़ने दो। सुहानी भोर की बेला में हम भी खिलखिलाएंगे, सुहानी भोर की बेला में हम भी खिलखिलाएंगे। खुशी की रोशनी होगी, गमों की शाम ढलने दो। शिखर पर पाओगे हमको ये चौखट पार करने दो, शिखर पे पाओगे हमको ये चौखट पार करने दो।
1: रेखा भारती से हम सुन रहे थे काव्य पाठ। और सखियों, सचमुच बेटी, माँ या हमारी सास या जो परिवार में महिलाओं के रिश्ते होते हैं, सचमुच बहुत प्यारे होते हैं। और सारे रिश्ते इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, कोई परेशानी हो, कोई खुशी हो। हमारी माँ, हमारी बहन, बेटी पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलती है। और जो हमारे पिता होते हैं, उनकी भी कोई भी सहमति माँ के बिना पूरी नहीं होती है। और इस तरह से हम देखें तो रिश्ते को बनाने के लिए और बांधने के लिए माता पिता यानी स्त्री पुरुष, बेटा बेटी, सब दोनों की बराबर सहभागिता होती है। और हमारे कार्यक्रम में सहभागिता होती है हमारी, हमारे सखियों के साथ। और हमारी सखियाँ क्या सुनना चाहती हैं, क्या उनको इसमें अच्छा लगता है, अपने पत्र के माध्यम से भी बता सकती हैं। लेकिन गीत संगीत तो सबको पसंद होता है, तो हम अपनी सखियों की पसंद का एक और गीत सुनवाते हैं।

सखियों, अभी पसंद नापसंद की बात हो रही थी, और जब बात हुई इस गाने में चेहरे की, तो चेहरे की रौनक तो आपकी खुशी से बनती है, कुछ खान पान से और कुछ आपके मन से भी। और खान पान में अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, तो आपके चेहरे पर वो खुशी और रौनक दिखती है। और सखियों, एक बात हर किसी के साथ जरूर हुई होगी बचपन में, और अभी भी उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस खान पान को चलाते हैं, वो है सुबह या रात दूध का ग्लास घर में जरूर बंटता था। किसी को चीनी मिला हुआ दूध पसंद है तो किसी को बिना चीनी के, और किसी को उसमें और कुछ मिला के, लेकिन पीना तो पड़ता है क्योंकि दूध एक भरपूर पोषक तत्व से पूर्ण पेय पदार्थ है, और इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन होता है, और एक सर्विंग में आपके शरीर के लिए आवश्यक कई पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं, जैसे कैल्शियम हड्डियों दांतों को मजबूत बनाता है, प्रोटीन निरंतर ऊर्जा देता है, और सेलेनियम जो मजबूत और स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखता है। तो जिन सखियों को दूध नहीं पसंद है, दूध से बने पेय पदार्थ जरूर लें, और इसको ना नहीं कहें, क्योंकि कोई भी भोजन हमारे लिए कुछ ना कुछ फायदा जरूर देता है, तो इस तरह ध्यान रखें। और दूध नहीं पसंद है तो पनीर खाएं, दूध का शरबत भी अभी गर्मी के दिन में हम बना सकते हैं। दूध, आधा पानी मिलाइए, और उसमें कोई भी गुलाब की पंखुड़ियों वाला शरबत या कोई इस तरह का जो भी पेय पदार्थ आपको पसंद है वो इसमें डालकर पिए। किसी न किसी रूप में दूध हमको जरूर लेना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसे ही आदत में ढलेंगे, और उनको भी बचपन से शरीर तंदुरुस्त रहेगा, तो बाद में वो जैसा चाहते हैं वैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है, इसका ध्यान रखें। और सखियों, हम अपने कार्यक्रम में जो भी प्रस्तुत करते हैं आपकी पसंद के लिए ही होता है, तो हमारे कार्यक्रम में आप पत्र भी लिख सकती हैं। हमारा पता है नारी जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना, और पिन कोड है 800001। आप पत्र लिखें, आप जो चाहेंगी हम अपने कार्य

0: कार्यक्रम में वो लेकर आएंगे। और अभी हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है, तो हम अपनी सखियों से विदा लेंगे, लेकिन ये भी कहेंगे कि हमारे कार्यक्रम को मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार दिन में 12:30 पर जरूर सुने। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी सखियों से, यानी रंजना अपनी सखियों से विदा ले रही है। नमस्कार।
1: अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण

0: धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1,200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अक्षयवट कार्यक्रम में प्रस्तुत है भेंटवार्ता, प्रकृति एवं पक्षी अवलोकन से मनोरंजन। भेंटवार्ताकार है पक्षीविद नवीन कुमार, भेंटकर्ता चंद्रमणि कुमार सिन्हा।
2: हमारे साथ यहाँ पर आकाशवाणी के स्टूडियो में पधारे हुए हैं पक्षी विशेषज्ञ और पक्षी प्रेमी श्री नवीन कुमार। आप बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक भी रह चुके हैं और वर्तमान में आप भारतीय पक्षी संरक्षण नेटवर्क यानी IBCN के राज्य समन्वयक हैं और आप बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के आजीवन सदस्य भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: सभी श्रोताओं का नमस्कार। बुजुर्ग हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका जो स्थान है वो काफ़ी ऊपर होता है। ये ज्ञान के खजाना हैं और अवकाश ग्रहण करने के पश्चात इन्हें व्यस्तम दिनचर्या से निजात मिल जाती है
2: जी।
3: और हर व्यक्तियों की अपनी एक अभिरुचि होती है और अपने अपने अभिरुचि के अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन प्रकृति के बीच जाना सभी को अच्छा लगता है और प्रकृति के बीच में समय बिताना सभी को अच्छा लगता है।
2: तो हम देखते हैं जैसे हमारे पिताजी जो गांव में रहा करते हैं और वो जब उनको शहर हम सब बुलाते हैं तो उनको शहर उतना पसंद नहीं आता है क्योंकि बंद बंद से कमरे लगते हैं, तंग गलियां होती हैं, नदियां पोखर ये सब नहीं मिलते उनको शहरों में। तो वो निश्चित तौर पर जो बुजुर्ग हैं उनको प्रकृति भाता है और प्रकृति से लगाव ज्यादा हो जाता है। तो आज का विषय भी हमारा प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है, प्रकृति एवं पक्षी अवलोकन से मनोरंजन करें।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्रकृति ऐसी चीज है जिसके करीब रहें, जितना देखें, जितना उसके बीच में जाएं, उतना ही इसमें आनंद आता है। और यहीं पर हमारी एक बात आती है पक्षी दर्शन, बर्ड वाचिंग। बर्ड वाचिंग ऐसी विधा है जो आपको एक सुकून प्रदान करेगा, एक बेहतर विकल्प प्रदान करता है। आज के व्यस्तम जिंदगी में जहां सुकून के पल मिलना मुश्किल है, टेंशन दूर करने के लिए एवं आंतरिक खुशी प्राप्त करने के लिए बर्ड वाचिंग मनोरंजन एवं ज्ञान के साथ साथ एक सुखद एहसास देता है।
2: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महोदय। और अब ये धीरे धीरे लोग भी समझ रहे हैं पक्षियों का महत्व और पक्षियों को किस तरीके से सहेजा जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उनसे लगाव महसूस किया जाए। आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उसके संरक्षण का प्रयास करते हैं, उन पक्षियों का चहचहाहट जो होता है वो आपको अच्छा लगने लगता है, आप उसके बारे में उसको बचाने की सोचते हैं कि भाई वो बने रहें इस समाज में भी और मानव समाज के साथ जुड़े रहें। जी
3: बिल्कुल सही कहा आपने। पक्षियों की जब हम बात करते हैं और उनके संरक्षण की बात कर जब हम करते हैं तो इसमें एक नाम हमेशा हमें सहज याद रहता है, वो डॉक्टर सलीम अली
2: जी।
3: वो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पक्षियों के विषय में लोगों के समक्ष पक्षियों की जानकारी दी
2: जी जी।
3: और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तब हो जाती है जब उनकी लिखी हुई पुस्तक 1941 में प्रकाशित हुई, बर्ड्स ऑफ इंडिया, बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 1941 1941 में ये उनका संकलन था और ये पहला संकलन था जिसमें पक्षियों के विषय में चर्चा थी और पक्षियों के

0: संबंध में पूरी जानकारी थी और उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया था।
1: जी, और शायद मेरे विचार से भारत सरकार ने उनके नाम पर, डॉक्टर सलीम अली के नाम पर एक अभयारण्य भी बनाया हुआ है।
0: केरल में भी हैं और भी कई स्थान पर हैं,
1: जी
0: डॉक्टर
1: जी
0: सलीम अली के नाम से कई संस्थाएं हैं और कई अभयारण्य भी हैं,
1: जी जी
0: और उनका किया हुआ जो काम है आज भी लोग फॉलो करते हैं, और बहुत सारे में तो उनका जो काम था, उनका जो कि विस्तृत जो काम था, उसको आज भी लोग उसी पैमाने के अनुसार काम आज कर रहे हैं।
1: जो बुजुर्ग हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग हैं या शहर के बुजुर्ग हैं, वो किस तरीके से अवलोकन करें ताकि मनोरंजन का भाव उनमें पैदा हो, उनसे लगाव वो महसूस करें।
0: देखिए, पक्षी जो है वो पक्षी के अवलोकन करने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है।
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि हम जंगल पहाड़ पर जाएंगे तभी पक्षी अवलोकन कर सकेंगे। पक्षी हम जहाँ कहीं भी निवास करते हैं, चाहे मकान में हो, फ्लैट में हो, शहर में हो, गांव में भी हो, कहीं भी अगर हो, अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो हमारे आसपास, चाहे हम फ्लैट में ही क्यों नहीं रहते हो, तो हमारे आसपास 15-20 प्रकार के पक्षी तो आसानी से मिल जाते हैं देखने को।
1: जी
0: तो पहले तो वहीं से शुरुआत हो जाती है, हम घर के बालकनी से, घर की खिड़की से, तो पक्षी अवलोकन का काम तो वहीं से आरंभ हो जाता है। पक्षी तो हमारे चारों तरफ हैं, तो सुबह
1: जी
0: में कुछ और तरह के पक्षी आएंगे, उनकी चहचहाट कुछ और होती है, शाम में कुछ हो सकता है कि वो पक्षी बदलाव हो जाए, उसके जगह पर कोई दूसरे पक्षी आ जाए, तो इस तरह से आए, तो शुरुआत तो वहीं से कर सकते हैं, घर से ही शुरू कर सकते हैं, घर के बालकनी से, घर की खिड़की से, चाहे जहां भी हम रह रहे हो वहीं
1: जी
0: से
1: जी
0: कर सकते हैं।
1: जी नवीन जी, आप फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफर, तो उसके भी आप आजीवन सदस्य हैं। तो जो पक्षी हैं, पक्षी अवलोकन कर रहे हैं, उसी समय फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, कैसे आप फोटोग्राफी उस तरीके का करते हैं?
0: देखिए, पक्षी, एक पक्षी अवलोकन के साथ साथ अगर हमको पक्षी को किसी दूसरे के समक्ष लाना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है,
1: जी
0: तो फोटोग्राफ भी करना होता है, फोटोग्राफी भी करना होता है,
1: जी
0: तभी जाकर वह काम पूरा होता है। तो
1: जी
0: पक्षी को हम देख लिए, फिर हम फोटोग्राफ किए, जब हम फोटोग्राफ करते हैं तो वो फोटोग्राफ आम लोगों के बीच में आता है, और जब वो आम लोगों के बीच में आता है तो लोग जानते हैं कि इस तरह के पक्षी हमारे यहाँ।
1: जी
0: जैसे कि अभी हम लोगों ने बिहार में देखा, बिहार में हमारे यहाँ करीब 412 तरह के पक्षी मिलते हैं,
1: जी
0: और ये 412 तरह के पक्षी हैं, कैसे कैसे हम लोग जाने कि इसमें से अधिकांश का हम लोगों ने फोटोग्राफ किया अलग अलग बिहार के अलग अलग क्षेत्र में जाकर, चाहे वो जल वाला क्षेत्र हो, या पहाड़ हो, या जंगल हो, श्रब भरा फॉरेस्ट हो, या घास का मैदान हो, या वेटलैंड हो, तो वहां जाकर हम लोगों ने उसका चित्र खींचा, तो मालूम हुआ कि इतने तरह के पक्षी हैं। कुछ पक्षी तो हम लोग देखे जिसका हम लोग फोटोग्राफ नहीं कर सके, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक फोटोग्राफी का भी रहा।
1: जी जी तो पक्षी अवलोकन, जैसा कि आपने बताया कि घरों से भी किया जा सकता है, अपने ग्रामीण समाज में भी रहकर किया जा सकता है, मगर बाहर कहाँ जाए, खास करके बिहार में कहाँ जाया जाए जहाँ कि अच्छे तरीके से विभिन्न पक्षियों के झुंड का, समूह का अवलोकन आराम से किया जा सकता है?
0: देखिए, पक्षी के लिए क्या है, पहले हम थोड़ा सा हम जाने अपने में भारतवर्ष के विषय में।
1: जी
0: हमारा भारतवर्ष विश्व में ऐसा देश है जहाँ 6 प्रकार के मौसम है।
1: जी जी
0: दुनिया में जनरली 4 तरह के होते हैं, हमारे यहाँ भारतवर्ष में 6 प्रकार के हैं। पहला हमारे यहाँ शरद ऋतु है,
1: जी
0: जिसे हम अंग्रेजी में ऑटम सीजन कहते हैं। दूसरा हमारे यहाँ है हेमंत, जिसे अंग्रेजी में प्री विंटर सीजन कहते हैं। तीसरा ऋतु हमारे यहाँ है शिशिर या शीत ऋतु, जिसे अंग्रेजी में विंटर सीजन कहते हैं। और चौथा ऋतु है बसंत ऋतु, जिसे अंग्रेजी में स्प्रिंग सीजन कहते हैं। और पांचवा ऋतु है ग्रीष्म, जिसे अंग्रेजी में समर सीजन कहते हैं। और छठा ऋतु है वर्षा ऋतु, जिसे रेनी सीजन कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के हमारे यहाँ ऋतु हैं, मौसम है, और 6 तरह के मौसम रहने के कारण ये 6 तरह के मौसम में अलग अलग अलग अलग तरह के पक्षी आते हैं। कुछ पक्षी आते हैं जो जाड़े के मौसम में आते हैं, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो बरसात के मौसम में आते हैं। अब इसके विषय में एक घटना
1: जी
0: बताता
1: जी
0: हूँ।
1: निश्चित तौर पर।
0: बरसात के मौसम में, जस्ट बरसात के शुरुआत और एंड ऑफ द समर सीजन, गर्मी के समाप्त होने के करीब एक
1: मतलब
0: पक्ष
1: जून की अंतिम में या जून
0: अंतिम
1: के
0: में,
1: प्रारंभ में कुछ इस
0: हाँ
1: तरीके से।
0: जी, तो एक पक्षी आता है जिसका नाम है पाइड क्रेस्टेड ककू। कोयल प्रजाति का यह पक्षी है, और यह आता कहाँ से है, साउथ अफ्रीका से आता है। प्रत्येक वर्ष आता है, पूरे भारतवर्ष में आता है, और हमारे राज्य में भी आता है। और इस पक्षी को कहते हैं कि दिस इज द इंडिकेटर स्पीसीज फॉर द रेनी सीजन।
1: जी
0: अब वो पक्षी आ गया है तो रेन्स आने वाला है।
1: कितनी महत्वपूर्ण बात आपने बताया
0: तो
1: कि
0: ये पक्षी आते हैं।
1: पक्षियों को देखकर भी समझा जा सकता है कि हाँ ऋतु परिवर्तन होने वाला
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: और

0: और मतलब कितनी रोचक बात है कि महाद्वीप के दूसरे हिस्से से, किसी दूसरे महाद्वीप से, या तो कहें तो पोलर क्षेत्रों से,
1: हाँ
0: ध्रुवीय क्षेत्रों से भी पक्षियां
1: अभी
0: आते
1: मैं इसकी
0: हैं।
1: बात मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर ध्रुव वाले पे भी आएंगे।
0: जी
1: तो वो पक्षी जब आता है यहाँ, तो कोयल प्रजाति के जितने भी पक्षी हैं वो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं,
0: जी
1: वो अपना अंडा किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में डालते हैं। पहले तो वो कोशिश करते हैं कि उनके सिमिलर साइज के, उनके आकार के साइज का ही अगर कोई बर्ड मिले तो उसमें वो अपना अंडा देते हैं, और अंडा देने के बाद वो चले जाते हैं। और जिस पक्षी के घोंसले में वो अंडा होता है वही पक्षी उसका पेरेंटल केयर करता है,
0: मतलब सेता
1: चाहे
0: वही है।
1: वही सेता है। और फिर जब वो अंडा से जब बच्चा बन जाता है और जब वो उड़ने के लायक होता है तो फिर ये उड़ के फिर साउथ अफ्रीका चला जाता है।
0: ओहो, कितनी रोचक
1: आप
0: बात है।
1: देखें कि
0: जी
1: कितनी कैसी उसके अंदर की माने बात होती है, कि वो रहा आया कहीं और, पला किसी और के यहाँ, बड़ा हुआ उड़ने लगा, उड़ने के लायक हुआ, चला गया अपने देश को। कोई उसको बताया नहीं, कोई उसको रास्ते की जानकारी नहीं दी,
0: जी
1: लेकिन चला गया। ये उसका अंदर का इंस्टिंक्ट है, लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये होता है, ये
0: जी
1: प्रत्येक वर्ष होता है।
0: और ये बातें आप बता रहे हैं तो मैं इतना मनोरंजक अनुभव कर रहा हूँ। तो सोचिए, मतलब जो बुजुर्ग होंगे हमारे वरिष्ठ नागरिक, वो कितना आह्लादित होंगे इन चीज़ों को सोचकर, जानकर कि पक्षियों में भी ऐसे ऐसे गुण हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं।
1: अब आपने पोलर की बात की थी,
0: जी
1: तो हम जानते हैं कि जो हमारा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो सबसे ठंडा वाला प्रदेश है,
0: जी
1: क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम आती है, और आती भी है तो बहुत कम दिनों के लिए आते हैं। तो पोलर में ज़्यादातर जो माइग्रेशन होता है वो नॉर्थ पोल से होता है। अधिकांश माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं वो नॉर्थ पोल से आते हैं। अच्छा, हम लोग जो अगर कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम लोगों का भी एक रास्ता है, एक रूट है,
0: जी
1: एक मैप को फॉलो करते हैं। एक हम रेल मार्ग से गए या सड़क मार्ग से गए या वायु मार्ग से, तो हमारे भी जाने का एक रास्ता है, बना है, निर्धारित रास्ता है। पक्षियों का भी है, पक्षियों का भी फ्लाईवेज है।
0: तो ये पक्षी समझते कैसे हैं?
1: और पूरे मैं वो भी बताता हूँ मैं, तो जो पक्षियों का जो अराइवल होता है और आने जाने का जो है उनका भी एक निर्धारित तय रूट है, और उस रूट को कहते हैं फ्लाईवेज। तो पूरे वर्ल्ड में जो शोध करके देखा गया है कि 9 फ्लाईवेज है, और 9 फ्लाईवेज के थ्रू पक्षियों का आना जाना होता रहता है। जो हमारे हिंदुस्तान में जो आते हैं सबसे ज़्यादा जो पक्षी आते हैं वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज के थ्रू आते हैं,
0: जी
1: और इस फ्लाईवेज के अंदर में 29 देश कवर करते हैं,
0: मतलब 29 देशों की
1: देश
0: यात्रा
1: की
0: करके।
1: पक्षी हमारे राज्य में आते हैं।
0: जी हर्ष का विषय होता है ऐसा, ऐसी जानकारी को सुनकर।
1: जी। अब जब आप जब बता रहे थे कि कौन से पक्षी कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज के थ्रू, तो हमने बताया कि सबसे ज़्यादा पक्षी यहाँ का अराइवल हमारे यहाँ सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज के थ्रू होता है। और इसमें जो डक्स प्रजाति की जो पक्षी है,
0: बत्तख,
1: बत्तख प्रजाति की जो पक्षी है, करीब करीब 20 तरह के बत्तख प्रजाति के पक्षी हमारे देश में आते हैं, हमारे राज्य में भी आते हैं, 18-20 हमारे राज्य में भी आते हैं।
0: अच्छा। तो मेरे मन में एक पहलू उभर रहा है कि ये जो पक्षी विभिन्न जगहों से आते हैं, आकर रहते कहाँ हैं?
1: देखिए, ये आते हैं वो जैसे जो जलीय पक्षी है तो वो जल जल वाले क्षेत्र में आएंगे,
0: जी
1: जैसे कि हमारे यहाँ कई 5 बर्ड सेंचुरी है,
0: जी
1: जिसमें कांवर लेक है, कुशेश्वर स्थान है, बरेला लेक है, नागी डैम है, नकटी डैम है, और हमारे यहाँ एक राजधानी जलाशय है, वो बड़ा अद्भुत है, सेंटर ऑफ द पटना में है, जहाँ चारों तरफ कोलाहल है, और उसके बीच में एक छोटा सा पॉन्ड है, और उस पॉन्ड में हजारों तरह के पक्षी आते हैं, जिसमें कि हम लोग कई साल से लगातार उसमें देख रहे हैं, 7-8 तरह के तो उसमें माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। देशवासियों को भी जानना चाहिए कि एक पक्षी जिसका नाम है बैकाल टील, बैकाल एक झील है जो
0: जी
1: रशिया में है, वहाँ ये पक्षी मिलता है, बैकाल टील। ये बैकाल टील आज से 3 साल पहले हमारे राजधानी जलाशय में आया,
0: जी
1: कभी 2 साल आएगा, कभी 3 साल नहीं आएगा, 4 साल नहीं
0: मतलब मन
1: आएगा,
0: मर्जी का है।
1: मन मर्जी का है। जब पिछली दफा जब मैं भरतपुर गया था तो भरतपुर के लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ 35 साल से नहीं आया,
0: ओहो,
1: और हमारे राजधानी जलाशय में यहाँ पटना में आ गया।
0: जी
1: हर्ष की
0: जी
1: बात है, और हम लोग को के
0: जी
1: लिए ये कि बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है कि वो
0: जी
1: पक्षी भी हमारे राज्य में और हमारे पटना में आया।
0: जी जी जी तो

0: विभिन्न जंगलों में, आर्द्र भूमि में, जैसा कि आपने बताया झील, इन सबों में इन पक्षियों का वास होता है, तो क्या इनके जो संरक्षण के उपाय हैं वो क्या, कैसे सरकार कर रही है और जन सरोकार क्या होना चाहिए?
1: देखिए, सरकार के तरफ से तो पहल हो रही है। सरकार ने जो भी सेंचुरी डिक्लेयर किया है वो सब सेंचुरी में तो किसी तरह का शिकार, कोई ऐसी गतिविधि जिससे कि पक्षी को खतरा हो, वो सब करना तो वर्जित है। लेकिन एक सरकार के थ्रू ही

0: शिकार, कोई ऐसी गतिविधि जिससे कि पक्षी को खतरा हो, वो सब करना तो वर्जित है। लेकिन एक सरकार के थ्रू ही वो प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है। जब आम जन जन में ये जागृति पैदा हो कि हमारे यहाँ जो ये मेहमान आते हैं, ये विदेशी मेहमान जो इतने सुंदर हैं, इनका कलरव इतना बढ़िया है, इतने अलग अलग अद्भुत अद्भुत रंग के ये हैं, ये इनका इनके कलरव से हम लोगों को मनोरंजन होता है, तो जब हम ये ठाने, समाज आम जन जो है जब इन्वॉल्व हो, तभी जाकर ये संरक्षण होता है। तो ये सामूहिक प्रयास से ही संरक्षण हो सकता है और
1: जी
0: इसमें जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है।
1: जी जैसा कि आपने बताया नवीन कुमार जी, प्रकृति एवं पक्षी अवलोकन से मनोरंजन किस प्रकार से किया जा सकता है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो बुजुर्ग या जो कोई भी लोग मनोरंजन करना चाह रहे हों पक्षी अवलोकन के द्वारा, निश्चित तौर पर फोटोग्राफी की भी कला वो सीखें और उसके थ्रू उन्हें और मतलब याददाश्त होगा, यादें ताज़ी होंगी बाद में जब वो उन पक्षियों को देखेंगे कि हाँ मैंने इस पक्षी को यहाँ पर देखा था। आपने इतनी अच्छी अच्छी रोचक जानकारियों से हमें रूबरू करवाया, साझा किया हमारे श्रोताओं के समक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच, सभी को धन्यवाद।
2: अक्षय वट कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, प्रकृति एवं पक्षी अवलोकन से मनोरंजन। भेंट वार्ताकार थे पक्षीविद नवीन कुमार, भेंटकर्ता चंद्रमणि कुमार सिन्हा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है देशगान।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को। फिल्म का नाम है सिंदूर।

0: 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

धमाल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: लीजिए सुनिए, मुकेश को फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हाँ। बतला दो जहाँ को, समझा दो खिजा को, आए जाए यहाँ ना कोई

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को। फिल्म का नाम है छोटी सी मुलाकात। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज शेखपुरा जिले के परबीघा में 53 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही वे सामस पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों की सुविधा के लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पहले श्री चौधरी ने जिले के सामस स्थित विष्णु धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इधर मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड की परसोनीनाथ पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भी शामिल हुए। उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को सुना और तत्काल समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 288 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। राज्य की पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए गए हैं। गया जिला परिषद को ग्रामीण विकास और जनहित से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी को सम्मानित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। बिहार संग्रहालय पटना में आज से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप 7 जून तक चलेगा। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने किया। श्री सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला और कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

0: कला और संस्कृति विभाग की ओर से पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में 5 जून से 10 दिवसीय कृष्णकालीन कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में 8 से 16 आयु वर्ग के बच्चों को नृत्य गायन और वादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को कला और संस्कृति से जोड़कर उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के लैलख रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत साहूगढ़ भातु टोला में पुलिस ने छापेमारी कर 258 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। इस हादसे में 2 अन्य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज शेखपुरा ज़िले के बरबीघा में 53 करोड़ रुपए की लागत वाली मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। साथ ही वो सामस पंचायत में मुनक़िद सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों के फौरी मसाइल के हल के लिए पाबंद अहद है। लोगों की सहूलत के वास्ते इस कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि बेहतर तालीम के लिए सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल की शक्ल में फ़रोग दिया जाएगा। इससे कबल जनाब चौधरी ने ज़िले के सामस वाक़े विष्णु धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इधर वज़ीर आला आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक के परसौनी नाथ पंचायत में मुनक़िद सहयोग कैंप में भी शरीक हुए। उन्होंने आवाम के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए अफसरान को हिदायतें कीं। उन्होंने इस दौरान 288 करोड़ रुपये की लागत वाले मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। आम लोगों के मसाइल के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर रियासत की बल्दियातों में आज सहयोग कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें लोगों से मौसूला दरख्वास्तों की बुनियाद पर उनके मसाइल का तदारुक 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। रियासत की पंचायतों में भी सहयोग कैंप मुनक़िद किए गए हैं। गया ज़िला परिषद को देही तरक्यात और अवामी मफाद से जुड़े शानदार काम के लिए कौमी पंचायत अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम रियासती अवार्ड तकरीब में ज़िला परिषद की चेयरपर्सन नैना कुमारी को अवार्ड से नवाजा जाएगा। राजधानी पटना समेत रियासत के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क बना हुआ है। महकमा मौसमियात ने कयास आरई की है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में रियासत के ज़्यादातर हिस्सों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत के साथ भभुआ रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। इधर महकमा ने अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के जनूब मगरबी खित्तों में कुछ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने और बर्फबारी की वार्निंग जारी की है। बिहार म्यूज़ियम पटना में आज से समर कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ये कैंप 7 जून तक चलेगा। कैंप का इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार सिंह ने किया। श्री सिंह ने आकाशवाणी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि कैंप में तजुर्बाकार तरबियतकारों के जरिए बच्चों को टेराकोटा फ़न, दूसरे फ़नून और कहानी नवेसी के फ़न की तरबियत दी जाएगी। फ़न और सकाफत महकमा की जानिब से पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में 5 जून से 10 रोज़ा समर वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा। इस वर्कशॉप में 8 से 16 की उम्र के बच्चों को रक्स, गीत और तबला की तरबियत दी जाएगी। इसका मकसद बच्चों को फ़न सकाफत से जोड़कर उनकी तख्लीकी सलाहियत को फ़रोग देना है। भागलपुर ज़िले के सबौर थाना हलका के लैलक रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है।

0: लखीपुरा जिले के सदर थाना हल्का के तहत साहूगढ़ भातु टोला में पुलिस ने छापेमारी करके 258 ममनुआ कफ सिरप के साथ दो स्मगलर को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के बरहट थाना इलाका से पुलिस ने एक नौजवान को असलहा के साथ गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना हल्का में एक तेज़ रफ्तार ट्रक की जद में आने से एक तालिबा की मौत हो गई। इस हादसे में दो दीगर तालिबात शदीद जख्मी हो गईं। दरभंगा के ज़िला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने बहेरी सर्किल के महसूलात मुलाजिम वीरेंद्र यादव को फ़रज़ की लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। सुनिए रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग NDA परीक्षा के आलोक में कुल 394 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.upsc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की

जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई

महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल

0: से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटीले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों

0: का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमरीका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने

0: आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
0: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
0: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
0: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
0: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुडी और प्रमोद कुमार डुडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी, हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है
2: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
2: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है।

0: है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
0: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं, दूसरी रोचक बात क्या है?
0: दूसरी रोचक बात यह है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहां बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहां पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है,
0: जी
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
0: जी
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी
0: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे,
0: जी
1: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है। तो
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405-59 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन

0: 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे

0: थे तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
1: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
2: चलो चलो चलो
3: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
4: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
1: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
1: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
5: लुई पाश्चर
6: सर,
5: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
6: कहिए सर।
5: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
6: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
5: ठीक है।
1: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
1: पाश्चर वास्तव में

0: धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा। हाँ, इंजेक्शन लगा दूँ?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगे और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ,
5: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
5: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
5: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
5: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
6: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
3: आप,
6: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
6: मेरा बेटा।
3: अच्छा ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।

0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों आज है सखी सहेली की वर्षगांठ। 2003 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सफर इतना सुरीला रहा, इतना लोकप्रिय रहा कि आज भी लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। सखी सहेली देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रोताओं का प्यार मिला है। इस विशेष अवसर पर हमने फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को सजीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी शिवपुरी जी का स्वागत कर रहे हैं। हिमानी जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव प्रसारण स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा स्वागत किया और आपको और पूरे विविध भारती के परिवार को सखी सहेली की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
1: हिमानी जी, ये विविध भारती के स्टूडियो में आप आई हैं, इसके पहले भी आप आ चुकी हैं और आज सखी सहेली की वर्षगांठ पर हमने आमंत्रित किया है, तो ये स्टूडियो में आना कैसा लग रहा है और साथ में ये बताइए हमें कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, ख़ास तौर से विविध भारती से।
2: देखिए, वैसे तो मैंने फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या वो हुआ, वो रेडियो सबसे पहला। मुझे बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से, पुरानी, हम लोग, पापा हमारे घर में, तब तक दूरदर्शन नहीं आया था तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज अभी तक कानों में गूंज,
1: समाचार वाचक
2: कुंदन लाल सहगल, एक स्लॉट्स होते थे कि पुरानी फिल्मी गाने जिसमें कुंदन लाल सहगल,
1: भूले बिसरे गीत
2: भूले बिसरे गीत
1: आज भी प्रसारित होता है।
2: हाँ, और वो सुनते

0: थे, और भी मजा आता था। बिना का गीत माला कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है।
1: जी
0: और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, चूंकि वो लोग देखते थे तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे सबके
1: बिल्कुल
0: सब, तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूँ,
1: जी
0: लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में हैं, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं
1: जी
0: रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिन्न अंग था। और बचपन क्या आजकल, जब
1: हाँ,
0: खासकर
1: बहुत
0: जब
1: सारे
0: हम,
1: चैनल्स हैं।
0: बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही है आपके,
1: जी
0: गाने
1: बिल्कुल।
0: बजते रहते हैं। तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही
1: क्या
0: बचाता
1: बात
0: है।
1: है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है, तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा
0: रेडियो
1: जाता
0: रखा
1: था, और
0: जाता
1: गांव के कई लोग, यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री
0: क्रिकेट
1: सुनने
0: कमेंट्री
1: चलते
0: सुनते हैं।
1: हैं। तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए, या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिया आपने?
0: नहीं,
1: बताइए
0: क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन
1: हमें।
0: में, और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि हम घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम, तो सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाथ जोड़ के प्रार्थना
0: हाँ,
1: किया
0: और
1: करते
0: जैसी
1: थे,
0: कोई
1: हाँ
0: भी भारत पाकिस्तान का या
1: हाँ
0: भारत इंग्लैंड का
1: तो
0: कोई
1: भारत
0: भी मैच हो तो
1: जीत
0: भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं
1: जाए।
0: और
1: जी
0: कमेंट्री सुन रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुन लें, उसके बाद फिर हम
0: जरूर
1: और
0: जरूर।
1: आपकी यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगालेंगे। तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है, हम सुनते
0: जी
1: हैं।
0: जी
2: तक लो।

तो हिमानी जी, ये बधाई हो बधाई गाने में था, और हमारे श्रोताओं की ओर से बधाई संदेश के बाढ़ से आई हुई है, और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई हैं, चार चांद लग गया है विविध भारती के स्टूडियो

0: में। और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना नाता है, ऐसा लग रहा है कि मायके, जैसे बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई हूँ।
0: सही बात है।
1: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूँ, और दिल्ली हो, दिल्ली में भी करें, देहरादून में भी, जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे नहीं
0: बड़ा गहरा
1: लगता,
0: है
1: बहुत गहरा नाता।
0: और आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा। और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चल ही जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई हैं तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं। ये देहरादून से आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया? और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए। क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुक्कड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
1: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है, कि जहाँ 2-3 दिन गर्मी होती है तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। कि
0: जी
1: और हम लोग जब गर्मियाँ होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे, और पापा हमको,
0: ओ
1: पापा पहाड़ी थे तो हमको देहरादून वैली में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो होता लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में,
0: जी
1: लक्ष्मण सिद्ध होता था, और सोंग रिवर होती थी, तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे। पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग स्विमिंग पूल में भी था, क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
0: जुड़ाव बहुत
1: बहुत
0: रहा।
1: जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे, और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती है,
0: नौशिया
1: तो
0: होता
1: हम
0: है।
1: लोग प्रेफर करते थे, और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
0: क्या बात
1: फिर
0: है।
1: मसूरी पहुंचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी, और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक वो टोल आता था, टोल टैक्स होता है,
0: जी
1: वहाँ की पकौड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध है,
0: मशहूर।
1: पहाड़ी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे, और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग गन हिल पैदल चलते थे, और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर
0: अच्छा।
1: चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे, हम अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर
0: लग नहीं
1: हैं
0: रही कि आप शैतान थी, बहुत
1: हैं
0: सीधी साधी लग रही है देखने
1: बहुत शैतान थे,
0: में
1: मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब
0: तो।
1: देहरादून में होते थे, और मतलब, और क्या करते थे, और बच्चों को छत से, जैसे पेड़ों में, दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहाँ पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं। तो हम लोग पेड़ों में चले रहते थे बंदरों की तरह, मतलब ज्यादातर मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ

0: इतनी दया आती है कि वो बेचारे
1: मोबाइल में
0: फोन पे,
1: घुसे
0: मोबाइल
1: रहते
0: पे,
1: हैं।
0: अपने कमरे में या टीवी में। हम बिल्कुल पहाड़ पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे
1: क्या बात है,
0: हैं, बंदरों की तरह पेड़ों में आम। आजकल के बच्चों
1: जामुन
0: ने
1: खाना।
0: आप लोग को मतलब या तो
1: हाँ
0: ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाएं, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची, आम,
1: क्या बात
0: जामुन,
1: है,
0: अमरूद खाए हुए हैं।
1: क्या
0: उसका मजा ही कुछ और था।
1: बिल्कुल। तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थी। तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए, अपने
0: हाँ,
1: माता पिता को समझाना। तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
0: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के
1: साधन
0: पास
1: है, माध्यम
0: साधन
1: है।
0: भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था, और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था। तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस,
1: जी
0: और साइंस का ही ISC में वन ऑफ द टॉपर्स थी। मैंने BSc किया, MSc किया, लेकिन रंगमंच करती थी। तो जो मज़ा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राई था। MSc का मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लैबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यावसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मज़ा आता था। लेकिन आप सोचिए, उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
1: उत्तर प्रदेश था।
0: उत्तर प्रदेश था। तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे। मुझे याद है कि हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की, मिस्टर मार्टन, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे डून स्कूल में। तो मिसेस मार्टन मुझसे कहती थी, हिमानी यू शुड गो इनटू फिल्म्स। तो मैंने कहा नहीं, हमारा नॉर्थ में एक बड़ा वैसा आइडिया था, फिल्म्स बिल्कुल नहीं। मैं 50-55 साल पहले की बात कर रही
1: अलग
0: हूँ।
1: ही दुनिया थी
0: हाँ, नहीं
1: बिल्कुल।
0: सोच ही नहीं सकते थे।
1: जी
0: तो खैर, मैंने आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं MSc कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं, ब्रेक्ट का, थ्री पेनी ऑपेरा। इतने में NSD, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए। तब पता चला कि NSD भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में। उस टाइम NSD थी, अब तो खैर
1: जी
0: काफी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता में
1: पुणे में
0: है,
1: है और
0: पुणे में है,
1: पुणे।
0: और लखनऊ में भी अब खुल
1: जी
0: गया है भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था। तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती। तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ।
1: क्या बात
0: उसी
1: है।
0: दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे
1: हाँ
0: कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे MS अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली।
1: वाह वाह।
0: तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से NSD का भी इंटरव्यू दे दिया
1: ओहो, किसी को बताया नहीं आपने
0: किसी
1: घर
0: को
1: में।
0: नहीं बताया घर में। और जब लेटर आया NSD का सिलेक्शन का, तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही
1: हाँ, NSD
0: हूँ
1: करूंगी।
0: NSD में। तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेस करती थी। और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी, अमेरिका पढ़ने जा रही है लड़की को स्कॉलरशिप मिली है। तो सब कहती कि भटजी, भटजी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का,
1: बिटिया।
0: बेटी
1: हाँ
0: का,
1: जी।
0: भटजी की नौनी तो बहुत
1: हाँ
0: होशियार है। अब जैसे लोगों को पता चला भटजी की नौनी तो वहां जा रही है, सबने कह रही है भटजी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ। मेरे पापा के पास आए कि भटजी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है। और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में, नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी,
1: नौटंकी।
0: तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी, भांड, ये तो भांड कहते थे,
1: बहुत बुरा
0: भांडगिरी
1: माना
0: करेगी,
1: जाता था
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: बुरा मान। तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश, वो
1: जी
0: वहाँ के सब जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि

0: बेटा तू अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा, मतलब बाद में आके कर लेना है, शौक है ना तुम्हारा। तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी, पापा मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे NST लेकर गए,
1: क्या बात है।
0: वहाँ मेरा एडमिशन कराए और वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया। 3 साल की ट्रेनिंग, फिर वहाँ रेपेट्री ज्वाइन करके, रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती थी, कि अपने पैरों पे खुददारी,
1: जी
0: 250
1: जी
0: की स्कॉलरशिप से, मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगाऊँ
1: क्या
0: क्योंकि
1: बात
0: सबके
1: है,
0: खिलाफ,
1: उसमें बहुत बड़ी
0: ढाई
1: बात
0: सौ
1: है।
0: की स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी कैसे करें, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना

0: ने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगाऊं,
1: क्या
0: क्योंकि
1: बात
0: सबके
1: है,
0: क्लास
1: उसमें बहुत बड़ी
0: 250
1: बात
0: की
1: थी।
0: स्कॉलरशिप मिलती थी। उसके बाद मैंने रेपर्टरी ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी। कैसे करें, क्योंकि उस टाइम भी वो था, उत्तर प्रदेश ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने NSD रेपर्टरी ज्वाइन किया, 600 रुपये पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था एक ग्रेड
1: उसमें बहुत
0: आर्टिस्ट,
1: बड़ी रकम थी ये।
0: बहुत बड़ी रकम
1: बहुत
0: थी।
1: बड़ी
0: तो
1: रकम
0: उसी
1: थी।
0: में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे मैं, ये मेरा सफर रहा दिल्ली से,
1: जी,
0: मतलब देहरादून से
1: देहरादून
0: दिल्ली
1: से
0: तक।
1: दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: कोई बात नहीं
1: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और हमारे सामने हमारे विशेष सखी विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं। ये फिल्म हम आपके हैं कौन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहां की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का। पर आज 20 साल हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहें। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें एनएसडी की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गांव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गांव है,
1: भटवाड़ी, हाँ
0: वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी
0: जब
1: जिसने
0: अपने गांव से निकली।
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी।
0: जी
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ।
0: जी
1: तो ये मैं क्या, जब एनएसडी में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफ़ी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी, देहरादून सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई, 3-4 साल पहले एक कॉन्क्लेव हुआ था, जो प्रवासी उनको कहते हैं जो बाहर रहते हैं
0: जी जी
1: उत्तराखंड
0: जी
1: से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
0: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर।
1: क्या करें। और उनको लोगों का ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
0: कठिन
1: है।
0: जीवन
1: अभी
0: है।
1: भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे। और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई, जो मैंने गोद लिया, तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं, और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा
0: जी
1: कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है नहीं खेती करने के लिए, और वो है, तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गांव के लिए, तो मैंने इसलिए गांव

0: अडॉप्ट किया, ये एक सपना है, एक बहुत जाइगेंटिक टास्क
1: बहुत ही ये
0: है।
1: बड़ा सपना देखा है हिमानी जी। यहां पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।
0: हाँ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद हाँ। लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफ़ी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे ही बोलते हैं गांव में, कि मतलब मेरे को बुखार हुआ, तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी रास्ता, कभी सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है, वेब सीरीज, उसमें कि चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ। तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
0: दुख हुआ होगा फिर आपको।
1: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े हैं, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है, बताओ, पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी, पहाड़ में आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए, और श्रोते ज्यादातर, हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं। तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब, ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं, सब
0: खा जाते हैं,
1: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या हो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहाँ पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए, हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई। और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है। तो धीरे धीरे, और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत, ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
0: सच में
1: अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा, मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें मेरे पापा भी कभी पढ़ते होते, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहाँ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूँ, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले, और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है, पहाड़ों में कुछ औरतें काम कर रही हैं, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके। तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है, और
0: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है, और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए

0: मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें ताकि इतनी सारी लड़कियां खास तौर से जुड़ पाएं, और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है, हमने तो
1: बहुत
0: ये भी
1: कठिन है सारा काम,
0: हाँ
1: लड़कियां और औरतें ही करती है,
0: करती
1: घास
0: हैं,
1: काटने से
0: हाँ
1: लेके जानवर चुगाने से लेके सब
0: सब
1: काम।
0: कुछ। हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में, और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं,
1: बिल्कुल
0: सलाम
1: बिल्कुल,
0: तो हम आपको भी कर रहे हैं
1: अरे
0: कि आप
1: थैंक यू।
0: कहाँ
1: नहीं
0: से
1: मैं भी पहाड़ियों,
0: आई।
1: पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं,
0: जी जी
1: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर, सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं ही चिपकी थी।
0: क्या बात है सचमुच। तो हम
1: हाँ
0: इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे अभी इस
1: जरूर,
0: प्रोग्राम के बाद, 4 बजे जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में, और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानी शिवपुरी रखेंगे। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी
1: ये
0: ये।
1: मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है और धन्यवाद। और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत
0: जी
1: खुश हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो
0: जी
1: एनवायरनमेंट, इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, ज़रूर हम टैक्स दे रहे हैं
0: जी
1: लेकिन हमारा भी कर्तव्य
0: निजी
1: बनता
0: स्तर
1: है
0: पर
1: निजी स्तर पर कि
0: बिल्कुल।
1: हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
0: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम
1: हाँ
0: जामुन के, बस वही हम खा
1: वही
0: रहे
1: हम
0: हैं।
1: खा रहे हैं, वो भी कट चुके हैं।
0: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी। तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
1: जी जरूर।
0: बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम। और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई, देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती, और राधा जी, सुलक्षणा, हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए, ये तो बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी है, तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी, क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक एक भी होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं, क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है। लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई, क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना, तो NSD रेपर्टरी, वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वही होता था 9 to 5, और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते, थिएटर पैसा नहीं होता, तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ी पॉश कॉलोनी बन गई है, तो उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी, और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे, तो जैसे बैठे रहते हैं, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे एक महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करते हैं, देखो क्या इमेजिन की आदमी की औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं NSD से फ्रेश निकली थी, तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था, पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे, तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी। तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है, और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी, ऐसी अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
0: कुछ कुछ होता है, और
1: कुछ कुछ होता है कि रिफत भी, और दिलवाले दुल्हनिया की भी रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार,
0: उमराव जान में भी आपने काम किया,
1: उमराव जान में भी काम किया, और ये मेरा जो धारावाहिक आपने सब बोला, वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस टाइम का।

0: सुलक्षणा और ससुराल सिमर का की जो थे, और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल, हप्पू की उल्टन पलटन,
1: जी जी जी
0: उसमें
1: वो
0: मेरा
1: बहुत मशहूर
0: किरदार
1: हुआ।
0: कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करनी, और एक तरह के रोल होते थे। लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ या बीवी नंबर
1: जी
0: वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का, आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने DDLJ की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है मैंने, नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है।
1: जी और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
0: सूरज के
1: जो
0: सातवां घोड़ा,
1: कि कला
0: मम्मो
1: मम्मो
0: मम्मो, हाँ
1: कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहाँ एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये
0: कोई
1: तो।
0: राज की बात नहीं। ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है,
1: जी
0: शेक्सपियर ने
1: जी
0: भी कहा है कि ऑल
1: एक
0: वर्ल्ड
1: रंग
0: इज अ स्टेज,
1: जी रंगमंच है ये
0: रंगमंच
1: दुनिया
0: है
1: जी।
0: जिंदगी। तो आप देखिए, सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं। ये
1: बिल्कुल
0: तो जिंदगी सिखाती है।
1: जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने या
0: जरूर
1: फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियाँ भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज़्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है।
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज़्यादा बड़ी है, वो सब ज़्यादा बड़ी चीज़ है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना,
0: जी
1: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी, बताइए कि आज की युवा पीढ़ी, जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भाई NSD किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आएँ?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है, ये इतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोण है, 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे लंबे आवर्स होते हैं, और ख़ासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आवर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
0: लियाकत है,
1: हाँ,
0: और
1: सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं, तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो ज़रूर आइए
0: जी।
1: लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा, या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा
0: जी, बिल्कुल।
1: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
0: बिल्कुल। और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
1: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
0: बहुत संघर्ष था इनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी?
1: एक महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों, पुरुषों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है, चाहे आप चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूव करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्टी तो मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत है, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको डबली प्रूव करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला कि अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है, तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
0: दोहरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती
1: है। बिल्कुल
0: बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी

0: ताकत क्या होती है बतौर हिमानीशुपुरी?
1: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है,
0: बिल्कुल, और अपनी शक्ति को तलाशे और आपकी इस
1: और उसमें
0: लंबी
1: शक्ति
0: यात्रा।
1: है, और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है
0: जी। अब गाना सुनवाए एक
1: जरूर।
0: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल
1: जी।

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो मिले जुले कमेंट हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती हैं। तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी है। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है, आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है। मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे।
1: जरूर हम जरूर
0: तो
1: आऊंगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हाँ। तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रीकर, यूनुस खान, और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से ये प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारी विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियां हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक

0: पेज को आप का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं। आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूज़िक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का। जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ और बहुत सारे, इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहाँ पे बहुत सारे, लद्दाख से लोग आते हैं,
0: अच्छा,
1: आसाम से लोग,

0: आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए वहाँ। हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं वहाँ पे।
1: वाह वाह,
0: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरण जी जलोजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी
1: जी,
0: और जसपाल मुनि जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के।
1: जी,
0: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो पिताजी का भी अपना एक अलग
1: दर्जा रहा।
0: वर्चस्व रहा है दिल्ली
1: जी
0: में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
1: वाह,
0: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
1: अच्छा,
0: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
1: जी,
0: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
1: जी
0: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गज़ल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज़ किया। तो ये इस तरीके का रहा सफ़र
1: ये सफर इस तरह से चलता रहा।
0: जी दिल्ली में।
1: हमारी बातचीत के इस सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं, तो
0: ज़रूर,
1: आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा, देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं,
0: जी
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं,
0: जी जी जी
1: है ना?
0: जी जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूँ ना,
1: जी,
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है मेरे
1: क्या बात
0: पिताजी
1: है,
0: के साथ।
1: वाह,
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूँ। आप
1: वाह,
0: देख रहे होंगे इस पे ये निशान,
1: जी,
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ, उंगलियों
0: तो
1: के,
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह
0: और ये जो थ्रेडिंग है, ये
1: जी,
0: देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा,
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज़ किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहाँ से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहाँ से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ,
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
1: क्या बात है,
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु
0: और वेणु, क्योंकि मांसरी को वेणु भी बोलते हैं,
1: जी,
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज़ किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों,
1: जी,
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके, सलीम सुलेमान जी से लेके, विशाल शेखर जी से लेके, सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया
1: वाह
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की,
1: जी,
0: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और

0: इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था, तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले।
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है,
1: बिल्कुल
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें। अब उसमें पंडित प्रवीण गुरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने
1: वाह
0: आशीर्वाद दिया मुझे, वो उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं,
1: जी जी
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी,
1: जी
0: अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कज़न ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं,
1: जी जी
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं वो, एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं।
1: जी जी
0: और फिर और भी काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफ़ी देवोप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें,
1: वाह
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था,
1: जी
0: मेरे भाई ने राग हंसोधनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है
1: वाह वाह वाह
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ।
1: जी, क्या
0: फिर
1: बात है
0: मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा,
1: जरूर
0: उनके बारे में भी बताऊंगा।
1: जी।

0: पारस जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर, और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए,
0: जी
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचिन काम करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि

0: उस एज में
1: हाँ
0: मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था। तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई, वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप ज़रूर भेजिए। वहाँ से फिर कड़ी बनी मुंबई की, आने की।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: तो इस तरह से एक
0: मुंबई
1: तरह
0: आना
1: से
0: हुआ।
1: जसपाल मोनी जी की,
0: हाँ, इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं।
1: जी
0: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता।
1: जी
0: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
1: त्याग करना पड़ता
0: त्याग
1: है।
0: करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
1: जी
0: उस चीज में मेरे लिए।
1: बिल्कुल। एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग-अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
0: बिल्कुल।
1: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे,
0: जी
1: लेकिन किन-किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें,
0: जी
1: आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
0: जी वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है।
1: जी
0: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
1: जी जी
0: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
1: ओ माय
0: बस।
1: गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी
0: जी
1: पीसेस हैं।
0: जी
1: जी
0: जी
1: और
0: और ऊंचाई एक पिक्चर आई थी,
1: जी
0: ऊंचाई।
1: जी राजश्री
0: हाँ
1: प्रोडक्शंस की,
0: जी,
1: अमिताभ बच्चन थे।
0: एक मिली पिक्चर आई थी, केदारनाथ,
1: जी
0: नज़रअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
1: वाह वाह,
0: मुन्ना भाई MBBS रिटर्न है,
1: क्या बात है,
0: दबंग 3 है, दृश्यम है,
1: ये तो बहुत लंबी
0: सरबजीत
1: फहरिस्त
0: है, फितूर पिक्चर है,
1: है। जी
0: नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मनमर्जियां है,
1: वाह वाह,
0: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
1: हाँ दोनों पार्ट,
0: हाँ, दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
1: वाह वाह
0: बहुत सारी पिक्चर हैं
1: जी
0: और भी बहुत
1: बिल्कुल।
0: सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है
1: हाँ
0: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं,
1: जी,
0: तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है,
1: जी,
0: तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है, और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: इन्जॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज़्यादा करता हूँ,
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज़्यादा करता हूँ, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं इन्जॉय करता हूँ,
0: जी जी,
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं,
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे,
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है, करेक्ट, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंट है।
1: और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है लोगों तक, घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका, और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं, और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि
0: जी,
1: मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
0: हम बिल्कुल बिल्कुल हैं। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है,
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है?
1: जी, पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है, और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
0: वाह,
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री के,
0: मेटल फ्लूट बजाया करते थे,
1: मेटल फ्लूट हो, नहीं ये मेटल फ्लूट है सर,
0: जी बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह,
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट।

0: है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका,
1: हाँ
0: चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है।
1: जी,
0: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू फ्लूट से
1: डिफरेंट
0: एकदम
1: है
0: अलग है।
1: बिल्कुल।
0: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
1: ये भी
0: मुझे
1: बजाना होता है
0: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ।
1: जी
0: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं,
1: जी
0: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं।
1: जी
0: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकेरिनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी।
2: तो भगवान ना मानो

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युवानी।

0: रिश्ते आवाज़ देकर नहीं चलते, कदम मिला कर चलते हैं धीरे बिना शोर के।
1: कभी एक रुकता है तो दूसरा वजह नहीं पूछता, बस चाल थोड़ी धीमी कर देता है।
0: निभाना शायद यही होता है नीलिमा, साथ चलने की जिद नहीं, साथ चलने की आदत।
1: यही रिश्ता हमारी आकाशवाणी का अपने लिसनर्स के साथ है। समय के साथ हमारी आकाशवाणी ने अपने लिसनर्स के लिए खुद में बहुत सारे बदलाव किए हैं और हमारे लिसनर्स के साथ कदम से कदम मिलाया है।
0: हमारे लिसनर्स की हर जरूरत का ख्याल रखा है, उनके हर अप्स एंड डाउन्स में उनका हाथ थामे रखा है। इंफॉर्मेशन के रास्ते से गुजरते हुए उन्हें एजुकेशन और इंटरटेनमेंट देने की हर मुमकिन कोशिश की है। और दोस्तों, आपने भी हमारा साथ बखूबी निभाया है, उस साथ, विश्वास और अपनापन के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रचा। आज 2 जून यानी मंगलवार का यह प्यारा सा दिन आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी पटना के साथ।
1: और दोस्तों, मैं हूँ नीलिमा। आज का यह मंगलवार कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि हर मंगलवार की तरह हम आज के दिन को भी बेहद यादगार बनाएंगे।
0: बिल्कुल नीलिमा, क्यों नहीं। आज 2 जून है और आज का दिन ऐतिहासिक है। हम बात करेंगे तेलंगाना स्थापना दिवस की, जिसने भारत के मानचित्र पर एक नई पहचान जोड़ी। साथ ही सेहत के प्रति जागरूक रहने के लिए आज हम चर्चा करेंगे विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे पर।
1: और जैसा कि आप जानते हैं कि आज ट्यूसडे है, तो अब बारी है हमारे खास सेगमेंट मनोबल मंगलवार की। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर हमारे युवा श्रोता निश्चित रूप से खुद को मोटिवेटेड महसूस करेंगे।
0: बिल्कुल नीलिमा, क्योंकि हौसलों की उड़ान ही सफलता का दूसरा नाम है। और सिर्फ बातें ही नहीं, आज के सफर में हम गीत संगीत का भी भरपूर मजा लेंगे, जो आपकी थकान को दूर कर देगा।
1: और अंत में हम आपके लिए ले आएंगे कुछ नए और दिलचस्प फैक्ट्स जो आपकी जनरल नॉलेज में 4 चांद लगा देंगे।
0: और सबसे जरूरी बात, जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज हम जॉब वैकेंसी से कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करेंगे।
1: तो कहीं मत जाइएगा, आप सुन रहे हैं युववाणी, जहां बातें होती हैं आप तक पहुंचने वाली। आप जैसे युवाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना सूरज हुआ फिल्म कभी खुशी कभी गम से अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में। तो दोस्तों, आज है तेलंगाना का एस्टेब्लिशमेंट डे। तेलंगाना सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, इसके ज़िलों की अपनी एक अलग रूह है। वहाँ के हस्तशिल्प जैसे पोचमपल्ली इक्कत की साड़ियाँ और बिदरी का काम दुनिया भर के फैशन डिज़ाइनरों को आज भी प्रेरित करता है। यह कला सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मेहनत की एक विरासत है।
1: बिल्कुल सही नीलिमा। और क्या आपको पता है कि तेलंगाना शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी कितनी तेजी से उभर रहा है? वहाँ के युवाओं का खेल के प्रति जुनून और अकादमिक उत्कृष्टता में जो सुधार आया है वो वाकई काबिल तारीफ है। चाहे वो बैडमिंटन कोर्ट हो या फिर ग्लोबल कॉर्पोरेट जगत के बोर्ड रूम्स, तेलंगाना के लोग हर जगह अपनी छाप छोड़ रहे हैं।
0: और एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है रिचा, वो ये है कि उनकी जो संस्कृति है वो काफ़ी समावेशी है। हैदराबाद को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ हर त्यौहार, हर भाषा और हर कल्चर के लोग आपस में घुल मिल कर रहते हैं। यही तो असल भारत की खूबसूरती है ना?
1: एकदम सही। तो दोस्तों, तेलंगाना का गठन सिर्फ एक राज्य का बनना नहीं, बल्कि यह इच्छा शक्ति की जीत है। यह हमें सिखाता है कि अगर एक स्पष्ट लक्ष्य हो और लोगों का साथ हो, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।
0: सही कहा। आज तेलंगाना स्थापना दिवस पर हम इस नए राज्य की ऊर्जा और इसकी जीवंतता को सलाम करते हैं। आशा है कि तेलंगाना यूं ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे और हमारे देश की शान को बढ़ाता रहे।
1: 2 जून 2014, ये वो तारीख है जो भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की तरह दर्ज है। तेलंगाना का गठन सिर्फ एक राज्य का बनना नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों की उस लंबी सांस्कृतिक और राजनीतिक जद्दोजहद की जीत थी, जिसने उन्हें अपनी एक अलग पहचान दिलाई।
0: बिल्कुल रिचा। और आज 12 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो तेलंगाना ने अपनी विकास यात्रा में जो रफ्तार पकड़ी है वो वाकई देखने लायक है। हैदराबाद का जो साइबर इमेज आज पूरी दुनिया में है, वो रातों रात नहीं बना। वहाँ के टी हब ने स्टार्टअप्स की दुनिया में जिस तरह क्रांति लाई है, वो आज भारत के हर युवा के लिए एक केस स्टडी जैसा है। तो दोस्तों, तेलंगाना के बारे में बातें जारी रहेंगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट भी है ज़रूरी। तो आइए एंजॉय करते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म इश्क सूफियाना से मोहित काफी की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों हम बात कर रहे थे तेलंगाना स्थापना दिवस के बारे में। तो तेलंगाना, सबसे दिलचस्प बात यह है नीलिमा तेलंगाना की, कि तकनीक के इस दौर में भी वहाँ के लोगों ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। आप उनके बथुकम्मा त्यौहार को ही देख लीजिए। फूलों का यह उत्सव न केवल प्रकृति के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है, बल्कि समाज में महिलाओं की भागीदारी और उनके सामूहिक नेतृत्व का भी सबसे सशक्त माध्यम है।
1: सही कहा ऋचा आपने। और बात अगर कृषि की करें तो कालेश्वरम जैसी विशाल परियोजनाओं ने तेलंगाना के सूखे इलाकों की तस्वीर बदल कर रख दी है। आज वहाँ के किसान सिर्फ गुजारा नहीं कर रहे, बल्कि तकनीक और बेहतर जल प्रबंधन के साथ नई उपज की रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये मॉडल बताता है कि अगर नीति सही हो तो भूगोल बदला जा सकता है।
0: साथ ही तेलंगाना की वास्तुकला की बात की जाए, किए बिना यह चर्चा अधूरी है। वारंगल के काकतीय मंदिर हो या गोलकुंडा का किला, ये पत्थर की इमारतें आज भी अपनी भव्यता से वहाँ से समृद्ध इतिहास की कहानी सुनाती है। यह राज्य आज परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन तालमेल है।
1: और खान पान को कैसे भूल सकते हैं ऋचा, हैदराबादी बिरयानी। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जा रहा है। इसने दुनिया भर में जो नाम कमाया है वो वहाँ के मसालों और पाक कला की उस बारीकी को दर्शाता है जो सदियों से चली आ रही है। यह स्वाद सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों के खुले दिल और मेहमान नवाजी का प्रतीक है।
0: बिल्कुल नीलिमा, तेलंगाना की यह कहानी संघर्ष से शुरू हुई और आज सफलता के शिखर पर है। यह हर उस युवा के लिए सबक है जो अपनी मेहनत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। आज के दिन हम तेलंगाना की इस गौरवशाली विरासत और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
1: तो दोस्तों ये हुई तेलंगाना के बारे में बातचीत। अब आइए आपको सुनाते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से, ये गाना उदित नारायण की आवाज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 जून है और तेलंगाना स्थापना दिवस के साथ साथ आज एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। नीलिमा, अक्सर हम अपनी सेहत की बात करते हैं, समय बाहरी दिखावे पर तो ध्यान देते हैं, पर क्या हम अंदरूनी स्वास्थ्य यानी डाइजेशन को उतनी अहमियत देते हैं?
1: बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने ऋचा। असल में हमारी सेहत की नींव हमारे पेट से ही शुरू होती है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो चेहरे पर ना चमक रहती है, ना ही काम में मन लगता है। आज के भाग दौड़ भरे लाइफस्टाइल में बाहर का खाना और अनियमित समय हमारे पाचन के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा नीलिमा आपने। और मज़े की बात ये है नीलिमा कि हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं। एसिडिटी, ब्लोटिंग या थकान, हमें लगता है कि ये सब तो चलता रहता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पेट की सेहत सीधे तौर पर हमारी मानसिक शांति और ऊर्जा के स्तर से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल, इसलिए आज इस दिन का मकसद ही यही है कि लोगों को जागरूक करें। क्या खाना है ये जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कैसे और कब खाना है। फाइबर युक्त आहार, पर्याप्त पानी पीना और खाने के तुरंत बाद न सोने की आदतें, ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
0: और सबसे ज़रूरी बात नीलिमा, माइंडफुल ईटिंग। आज के दौर में फ़ोन देखते हुए खाना खाना एक फैशन बन गया है जो हमारे पाचन को पूरी तरह प्रभावित करता है। आज के दिन हमारे सभी श्रोताओं को बस एक छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। आज अपने भोजन का आनंद लें बिना किसी गैजेट के।
1: क्या बात है रिचा, बहुत ही बढ़िया सुझाव है ये। तो दोस्तों, आज से ही अपने पाचन तंत्र का ख्याल रखना शुरू करें। याद रखिए, पेट स्वस्थ तो मन और शरीर दोनों स्वस्थ। आप सुनते रहिए युववाणी, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ खबरों की नहीं, आपकी अपनी लाइफस्टाइल की भी होती है। तो आइए अब सुनाते हैं आपको हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाजीगर से अलका याग्निक विनोद राठौड़ की आवाज में ये गीत। दोस्तों, अब बारी है प्रेरक कहानी सेगमेंट की। जिंदगी के सफर में अक्सर हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं। आज युववाणी पर हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको यह याद दिलाएगी कि हार मान लेना समाधान नहीं है।
1: बिल्कुल ऋचा, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत गरीब था। उसके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया थी। चलिए इसे विस्तार से सुनते हैं।
0: कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के आर्यन की। आर्यन बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी।
1: लेकिन ऋचा, क्या आर्यन ने हार मान ली? नहीं, उसने दिन में मेहनत मजदूरी की और रात के अंधेरे में उन किताबों को पढ़ा जो वो रद्दी की दुकान से लाया करता था। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे, तुम सपने देख रहे हो, अपनी औकात देखो।
0: अक्सर लोग हमें हमारी सीमाओं में बांधना चाहते हैं। आर्यन के साथ भी यही हुआ। उसे बार बार असफलता मिली, कभी इंटरव्यू में रिजेक्शन तो कभी पैसे की कमी। लेकिन आर्यन ने एक बात सीखी थी, पत्थर पर जब छेनी हथौड़ी से चोट पड़ती है तभी वो मूरत बनता है। असफलता भी वैसी ही चोट है जो हमें तरासती है।
1: सबसे कठिन मोड़ तब आया जब उसके पिता बीमार हो गए। घर चलाने का पूरा जिम्मा आर्यन पर आ गया। उसने अपने सपनों को एक कोने में रख दिया और सिर्फ काम में जुट गया। एक साल बीत गए, 2 साल बीत गए, उसका सपना धीरे धीरे धुंधला होने लगा।
0: दोस्तों, कहानी अभी जारी है, लेकिन उससे पहले आइए सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे खराब परिस्थितियों के कारण आर्यन का सपना धुंधला हो रहा था। फिर एक दिन उसे किसी ने कहा, आर्यन, सपने देखने की उम्र तो निकल गई, अब तो बस गुजारा करो। आर्यन उस दिन घंटों खामोश बैठा रहा। उसने अपना बचपन, अपनी मेहनत और वो चमकती हुई आंखों वाले लड़के को याद किया जो कभी कलेक्टर बनने का ख्वाब देखता था। उसने उसी रात खुद से एक वादा किया, मैं हारूंगा नहीं, मैं बस अपना रास्ता बदलूंगा।
1: उसने अपनी नौकरी के साथ साथ सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना शुरू किया। वो दिन रात एक कर देता था। बिना किसी कोचिंग, बिना किसी बड़े रिसोर्स के उसने शहर की लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पढ़ाई की, जो आज हमारी पटना की लाइब्रेरी की याद दिलाती है।
0: और अंत में वो दिन आया जब उसका नाम फाइनल लिस्ट में था। वो व्यक्ति जिसने कभी रद्दी की किताबें पढ़ी थी, आज वो खुद एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि हालत आपको रोक सकते हैं, लेकिन हार तभी सकते हैं जब आप खुद हार मान लें।
1: दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है, ये आप में हर हर उस व्यक्ति की है जो आज इस समय अपनी परीक्षाओं जैसे कि बीपीएससी, एसएससी की तैयारियों में पसीना बहा रहा है। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन याद रखिएगा, असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की शुरुआत है।
0: तो आज के इस दिन खुद से ये वादा कीजिए कि आप कभी नहीं रुकेंगे। आपकी मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। बस अपनी राह पर डटे रहिए।
1: क्या शानदार कहानी थी रिचा। यकीन है हमारे सुनने वाले युवाओं को इससे बहुत हिम्मत मिली होगी। चलिए, अब वक्त है आगे बढ़ने का, तो सुनाते हैं आपको हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे फतेह कर फतेह, अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म फतेह से ये ट्रैक। दोस्तों, आज है मंगलवार और आज के दिन हम आपको सुनाते हैं मनोबल मंगलवार में कुछ खास। तो आइए सुनते हैं ऋचा को। उससे पहले आपको सुनाते हैं एक अंतराल, उसके बाद सुनते हैं ऋचा को।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: नमस्कार, मैं हूँ ऋचा। आज मैं आपसे किताबी ज्ञान नहीं बल्कि दिल की बात करना चाहती हूँ। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र एक अजीब सी दुनिया में रहते हैं, जहाँ बाहर की दुनिया को लगता है कि हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं हमारे अंदर एक समंदर उबल रहा होता है। कभी सिलेबस का बोझ, कभी समाज के ताने, और कभी वो आधी रात का सन्नाटा जब मन चीख कर पूछता है, ऋचा अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। कभी कभी लगता है कि बस अब हिम्मत जवाब दे रही है, शायद मेरा भविष्य अंधकार में है। लेकिन तभी मेरी नजर इतिहास के उन पन्नों पर पड़ी जो हमें सिखाते हैं कि जब सब कुछ होने का डर हो तभी असली नायक का जन्म होता है। वीरता की वो गाथा, हैंड ऑफ गॉड का रहस्य। हाल ही में मैंने भारतीय सेना की 17 पुणे हॉर्स रेजिमेंट के बारे में पढ़ा। इस रेजिमेंट का गौरव इतना बड़ा है कि इनके प्रतीक चिन्ह को हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, ये एक छीना हुआ सम्मान है। इतिहास की गूंज 1857 के युद्ध में इस रेजिमेंट के वीरों ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनके हाथ से उनका शाही परचम छीन लिया था। उस पर एक हाथ बना था और लिखा था, यद उल्लाह फौक इदाहीन। इसका अर्थ है, ईश्वर का हाथ हर शक्ति के ऊपर है। ये प्रतीक हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपना सब कुछ झोंक देता है तो नियति भी उसे सलाम करती है। शहीद अरुण खेत्रपाल की वीरता इसी मिट्टी के लाल थे। अरुण खेत्रपाल जिन्होंने 1971 में अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए कहा था कि मेरी गन काम कर रही है और मैं लड़ना जारी रखूंगा। He didn't just fight the war, he defined what it means to be unbreakable. जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे शर्म आती है कि मैं एक छोटे से एग्जाम के डर से हार मान रही हूँ। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। हमारे संघर्ष भी एक युद्ध है, हमारी किताबें हमारी हथियार है और हमारा अनुशासन हमारी ढाल। अगर 17 पुना हॉर्स दुश्मन से उनका गौरव छीन सकती है तो क्या हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत नहीं छीन सकते। कुछ पंक्तियां हैं जो मैं अपने एस्पिरेंट्स दोस्तों के लिए डेडिकेट करना चाहूंगी और मुझे पता है कि वो इन पंक्तियां से काफी रिलेट करेंगे। मंजिल से कह दो कि अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मंजिल से कह दो कि अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुसीबतों से कह दो कि अभी टूटा नहीं हूं मैं, मेरी खामोशी पर मत जाना ए दुनिया वालों, राख के नीचे भी अक्सर अंगारे दबे होते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसे दिए में उजाला होगा। याद रखिएगा, हम सिर्फ छात्र नहीं है, हम आने वाले कल के निर्माता हैं। जब भी मन थके तो बस ये सोचिए कि ईश्वर का हाथ हमारे साथ है। बस

0: हमें अपना कर्म करना है। सदा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना ऋचा से उसको मोटिवेट करने की कहानी। अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक।

0: एससी ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये,
1: महिलाओं के लिए 0 रुपये।
0: यूपीएससी ने सीडीएस की वैकेंसी निकाली है। आवेदन 20 मई से शुरू हो चुके हैं और 9 जून तक आवेदन करने की अंतिम तारीख है।
1: परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है।
0: जी दोस्तों, 13 सितंबर 2026 को सीडीएस एग्जाम होगा।
1: जनरल ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये और एससी एसटी ऑल फीमेल के लिए 0 रुपये।
0: इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 100 रुपये, 100 पोस्ट, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 पोस्ट, इंडियन नेवल एकेडमी 26 पोस्ट, ओटीए के लिए 293 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है।
1: दोस्तों, अब बारी है स्पोर्ट्स अपडेट्स की।
0: दिव्यांशी ने दोहरी स्वर्णम सफलता से इतिहास रचा।
1: उभरती हुई खिलाड़ी 15 वर्षीय दिव्यांशी भौमिक ने WTT फिडर महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह भारत की सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन गई है।
0: विश्व रैंकिंग में 211वें स्थान पर काबिज दिव्यांशी वॉमिक ने रविवार को फाइनल मुकाबले में चीनी टाइपे की विश्व की 38वीं नंबर की खिलाड़ी यह थी टियाइन को 3-2 से पराजित किया।
1: मात्र 15 वर्ष की आयु में दिव्यांशी जापान की स्टार मीवा हारिमोटो के बाद WTT फीडर सर्किट में महिला एकल खिताब जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी हैं।
0: दिव्यांशी मौमिक ने एक और स्वर्ण उपलब्धि जोड़ते हुए महिला युगल का स्वर्ण पदक भी जीता। उन्होंने भारत की ही सिंड्रेला दारू के साथ जापान की शांची आओकी कोकन मुरमात्सु की जोड़ी को फाइनल में 3-2 से हराया।
1: दोस्तों, अब बारी है हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट सेगमेंट की।
0: नए टीके फेफड़ों के कैंसर का इलाज होगा।
1: जी हाँ दोस्तों, क्यूबा और अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने मिलकर फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीरा नामक एक टीका विकसित किया है।
0: ये टीका उन मरीजों के लिए उपयोगी है जिन्हें फेफड़े का कैंसर है। ये कैंसर को रोकने वाली नहीं बल्कि इलाज करने वाली है।
1: ये शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति सिखाती है कि कैंसर की कोशिकाओं को पहचानकर उन पर हमला किया जाए। ये सिर्फ कैंसर वाली कोशिकाओं को निशाना बनाती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत मिनिमल हैं।
0: कुछ अध्ययनों के अनुसार यह 3-4 महीने से बढ़कर 7-8 महीने तक हो गई है। पश्चिमी देशों में ऐसे इलाज का सालाना खर्च 1.6 करोड़ रुपए तक हो सकता है।
1: दोस्तों, ये थी आज की बातें। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइए। feedback@patna.gmail.com। तब तक के लिए नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मैरी कॉम से विशाल दंदलानी की आवाज़ में ये प्यारा ट्रैक। दोस्तों, अब हमारा टाइम हो गया है आपको रोजगार समाचार देने का। एसएससी ने 12,256 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। आवेदन करने की तारीख 21 मई से 22 जून तक रखी गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष रखी गई है।
1: परीक्षा दो चरणों में होगी, टायर वन एंड टायर टू। टायर वन अगस्त सितंबर महीने में होने की संभावना रखी गई है और टायर टू दिसंबर में होने की संभावना रखी गई है।
0: सबसे जरूरी बात तो बताना भूल ही गई नीले माँ आप।
1: वो क्या रचा?
0: आवेदन शुल्क
1: हाँ रचा, तो बताइए।
0: जनरल ओबी

युववाणी, अभी आप ये युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं मगही कार्यक्रम मागधी।

बात करैत स्कूल जा रहल हल तो खूब मजा आवा हलै और कुछ लोग ई देख के हंसा हलथिन कि लड़की होके साइकिल चलावित हत, मगर कुछ प्रोत्साहित भी कर रहल थीन कि कितना मेहनत कर है, देखा कितना होशियार है, साइकिल चलावित है और एकरा से कितना घर के काम भी कर है। तो एकरा लेल एगो खास दिवस भी अप्रैल के 2018 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनावे के घोषणा होले है। तो विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून के सौंसे दुनिया भर में मनावल जा है। ई दिन के उद्देश्य है कि एकरा से बेहतर स्वास्थ्य, किफायती और सुलभ है और एकर पर्यावरण के संरक्षण भी होबा है। और अब तो बिहार सरकार के तरफ से स्कूल में लड़कियन सब के मिला है तो लड़की सब के उपस्थिति एकरा से बढ़ल भी है। कितना महिला तो सुबह शाम स्वास्थ्य के सही रखे लेल एकरा चला रहल थीन है और कितना मेहरारू तो अपन काम काज के जगह पर भी साइकिल लेके जा थीन। 2026 के थीम में एक हरित भविष्य है तो एकरा लेल साइकिल चलाना है तो बेहतर स्वास्थ्य लेल, पर्यावरण लेल किफायती सुविधाजनक है अपन साइकिल तो जितना हो सके इन्ने उन्ने जाए लेल एकरा फिर से राह पर उतार थीन। एकरा से हम सब भी सुरक्षित रहबे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहते तो खुला हवा के आनंद लेवे और स्वस्थ रहबे, मस्त रहबे, बीमारी से बचल रहबे। और अपने सब लगी हम ले के आई है लोक भजन, गायक कलाकार रहथिन जनार्दन प्रसाद सिन्हा, तो सुनथिन ही लोक भजन।

मागधी के सुनिहार श्रोता लोगिन के दिव्या भारती के प्रेम भरल प्रणाम। श्रोता लोगिन, आज हम दुगो लड़की के साइकिल से स्कूल जाय देख ली तो हमरा अपन दिन के याद आ गले कि कैसे भोरे भोर हम साइकिल लेके हवा से

0: वाह, बहुत निमन। ठुमुक ठुमुक के चलत राम जी, अभी हमनी सब सुन रही हल लोक भजन जनार्दन प्रसाद सिन्हा से। अब सुनथिन वार्ता, हरा सोना के पहचान करूं। वार्ता कारथिन डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद।
1: ई सुनने में तो बड़ा अजीब लगा है कि भला सोना भी कहीं हरियर होवे है, बाकी बांस से इतना फायदा हमनी और देश के है कि अगर एकरा सोना कहल जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होते। आज पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन के गंभीर संकट के चलते हमर देश बहुत गंभीर संकट के सामना एगो चुनौती के रूप में कर रहले है। दूसर तरफ जमीन के कटाव और अपन देश में हर साल कहीं न कहीं आवे वाला बाढ़ के चलते ई जरूरी हो गई है कि हरा सोना यानी बांस के पेड़ लगावे लगी ठीक तरह से एकरा पर भरपूर ध्यान देते हुए एकर तेजी से विकास कैल जाए। अपन ढेर सारा गुण और विशेषता के चलते बांस के पेड़ आज एगो नामी प्रजाति बन गई है। तबे तो लोग एकरा यानी बांस के हरा सोना के नाम से भी पुकारा हथी। हमनी के जिंदगी के शुरुआत यानी पालना से लेके आखिरी यात्रा यानी अर्थी तक लगभग 1500 से ज्यादा काम में एकर प्रयोग होवा है। अपन देश में बांस के गरीब के लकड़ी चीन में दोस्त और वियतनाम में भाई के नाम से पुकारल जा है। लोग एकरा बारे में कहा हथी कि बांस के पेड़ लगावे के बाद खाली 2-3 साल ओकर देखभाल करे के जरूरत पड़े है और 7 साल में ये पूरा तरह से बड़का बड़का पेड़ तैयार हो जाए। एकर बाद बांस के पेड़ से 40 साल तक हरेक साल कम से कम 1 लाख रुपया से भी ज्यादा के कमाई होते रहा है। ये कितना बड़ा बात है। दूसर दूसर चीज के खेती करे से ज्यादा फायदा बांस के खेती करे में होवा है। एक बार बांस के पेड़ लगा के सालों साल छोटा छोटा लघु और कुटीर उद्योग लगातार चलावल जा सका है। बांस के महत्व के अंदाजा यही बात से लगावल जा सका है कि आज के युग में गांव के प्रगति और विकास के सूचक बांस बन गई है। ऐसे तो कोई भी देश चाहे वो विकसित हो चाहे अविकसित, भगवान के देल ई प्राकृतिक वरदान के बहुत ज्यादा महत्व है। भारत के अर्थव्यवस्था में जंगल झाड़ के बहुत महत्व है, काहे कि एक तरफ तो एकरा चलते प्रत्यक्ष रूप से काम धंधा के तेजी से आगे बढ़ावे में बहुत सहायता मिला है, तो दूसर तरफ परोक्ष रूप से खेती बाड़ी के तेजी से बढ़ावे में एकरा से बहुत सहायता मिला है। प्रकृति हमेशा हमनी के सबक दे रही है कि समय रहते सुधर जा, न तो जे भोग रहला है ओकरो से ज्यादा भयंकर आवे वाला दिन में भोगे पड़तो। बांस मात्र एक पौधा ही नहीं बल्कि एगो बहुपयोगी संसाधन है। तबे तो केंद्र सरकार 2016 में एकरा वन के परिभाषा से हटा के घास के श्रेणी में रखल गई है, जेकरा चलते एकर व्यापारिक उपयोग करे के रास्ता आसान हो गई है। बांस से आज अगरबत्ती, फाइबर बोर्ड, दरवाजा के चौखट, फर्नीचर, कपड़ा, तौलिया, चप्पल, टाइल्स और दूसर दूसर सामान बनावल जा रही है। ये जान के भी लोग के आश्चर्य होते कि नयका संसद भवन में भी बांस से बनल फर्श और पैनल के उपयोग हो रही है। अपन देश में अभी तक एकर समुचित उपयोग न हो रही है, काहे कि तकनीकी ज्ञान और पुरान नीति के चलते बांस के विकास पर्याप्त रूप से न हो रही है। आज हमर अगल बगल के पर्यावरण में सुधार से लेके खेती, उद्योग, परिवहन, व्यापार सब जगह एकरा से भरपूर लाभ मिल रही है। बांस के खेती करे में एगो ये भी लाभ है कि एकरा सालों भर कोई भी मौसम में लगावल जा सका है। अभी एकर लगभग 1300 उपजाति है। एकर खेती लगी 8 डिग्री से लेके 30 डिग्री तापमान और साल भर में 100 मिलीलीटर

0: मीटर वर्षा के जरूरत पड़ा है। मलेशिया जैसन देश में एकर खेती करके देश मालोमाल हो रही है। बांस के बिया देखे में एकदम से जौ के तरह लगा है और 1 किलो में 15 से 20 हजार बिया मिल जाए। यही के चलते लोग ज्यादातर काट के एकर टहनिये लगा दे हती, जेकरा चलते कोई झंझट न उठावे पड़े। बांस के पेड़ में फूल ओकर जिंदगी में एक के बार निकला है और घड़ी पूरा पेड़ फूल से लद जाए। देखे में इतना सुंदर लगा है कि ओकर वर्णन न कहल जा सके। अपन देश में एकर उपयोग मकान, फर्नीचर, घरेलू चीज बनावे में, कागज, खंभा, टोकरी, पलंग, नाव आदि बहुत सा चीज में हो रही है। एकरा छोड़ के बांस खाद जानवर के चारा और ईंधन लगी भी बहुत काम के चीज है। बगल गिर बांग्लादेश में तो हुआ रहे वाला 75% लोग बांस के बनल घरे में रहा थी। मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में एकर खंभा, दीवार, खिड़की के फ्रेम, कमरा के सीलिंग और छत बनावे के काम में भी आ रही है। आजकल तो जमीन के क्षरण और सड़क धसे से रोके लगी भी एकरा काम में लावल जा रही है। बांस के एगो ये भी जबरदस्त विशेषता है कि बहुत कम समय में खाली और बंजर जमीन के हरा बना दे है। संसार भर के लाखों लाख आदमी कोई न कोई तरह से एकरा से जुड़ के अपन रोजी रोटी चला रहल थी है। पुराना जमाना में भी पानी वाला जहाज में लंगर डाले वाला रस्सी बनावे के काम एकरे से होते आ रही है। आजकल तो बांस के प्रयोग बहुत सा नया नया चीज बनावे के काम में भी होवे लग गई है, जैसे कि कालीन, लेडीज बैग, सोफा सेट, कमरा में बिछावे वाला कालीन, कुशन, अटैची, गद्दा के भराई। इस सब उदाहरण दे के कहे के मतलब ये है कि आज हमनी के जिंदगी में बांस के उपयोग रोज रोज बढ़ते जा रही है। अपन देश में बांस पैदा करे वाला में पहला जगह पर है, क्योंकि 146 तरह के बांस के प्रजाति और ओकर 1,00,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर में एकर उपज हो रही है। बाकी बांस पैदा करे में, उपयोग चीज बनावे में, घर में खपत और बाहर बेचे के मामला में खाली चीने हमरा से आ गया है। बांस उपजावे में क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, मिजोरम, आसाम, महाराष्ट्र और उड़ीसा आगे है। अपन बिहार में भी एकरा उपज बढ़ावे लगी अभी बहुत कुछ करे के बाकी है। बांस के सामान बनावे और ओकर उपभोग करे में अभी पूर्वोत्तर के राज्य हमनी से बहुत आगे हथी। सरकार एकर भविष्य में उपयोगिता के पहचान के एगो बहुउद्देशीय राष्ट्रीय बांस मिशन पर भी काम कर रही है। केंद्र सरकार एकरा बढ़ावा देवे लगी जोर शोर से ध्यान दे रही थी है। एकरा में तेजी से बांस उपजाओ के साथ साथ एकरा पर आधारित सामान बनावे, ओकर पैदावार और उपभोग बढ़ावे, अपन देश और विदेश में एकर बिक्री बढ़ावे, सीमेंट के जगह पर एकर इस्तेमाल करे लगी काम शुरू हो गई है। आज के युग में बांस लकड़ी के जगह पर एगो बहुत बढ़िया विकल्प बन गई है। एकर कई किस्म के चलते जनजातीय क्षेत्र के लोग के अलावे भी बहुत ज्यादा गरीब लोग भी एकरा पर निर्भर हथी। हमनी के तेजी से बढ़ रही आबादी, खेती में घटे वाला जोत के आकार, गांव में बेकारी के बढ़े के चलते जे तरह तरह के परेशानी हो रही है, ओकर रास्ता निकलतई और एकरा से गांव के भाई बहन खुश होता थी। आज के जमाने में जरूरत ई बात के है कि एकर महत्व के बारे में सब जगह तेजी से प्रसार प्रचार कहल जाए, खास करके अपन राज्य में। राष्ट्रीय लक्ष्य के पावे लगी भी वन क्षेत्र के बाहर के लोग भी एकरा में हाथ बटावत। बांस के पेड़ सड़क, नहर, नदी के किनारे किनारे और रेलवे लाइन के अगल बगल भी एकरा लगावे के जरूरत है। ई काम लगी निजी जमीन के भी शामिल कैल जा सका है। आज जरूरत ई बात के है कि एकर खेती के परिस्थिति से लगाव रखे वाला सब तरह के कारण के बीच समन्वय बढ़ावल जाए। इस सब काम लगी सरकार के तरफ से ढेर सा रुपया के इंतजाम करे के साथ साथ वन विभाग के काम करे के तरीका भी मजबूत बनावल जाए, जेकरा से वो भी अपन जिम्मेदारी ठीक से निभाती। हालांकि इस सब काम लगी सरकार के तरफ से भी प्रयास चल रही है, बाकी इस दिशा में ढेर सारा काम करे के अभी भी जरूरत है। एकरा में कोई शक न है कि आवे वाला समय में बांस के भविष्य बहुत उज्जवल और चमकदार है। अगर गांव गांव में छोटा छोटा इकाई लगा के किसान भाई लोग के प्रशिक्षित कहल जाए, तब बांस भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रीढ़ बन सका है। हर हालत में बांस के खेती किसान लगी बड़का फायदा के सौदा है।
1: वाह, बहुत नीमन अभी हमनी सब सुन रही वार्ता। हरा सोना के पहचान करूं वार्ता काढ़ल थे डॉक्टर।

राधे मोहन प्रसाद तहिनका बहुत एक धन्यवाद। श्रोता लोगिन, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून के सौंसे दुनिया में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलावे के लिए मनावल जाए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चलावल ई अभियान विश्व स्तर पर सकारात्मक बदलाव लावे के एगो बड़ माध्यम है। हर साल एकरा लेल एगो खास थीम तैयार कैल जाए, तो ऐसो के थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। ऐसो अब जलवायु के लगी नारा के साथ विश्व स्तर पर लोगन के तुरंत कदम उठावे के लिए प्रेरित कैल जाए। साल 2026 के विश्व कार्यक्रम के मेजबानी अजरबैजान के देश के कर रहे हैं। बढ़ल विश्व के तापमान और जलवायु परिवर्तन के खतरा के देख के इस साल के मुख्य ध्यान ई बात पर है कि जंगल, झील और नदी के दोबारा जीवित करे के, जलवायु संकट से लड़े के और सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसन स्वच्छ तकनीक के बढ़ावा देवे के है, कचरा कम करे के, पानी बचावे और पर्यावरण अनुकूल विकल्प के चुने के है। तो हमनी के पर्यावरण के बचावे के लिए कोई बड़ आंदोलन के नहीं, बल्क हमनी के छोट छोट आदत में बदलाव के जरूरी है। अपन आस पास के खाली जगह पर पौधा लगावे और खाली लगाथिन नहीं, ओकरा बड़ होबे तक देखभाल भी करथिन, पानी के बर्बादी रोकथिन, बरसात के पानी के बर्बादी रोकथिन, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग सौंसे तरह से बंद कर देथिन और कपड़ा चाहे जूट के थैला के इस्तेमाल करथिन, कागज के इस्तेमाल कम से कम करथिन जेकरा से पेड़ के कटाई रोकल जा सके। डिजिटल इंडिया के ई दौर में ज्यादा काम ऑनलाइन अपनावल जा सकले है। जरूरत नहीं होला पर बिजली के उपकरण, पंखा और लाइट के बंद कर देथिन। प्रकृति हमनी के खाली जीवन नहीं दे है, बल्क जिए के सही तरीका भी सिखावा है। आवे वाला पीढ़ी के एगो सुरक्षित और स्वच्छ कल देवे के लिए आज से ही शुरुआत करथिन। और अपने सब सुनथिन पूर्वी जनार्दन प्रसाद सिन्हा से।

वाह, बहुत निमन। अभी हमने सब सुन रही पूर्वी जनार्दन प्रसाद सिन्हा से। अब श्रोता लेकिन देखिन ना कितना मौसम गड़बड़ आयल है भाई। आई हम अली है तो एकदम गर्मी से परेशान, तो सौंसे देह हाथ ढक के भाई अली है। आ पानी के बोतल तो ले लिए अली है, क्या कि बार बार इ बखत प्यास लगा है। तो अभी हमने सब बात कर रही है, कुछ देर पहले चर्चा की रही पर्यावरण पर, तो पेड़ पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाथिन कि एक से भाई हमने सब बच सकिए। आ देखथिन इस समय में सत्तू खूब पीथिन, आ चाहे अपना जहाँ जा हथिन काम उम करे ले उजाले भी रख लेथिन, आम पर ना पीथिन, ये सब पे भाई ध्यान देथिन। चाहे कितना तरह के अभी भाई जूस मिल रहा है, फल फल है जरा में रसदार है, से जरूर खातिन पीथिन। आ देखथिन मौसम विभाग के अनुसार 4 जून के केरल में मानसून दस्तक दे सकले है, तो तमिलनाडु में भारी बारिश के चेतावनी दिल जा रहा है, जबकि उत्तर भारत के राज्य में अभी भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिले के उम्मीद है। ये लगी हम कह रही है कि अपने सब इस मौसम में ध्यान देथिन और सुनथिन निर्गुण जनार्दन प्रसाद सिन्हा से।

अभी हमने सब सुन रलियल निर्गुण जनार्दन प्रसाद सिन्हा से, तहिनखा धन्यवाद। श्रोता लोगिन देखथिन यातायात से सुरक्षा चाहे सड़क सुरक्षा हम सभ्य के जीवन लगी बहुते महात्म रखा है। सड़क पर थोड़ सा लापरवाही भी बड़ हादसा के कारण बन सका है। चाहे अपने पैदल चल रहा थी है, चाहे साइकिल चला रहा थी है, चाहे कोई गाड़ी के सुरक्षा के नियम के पालन करना हमनी सब के जिम्मेवारी है। तो खास करके हमनी के अपन भाई बाल बच्चा के ये चीज़ जरूर सिखाथिन। बच्चा के सड़क पर चाहे उनका आसपास खेले नहीं देथिन, उनका हमेशा बड़ा के हाथ पकड़ के सड़क के पार करे लगी सिखाथिन। स्कूल में बस पे चढ़ी चाहे उतरते खेवा कतार में लाइन बना के जावे के आदत बनाथिन। एक साथ साथ हमने के समय ओरिया रहले तपन दिव्या के विदा देथिन। प्रणाम।

मागधी, अभी आप ये मगही कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन।

पुनः हम आपको सुनवाएंगे 8:35 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भजन, कलाकार होंगे अनूप जलोटा। आठ बजकर 45 पर समाचार संध्या।

आपको सुनवाएंगे एक नाटक। नाटक का विषय होगा रूह का रिश्ता। गुंजी बिहार लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। तो ये थी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर बाद आप भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना हवे। अब्रवा लोग नंदिनी से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिला के अलग अलग पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल भइले। ये दौरान श्री चौधरी आम जन के समस्या सुनली और ये ओकर निपटारा खातिर अधिकारी लोग के निर्देश दिहनी। हमने के शेखपुरा संवाददाता बतावले कि जिला के सामस पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री खुद लोग के फरियाद सुनले और कहले कि जनता के समस्या के लटका के रखल बर्दाश्त ना कई जाए। श्री चौधरी कहले कि सरकार के तरफ से अपराध और भ्रष्टाचार के लेके जीरो टॉलरेंस नीति पर काम चल रहल बा। मुख्यमंत्री ए मौका पर 53 करोड़ रुपया की लागत वाली अलग अलग विकास योजना के शिलान्यास और उद्घाटन कैलन। शेखपुरा के बाद मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर के मोतिहारी प्रखंड के परसौनी नाथ पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भी शामिल भइले।

0: मुख्यमंत्री ए दौरान 288 करोड़ रुपया की लागत वाली अलग अलग योजना के उद्घाटन और शिलान्यास कैले। हमार संवाददाता लोग बतावले कि आम लोगन के समस्या के निपटारा खातिर पंचायत के साथे साथे पहली बार नगर निकाय में भी सहयोग शिविर आयोजित कैल गई। शिविर में भारी संख्या में लोग अपन समस्या से जुड़ल आवेदन जमा करावल लोग। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी नौबतपुर प्रखंड के खजूरी पंचायत में, जबकि उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सारण जिला के नया गांव आमी और फेरुसा पंचायत में आयोजित भयल सहयोग शिविर में शामिल भयले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहली कि शिक्षा लोग के आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनावेला। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी लोग के संबोधित कैली। राष्ट्रपति कहली कि सही विकास तभी मुमकिन बा जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करे। अपन संबोधन में श्रीमती मुर्मू कहनी कि केंद्र सरकार अलग अलग योजना के माध्यम से जनजातीय समुदाय के युवा लोग के सशक्त बनावे और उन लोग के उत्थान करे खातिर लगातार प्रयास कर रहल बा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की तरफ से बतावल गयल कि उत्तर पुस्तिका में भयल गलती के सत्यापन और ओकर पुनर्मूल्यांकन खातिर पोर्टल आज से शुरू हो गयल बा। पोर्टल 6 जून ले खुलल रही। इस सुविधा खाली ओहे विद्यार्थी लोग के खातिर उपलब्ध बावे जे विद्यार्थी अपन मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के प्रति प्राप्त कर लिहले बा। स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से ई कहल गयल बा कि देश में अभी ले इबोला वायरस के कोनो मामला सामने नइखे आइल। मंत्रालय के तरफ से ई सलाह जारी भइल बा कि जे व्यक्ति पिछला 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आइल बा, ओ लोग के बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, दस्त या बिना कोनो स्पष्ट कारण के रक्त स्राव जैसन लक्षण दिखाई देवे, ओ लोग खुद के बाकी लोग से अलग कर ले और तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी लोग के खबर दे। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर फोन करके जानकारी ले सकेला लोग। राज्य सरकार अनुदान पावे वाला मदरसा सबके जमीनी जांच करावे खातिर प्रखंड स्तर पर 3 सदस्य वाले समिति बनावे के फैसला कैले बा। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुजियाल बतावलन की संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी चाहे अंचलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होखियन। वही जे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के समिति के सदस्य सचिव बनावल गयल बा। एकरा अलावा प्रखंड मुख्यालय में मौजूद माध्यमिक चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालय के सबसे सीनियर प्रधान अध्यापक एकर सदस्य होखियन। समिति के हिदायत दिहल गयल बा कि उ 10 दिन के भीतर फोटो और साक्ष्य के साथ अपन जांच रिपोर्ट जमा करावस। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम बांका जिला के चांदन अंचल कार्यालय में तैनात सर्वे अमीन आदित्य कुमार के 8,500 रुपया घूस लेत रंगे हाथ गिरफ्तार कैले बा। गिरफ्तार अमीन सर्वे के कागजात में गलती सुधारे खातिर शिकायतकर्ता से घूस लेत रहल। बिहार संग्रहालय पटना में आज से समर कैंप के आयोजन कैल जा रहल बा। ई कैंप 7 जून तक चली। कैंप के उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह कैले। श्री सिंह आकाशवाणी समाचार में बातचीत में बतावले कि कैंप में अनुभवी प्रशिक्षण लैकन के टेराकोटा कला, मुखौटा बनावे के कला और कहानी लेखन कला के प्रशिक्षण दिए लोग। प्रदेश में बारिश के गति में कमी आवे से एक बार फिर उमस भरी गर्मी के सिलसिला शुरू हो गई बा। पिछला 24 घंटा के दौरान 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ भभुआ राज्य के सबसे गर्म स्थान रहल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में राज्य के अधिकांश हिस्सा में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी होवे के संभावना बावे। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जे समाप्त भइल। प्रणाम।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में लकी नो टाइम फॉर लव फिल्म का ये प्यारा संगीत।

अगला गीत हमने लिया है हमारा दिल आपके पास है फिल्म से, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं संजीव दर्शन।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते, अपि च वास्तविक विकासः तदैव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते, यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन, आर्थिकेन, शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अरब रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। केन्द्र सर्वकारेण आवृजन नियमे निर्गतायाः अधिसूचनायाः अनुसारं अधुना 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवास समयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आवृजनावधे समाप्तिपूर्वम् एव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। सर्वोच्चन्यायालये न्यायाधीशानां

0: सम्यग् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सा रेखांकितवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्य उच्चशिक्षायाः अवसराणां च आदानेन प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मुवर्या अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति, अपि तु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्य उचितमार्गदर्शनप्रदानं च आवश्यकमस्ति।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न
0: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अर्बुदरूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेश माध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनादान प्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्तीकृतवान्। अवधेयं यत् यूपीआई इत्येतत् प्रकल्पं विश्वस्य सर्वोच्चत्वेन रियल टाइम पेमेंट इति प्रकल्परूपेण समुद्भूतमस्ति, यत् देशस्य डिजिटल अर्थव्यवस्थायाः आधारः वर्तते। केंद्र सर्वकारेण आव्रजन नियमे विदेश नियमेषु च संशोधनम् अधिसूचितमस्ति। नियमानुसारं भारते 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आव्रजनावधे समाप्तिपूर्वमेव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। इतः पूर्वम् 80+100 दिनानाम् अवधे समाप्त्यानन्तरं 14 दिनाभ्यन्तरं पञ्जीकरणम् आवश्यकमासीत्। गृहमन्त्रालयेन आव्रजन विदेशी नियमः इत्येषा अधिसूचना निर्गतास्ति, यस्याम् आव्रजन विदेशी नियमः इत्यस्यान्तर्गतं पञ्जीकरणसीमायां समय सीमा अध्यर्थना तंत्रे च महत्वपूर्णानि परिवर्तनानि कृतानि सन्ति। यद्यपि निर्धारितावधेः अनन्तरं पञ्जीकरणं केवलं आपत्काल परिस्थितिषु एव स्वीकार्यं भविष्यति। प्रथमवारं नियमेषु अन्तर्जाल माध्यमेन अध्यर्थना प्रणालिः योजितास्ति। केनापि आदेशेन प्रभावितः जनः अधुना आव्रजन विभागायुक्तं अन्तर्जाल माध्यमेन प्रार्थयितुं शक्नोति। अध्यर्थना आदेश प्राप्ति समयात् 30 दिनानाम् अभ्यन्तरम् एव कुर्यात्। आयुक्तः संबंधित पक्षं संश्रुत्य निर्णयं दास्यति, अपि च विषयस्य समाधानं 60 दिनानाम् अभ्यन्तरम् एव कुर्यात्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्च न्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। न्यायमूर्तिः शीलनागु, श्रीचन्द्रशेखरः, संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्यायालये कॉलेजियम् इत्यस्य अनुशंसां पालयता यः एव एतेषां नियुक्तिविषयिकी स्वीकृति प्रदत्ता। एताः नियुक्तयः राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया सर्वोच्चन्यायालय संशोधन अध्यादेशः इत्यस्य प्रतिष्ठापनानन्तरं कृताः सन्ति। अधुना भारतस्य मुख्यन्यायाधीशेन सह सर्वोच्चन्यायालये न्यायाधीशां स्वीकृता संख्या 34 समेध्य 38 यावत् कृता अस्ति। विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री डॉ. जितेन्द्र सिंहः जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मंत्री राष्ट्रपतिः मेरियो वोग्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्व

0: स्वभूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। अस्मिन् अवसरे भाषमाणः डॉक्टर सिंहवर्यः अकथयत् यत् अद्य देशः विश्वस्य तृतीयस्य सर्वोच्च स्टार्टअप इकोसिस्टम इत्यस्य अध्यक्षतां करोति। अपि च जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, जल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी चेत्यादिषु क्षेत्रेषु अंतर्राष्ट्रीय सहयोगस्य महत्वपूर्णावसरान् प्रयच्छति। डॉक्टर सिंह कथयत् यत् भारत जर्मनी देशौ विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार जनसंबंध चेत्यादिषु विषयेषु एकस्य सुदृढ़ सहयोगस्य आदान प्रदाने कुरुतः। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोहः श्वः नवदिल्ल्यां आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य द्वाचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पंचायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावधौ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पंचायतेभ्यः नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सकल विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पंचायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। प्राप्त पुरस्काराः पंचायत प्रमुखाः स्वकीयाः सर्वोत्तम कार्यप्रणाली उपलब्धीं चाधिकृत्य प्रस्तुतिं दास्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागः इत्यनेन राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेशस्य तटवर्ति क्षेत्रेषु दिनसमये गर्जनेन विद्युत तरंग चमत्कृतेन च सह झंझावातस्य संचेतना प्रवर्तितास्ति। कर्णाटकस्य आंतरिक क्षेत्राणि केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्यादिषु क्षेत्रेषु श्वः यावत् तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामिषु दिवसत्रयेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभृतिषु क्षेत्रेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य विद्युत तरंग चमत्कृतस्य च संभावना वर्तते। तमिलनाडु केरल राज्ययोः अगस्त्य मलाई पारिस्थितिक परिदृश्यम् इत्यस्य संरक्षित क्षेत्रेषु अतिक्रमणम् अधिकृत्य गंभीर संज्ञानम् अंगीकुर्वन् सर्वोच्च न्यायालयः एकां समयबद्ध अतिक्रमण मुक्ति योजनां निर्मातुं तां च प्राथमिकाधाररूपेण प्रतिष्ठापयितुं च निर्देशं प्रायच्छत्। सर्वोच्च न्यायालयः अतिक्रमणं कुर्वन्तः सर्वान् अष्टादशाधिकैकशतं सेवानिवृत्तान् सर्वकारीय कर्मचारिणः विरुध्य अनुशासनात्मकं वैधानिकं च कार्याचरणं प्रवर्तयितुं आदेशं प्रायच्छत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: नमस्कार अंजुला बहन,
1: नमस्ते प्रिया बहन, की हाल चाल है?
0: हाल चाल का तो पूछिए मत। जिस तरीके से गर्मी है ना, बस ये लग रहा है कि उफ, हाँ ये गर्मी गर्मी से कब निजात मिलेगा। क्योंकि कभी भी अगर घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ रही है तो सीधा पहले यही दिमाग में आ रहा है कि उफ, इस धूप, कड़ी धूप से कैसे बचे, इस लू से कैसे बचे।
1: भाई एकर जिम्मेवारी तो कौन है बताई थी, हम ही लोग ही।
0: हाँ वो तो
1: जितना
0: है।
1: अंधाधुंध तरीके से पेड़ के कटाई हो रहे है, जितना आदमी स्वार्थ बस भी पेड़ काट दे हथिन, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा एकर निर्माण होते है, वन के भी कटाई हो रही है, तो वायु तो प्रदूषित होवे करते। और वायु जब प्रदूषित होती तो गर्मी बढ़वे करते।
0: और गर्मी तो बढ़ रही है, ये तो बात मतलब कहे ना 100 में 1000% सही बात है। तो ऐसे में जो ये जो नुकसान है ये हमारा खुद का दिया हुआ है, खुद को,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरत सी धरती दी है और हर वो व्यवस्था दी है जिसका हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए।

0: हम क्या कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, और दोहन
1: बिल्कुल
0: का नतीजा ये है कि आज गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी कर रहे हैं।
1: सब चीज इतना स्वच्छ सुंदर प्रकृति देती है, जैसे आपने भी बात करते हैं, पेड़ पौधा खाए पिए के सामान, प्यास बुझावे लगी नदी और सब कुछ, लेकिन फिर भी आदमी हर चीज के गंदा करके आज छोड़ देते हैं। और गंदगी के यही कारण है कि वायु में जे जहर घुल गए हैं, ओकरा से सांस लेना मुश्किल हो गए है। आज आज मास्क पहनने के समय, और
0: हाँ
1: मास्क पहनने के बाद भी आदमी कहाँ प्रदूषण से बच पाए थे।
0: बिल्कुल, बचने का सवाल ही नहीं होता। अब हम बात करें कि जैसे गाड़ियां चल रही हैं, अंधाधुंध गाड़ियां चल रही हैं, अगर किसी एक इंसान को भी जाना है, जहां पैदल जा सकते हैं वहां भी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो ये धुआं है, धूल है, और बहुत बार क्या होता है कि कचरा जो होता है उसे हम क्या करते हैं, जला देते हैं, तो वो जलाने से वायु में ही वो सारे धूल कण और इस तरीके के हानिकारक गैस जो है वो हवा
1: अब
0: में
1: शादी
0: घुल
1: ब्याह
0: जा
1: में
0: रहा
1: देखते
0: है।
1: हैं कि पत्तरी फुलझड़ी छोड़ छोड़ ले लेके चलो ओकरा से काम ना, 25 गो आवाज वाला पटाखा चलते, बड़का बड़का बम चलते, तभी शादी होती, ना तो ना होती शादी। तो भाई ओकर जहरीला जो धुआं है वो कहाँ जाते, वो तो वायुमंडल में ही जाते।
0: हाँ, अब जैसे कहते हैं कि अरे गर्मी बहुत है और वायु में, अब वो वाली बात नहीं है, जैसे सुबह की तरोताजा हवा खाने की जो बात करते हैं कि सुबह सुबह एकदम तड़के सुबह उठ जाओ और उसके बाद योगा करो और शुद्ध हवा लो, लेकिन उस समय भी वो शुद्ध वायु हमें नहीं मिलती, और जो हम श्वास लेते हैं उसमें इतने प्रकार के जो हानिकारक जो ये धूल कण और गैस है वो हमें स्वस्थ होने के बजाय बीमार कर रहे
1: बिल्कुल, तो
0: हैं।
1: वायु प्रदूषण के बहुत बड़ा जिम्मेवारी हम सब ही, अंधाधुंध भवन के निर्माण, सड़क के निर्माण, उद्योग धंधा में से निकले वाला धुआं, और घर के निर्माण में, और जो कचरा आदमी जला दे है, पत्ता पोते जला दे है, तीज त्योहार और उत्सव में पटाखा फोड़ दे हथिन, और अभी तो युद्ध के भी समय है, वो भी एक तो वायु प्रदूषण के बहुत बड़ा कारण है। तो इस सब के चलते, और अंधाधुंध पेड़ के कटाई के चलते वायु में प्रदूषण बहुत फैल गए है, एकरा से
0: बहुत ज्यादा,
1: बचना बहुत जरूरी है।
0: बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब कोशिश ये करनी चाहिए कि हम घर हो या बाहर हो, रसायनों का कम इस्तेमाल करें। जैसे घर में भी अंदर क्या होता है कि अरे अजीब सा ये दुर्गंध आ रही है, चलो रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, रूम फ्रेशनर को ले लें या जो भी, तो ये सब जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अब हम अंधाधुंध जो ये कटाई कर रहे हैं पेड़ पौधों की, तो हर किसी की जिम्मेदारी बन रही है कि वो वृक्ष पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, जो कि आगे चल करके हमें ऑक्सीजन
1: ऑक्सीजन
0: दे।
1: दे, बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल। और बेमतलब के गाड़ी भी ना चले थीं, बेमतलब के आदमी मोटरसाइकिल से ही बगल में दूध लावे ला जाए ला भी, तो मोटरसाइकिल निकाल ले, थोड़ा सा सामान किराने का खरीदे तो मोटरसाइकिल निकाल ले, तो बेकार के ओकरा से धुआं निकले है, वो प्रदूषण के बढ़ावा है। तो ऐसे समय
0: ज्यादा से
1: में
0: ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि जहाँ पे सब लोग एक दिशा में एक जगह पहुंच जाएंगे, तो बसों का, मेट्रो का, फिर ऑटो का, इसका इस्तेमाल करें, बनिस्पत अपनी गाड़ियों को जितना हो सके कम निकालें, क्योंकि एक बहुत सारी चीजें
1: हाँ,
0: होती
1: सड़क
0: हैं।
1: पर अगर गाड़ी की संख्या कम हो जाती, अगर एक आदमी जाते थे तो 4 आदमी वही गाड़ी से चल जाए, या साइकिल के इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सड़क पे अगर गाड़ी की संख्या कम हो जाए तो प्रदूषण में भी कमी आ
0: अच्छा,
1: जाती।
0: साइकिल की आपने बात की, जिम में जाकर लोग साइकिल चला लेंगे, क्यों? क्योंकि खुद को फिट रखना है, लेकिन सड़कों पे साइकिल चलाने से स्टेटस नीचे हो रहा है। लेकिन अगर वायु के हिसाब से देखें, हवा को दूषित ना बनाए इस हिसाब से देखें, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पर साइकिल का इस्तेमाल भी होता है।
1: तो ये सब हम सबके सोचे पड़ते कि पेड़ लगे थीन, गाड़ी के इस्तेमाल कम करथिन, बेमतलब के पटाखा पुटो की ना फोड़थिन, पेड़ धुआं ना करथिन, पत्ता पुत्ती या कचरा ना जलेथिन। ऐसे अगर हम ये सब करें तो वायु के प्रदूषण कमे में सहायक हो सके ही।
0: तो इसकी शुरुआत क्यों ना हम आज ही से करें,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: संकल्प ले कि हम कैसे भी करके, एक एक करके ही, तो जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही अगर हम सभी ये कोशिश करें और ये प्रयास करें और अपने आस पड़ोस में भी ये करने की एक मुहिम चलाएं, तो मुझे लगता है

0: सरकार ही नहीं, गैर सरकारी संस्थान ही नहीं, हम सभी इसमें अपनी भागीदारी दे सकते
1: हम
0: हैं।
1: सबके सांस लेवल ही और स्वच्छ सांस लेवल ही तो हम सबके जिम्मेवारी है।
0: बहुत बहुत ज्यादा
1: तो
0: जरूरी
1: अपना
0: है।
1: जिम्मेवारी निभाए थीन, पेड़ पौधा लगाए थीन और स्वच्छ वातावरण बनाए थीन सबके लगी और अपने लगे भी।
0: और जब स्वच्छ वातावरण होगा, हवा अच्छी होगी, मन प्रसन्न होगा, तो मन
1: तो
0: करेगा
1: राम
0: कुछ
1: राम करे के भी मन करे लगे भजले हरि के नाम।
0: तो भजते हैं।
1: हाँ एकदम।
0: और स्वर्ग के
1: महेश प्रसाद लिमका इनका से सुने ही लोकगीत।

0: महेश प्रसाद लिम्का की सुमधुर आवाज में ये प्यारा सा लोक भजन हमने सुना, और सही में बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए
1: बिल्कुल
0: और आपके तो
1: बिल्कुल
0: पैर भी
1: बिल्कुल
0: थिरकने लगे थे। मुझे
1: भाई, तोरा मालूम नहीं कि हम नृत्यांगना भी
0: बहुत अच्छे से पता है, यही तो मैं बताना चाह
1: हैं।
0: रही थी।
1: तो हरि भजन, हरि से मिलन लगी तो संगीत के साथ साथ गाय गाने गाई के साथ साथ नृत्य करना भी जरूरी, तभी हरि से मिलन हो गए।
0: वही वही।
1: और अभी हम सब वायु प्रदूषण के बातचीत करते हैं ली प्रिया बहन, तो वही वायु प्रदूषण भी एक माध्यम है, कैसे प्रभावित करे हम सबके, उसे से जलवायु परिवर्तन के भी प्रभाव पड़ा है। तो जलवायु के प्रभाव परिवर्तन के का प्रभाव हुआ है, ये बात सब एकरा पर हम सब उपयोगी वार्ता सुनिए। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, वार्ताकार हथिन डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा।
2: ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जिसमें गैसें पृथ्वी को एक कंबल की तरह घेर लेती हैं और इसके तापमान को इस तरह नियंत्रित करती हैं कि पृथ्वी जीवित प्राणियों के लिए एक अनुकूल स्थान बनी रहे। लेकिन जीवाश्म ईंधन यानी कोयले या पेट्रोल के बहुत अधिक उत्सर्जन और पेड़ों की अधिक कटाई के कारण पृथ्वी के तापमान का असंतुलन हो गया है और तापमान में यह वृद्धि पृथ्वी पर तबाही ला रही है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर उच्च तीव्रता और अप्रत्याशित रूप से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा, भूस्खलन आदि होते रहते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदा में 5 गुना वृद्धि हुई है और यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रही है। क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा जाना जाने वाला ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और दूसरे अन्य फ्लोरिनेटेड गैस होते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पूरे विश्व भर में 55.3 गीगाटन के बराबर हुआ था। ये गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का ये एक मापने का मानक है। आप ये जानें कि इस 55.3 गीगाटन पूरे ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जित हुआ धरती में, इसमें से केवल कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 37.5 गीगाटन के बराबर था। यानी हम समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यह सबसे बड़ी समस्या है। यह उत्सर्जन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, यह मुख्य रूप से ईंधन यानी कि कोयले, पेट्रोल और दूसरे औद्योगिक गतिविधि के उपयोग के कारण होता रहा है। ग्रीन हाउस गैस का एक और दूसरा उत्सर्जन मीथेन गैस है और यह हम सभी जानते हैं कि यह नगर पालिका कचरे के अनुचित प्रबंधन के कारण हो रहा है। सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिस्चार्जेस के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के कुल 315 बड़े मामले सामने आए थे जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित थे। इसमें सूखे के 16 मामले, अत्यधिक तापमान के 26 मामले, बाढ़ के 127 मामले, भूस्खलन के 13 मामले, तूफान के 95 मामले और जंगल की आग के 10 मामले शामिल हैं। वर्ष 2018 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की कुल संख्या पूरे विश्व भर में 68.5 मिलियन यानी 6.85 करोड़ थी और यह आंकड़ा वर्ष 2008 में घटित हुए पूरे आपदा की जो घटना थी उसकी 94% होती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत ही बुरी तरह से हमें प्रभावित कर रहा है। कुछ गतिविधि

नदियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन से हम जोड़ सकते हैं। ये जो गतिविधियां हैं वो हैं खनन, औद्योगिक कचरे को छोड़ना, अयस्क को गलाना, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, विशेष रूप से कोयला और पेट्रोल, प्रदूषण, बढ़ती हुई प्रदूषण, शहरीकरण, पेड़ों की अधिक कटाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी का औसत सामान्य तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी का तापमान हमें 15 डिग्री ये मेंटेन करके रखना होगा। रिपोर्ट कहती है कि औद्योगीकरण के बाद, यानी 1870 के बाद से आज तक पृथ्वी के तापमान में औसत 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 तक पृथ्वी के तापमान में औसत वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। यह वृद्धि समुद्र के पानी के स्तर को बढ़ाएगी और इससे कई एक शहरों का जीवन नष्ट हो जाएगा। जो वैसे शहर जो समुद्र तल से कम ऊंचाई पर हैं, उनका नष्ट होने का, समुद्र में समाने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अर्थ सिस्टम एंड इन्वायरमेंट नामक पत्रिका के अगस्त 2021 अंक में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई एक महत्वपूर्ण शहर और दुनिया के अन्य स्थान जलमग्न हो सकते हैं। यह भविष्यवाणी की गई है कि 2030 तक समुद्र का पानी कोलकाता शहर को डुबो सकता है और 2050 तक मुंबई, कोच्चि, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और त्रिवेंद्रम जैसे शहर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में कोई विराम अगर नहीं होता है तो ये सारे शहर नष्ट हो जा सकते हैं। यदि हम लोग आज की तरह ही पृथ्वी को प्रदूषित करते रहेंगे तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो सकती है, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रह सकता है। आइए अब हम जानें कि कैसे इसको हम रोकथाम कर सकते हैं। तो विशेषज्ञों के मुताबिक तीन मुख्य जलवायु परिवर्तन रोकने के उपाय बताए गए हैं, जिसे इन तीनों उपायों को विश्व समुदाय को ईमानदारी से लागू करने की आज बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। पहला उपाय जो है वो पारंपरिक समन प्रयास, कहने का अर्थ है कि जो हमारा जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और दूसरे जो पारंपरिक एनर्जी के स्रोत हैं उनको उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा उपाय बताया गया है कि डीकार्बोनाइजेशन तकनीक, इसका ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी और दूसरे जगहों में इसे उपयोग करने की आवश्यकता है, और दूसरे जो भी उपलब्ध तकनीक हैं उनको भी आज अपनाने की आवश्यकता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा सके। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही साथ आज के डेट में बहुत सारी ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम आ गई है जिसको कि हम ऑटोमेटिक एनर्जी स्विचिंग सिस्टम कहते हैं। इसके द्वारा भी हम एनर्जी को बचा सकते हैं। साथ ही परमाणु ऊर्जा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बन कैप्चर स्टोरेज, इन सारे तकनीकों का उपयोग आज बहुत ही आवश्यक है कि हम हर क्षेत्र में जहाँ तक संभव हो करें। इनमें से अधिकांश टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से स्थापित हैं और जोखिम प्रबंधन ये भी स्वीकार्य है, इसकी स्तर अच्छी है, जोखिम का भी बहुत ही कम संभावना रहता है। हम सौर ऊर्जा, औद्योगिक ऊर्जा या अन्य हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ऐसी प्रौद्योगिकियां, टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जिनका उपयोग नगर पालिका के कचरे को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने की आज आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इसे लोगों के बीच हम प्रचलित करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के नैनो कार्बन पाउडर या हीरे के आकार के कार्बन टेक्नोलॉजी में रूपांतरण का उपयोग समस्या को कम करने के लिए किया जा सकता है, और यह साथ ही साथ यह उद्यमिता के अवसर को भी बढ़ावा दे सकता है। इसमें हमारे नौजवान
आगे बढ़ के इस कार्य को

0: कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत नागरिक के रूप में हमें भी जलवायु परिवर्तन की आपात स्थिति को समझना चाहिए और इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें भोजन पकाने में कोयले या लकड़ी का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग एक बड़ी समस्या है और एक नागरिक के रूप में हम इसे आगे कभी उपयोग नहीं करने की शपथ लेकर एक बदलाव ला सकते हैं। बिहार राज्य में 1 अप्रैल 2022 से प्लास्टिक के पैकेट और बोतल इत्यादि के इस्तेमाल पर 100% बैन लगा दिया गया है। खुले में प्लास्टिक या कोयला जलाते हुए पकड़े जाने पर 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। एक नागरिक के रूप में हमें बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BPCB के प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए यदि कोई कोयला जला रहा है या हवा पानी या मिट्टी को प्रदूषित करने वाली कोई गतिविधि चल रही हो तो इसकी सूचना हमें अवश्य देनी चाहिए। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सार्वजनिक या निजी स्थानों पर प्रदूषण गतिविधि को जानकारी देने के लिए एक टोल फ्री टेलीफोन नंबर भी जारी की है। शिकायत का टेलीफोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, यह है 0612226176 और ईमेल आईडी भी उपलब्ध है msbspcs-bih@gov.in। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपके नाम का खुलासा नहीं करता है और वे तुरंत कार्रवाई करते हैं।
1: तो अभी बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिली डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा से। उन्होंने जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है उन्होंने बहुत ही तरीके से बताया और हमें समझने की जरूरत है कि क्या कुछ करने से ये परिवर्तन को हम और बढ़ाते जाएंगे। तो जरूरी है जो प्रकृति ने हमें दिया है उसे उसका उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा को इस विशेष जानकारी के लिए। और जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि अपने कार्यक्रम में लोकगीतों की झड़ियां जो है वो लगाए रहे।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई श्रोता लोग के सुनवावे ही हम लोग एगो गीत और कलाकार हथिन महेश प्रसाद लिमका।

0: बहुत ही प्यारा ये।
1: मगध गीत, मगध गीत नाम हले। और मगध क्षेत्र में जितना भी लोग के संस्कृति के बारे में गीत के माध्यम से हम सबके जानला मिले। और यही लोक परंपरा, लोक संस्कृति की यही मिठास है कि ओकरा माध्यम से, लोक गीत के माध्यम से समाज के जितना भी तीज त्योहार, उत्सव, ब्याह, सब के बारे में जानकारी मिल जाए।
0: बिल्कुल। तो महेश प्रसाद लिम्का को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत
0: और
1: बहुत
0: चौपाल की
1: धन्यवाद।
0: घड़ी यहीं समाप्त हुई। थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे खेती गृहस्थी की।
1: चलो।
0: तो खेती गृहस्थी में सबसे पहले हम सुनते हैं अंजुला बहन, प्रायोजित कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है।
1: चलो सुनिए।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर पटना।

नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मंगलवार का दिन है और आज का दिन है आप सबों के अपने कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है का। याद है ना, लगातार आपके फोन कॉल्स आते हैं, आप अपनी परेशानियां डॉक्टर राजीव कुमार सिंह से शेयर करते हैं, उपचार पूछते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हड्डी और नस, जी हाँ, का कितना भी पुराना रोग होना, उसके बारे में चर्चा की जाती है ज्यादातर। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर की तरफ से, जो कि है पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, विष्णु प्लेस के बगल में राय जी की गली है, पटना में है। उनकी तरफ से हम डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, सवाल पूछते हैं। आपके द्वारा भेजे गए वैसे सवाल होते हैं जिनका सरोकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होता है, उनके लिए हम समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। हम नंबर बताते हैं, नंबर नोट करें डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का, 8877372299, 8877372299।

0: 1-800-522-9999। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का और शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला।
1: नमस्कार, प्रणाम आप सभी को जो कि ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और इतना दिन से आप लोग इतना प्यार देते हैं इस कार्यक्रम को, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही देते रहिए और खासकर मैं उन सारे अपने श्रोता जो कि रेडियो पे हैं, इसी माध्यम के द्वारा देश दुनिया के लोगों को ठीक किया और आप जिसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो आप लोग सुनते हैं और फिर विश्वास करके आते हैं। बहुत सारे मरीज ठीक हुए, कुछ नहीं भी ठीक हुए होंगे, लेकिन मैक्सिमम कोशिश रहती है कि हमारे पेशेंट्स ठीक हो जाएं, कहीं ना कहीं उनको परेशानी ना हो, पैसे की परेशानी ना हो, जितना भी जिनके पास होता है वो लेके आते हैं और अपना इलाज करा के जाते हैं, पहले से बेहतर होते हैं। हम कोई भगवान नहीं है कि आपकी लाइफ का हमने गारंटी ले लिया है कि आप एकदम ठीक ही हो जाएंगे, आपको छू दिया तो एकदम आपका कितना सालों का पुराना बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। हाँ, जरूर ये है कि आप बीमार हैं, जहां एकदम हर जगह से हार चुके हैं, तो यहाँ साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में आते हैं तो एक उम्मीद जगती है और पहले से आप बेहतर होते हैं। इसी उम्मीद के साथ ये संस्था आज विगत कई वर्षों से आप लोगों के बीच बैठ के सेवा दे रहा है और ऐसा देते रहेगा, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।
0: डॉक्टर साहब, गर्मी शुरू हो चुकी है, हीट वेव चल रहा है, लू भी चल रही है, ऐसे में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, इस पर लोगों से सबसे पहले आप बात कीजिए।
1: देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि गर्मी के दिन में हीट वेव की समस्या तो सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि लू लगता है, लोग बाहर में अभी गेहूं की कटनी हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें निकलते होंगे, तो जब भी आप निकलिए कोशिश करिए कि सर कम से कम आपका ढका रहे और लू ना लगे, क्योंकि अगर ठंड के दिन में अगर आपको स्ट्रोक होता है तो उसमें बचने की संभावना हो जाती है, लेकिन अगर गर्मी में हीट वेव की वजह से अगर आपको पैरालिसिस या लकवा का शिकायत होता है तो उसमें जान जाने की समस्या सबसे ज्यादा होती है, उसमें स्पॉट डेथ हो जाता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना है कि हीट वेव से बचना है, मतलब कि धूप से बचना है, कोशिश करें कि कम निकले। हाँ, अगर किसी को कुछ परेशानी होती है तो आप हमारा नंबर नोट करिए, नंबर है 8877372299। ये नंबर है साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर का, जो कि पूर्वी बोरिंग कनाल रोड, राय जी की गली, पटना में है।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम चल रहा है जो फिट है वो हिट है। मैं हूँ राजेश और हमारे साथ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह बैठे हैं, जिनका नंबर है 8877372299। डॉक्टर राजीव, घुटने की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, किसान भाइयों के लिए भी या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए भी ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। दर्द निवारक गोली कोई खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, क्षणिक आराम हो जाता है, लेकिन फिर वही वही वही स्थिति हो जाती है, वापस लौट जाते हैं दर्द में। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि इन सभी को, जिसको भी घुटने की दर्द है, राहत हो, आराम मिले।
1: देखिए राजेश जी, जहां तक घुटने का सवाल है, तो घुटना एक ऐसा हमारे शरीर का पार्ट है जिसपे पूरा शरीर चलता है, एक पिलर है, एक व्हील है, एक चक्का है, इसको समझिए एक तरह से एग्जाम्पल में कि इसी पे इंसान चलता है, मतलब जैसे गाड़ी में चक्का होता है वैसे शरीर में पैर है, अब पैर के साथ घुटना है, घुटना ही जो है हमारा पूरे शरीर का लोड लेता है। तो एक तो आप ये समझिए कि इतने सालों से आपका पांव चल रहा है तो कभी ना कभी तो घिसेगा ही घिसेगा, तो घिसेगा तो आप क्या करते हैं, इसमें घिसेगा तो आप जैसे गाड़ी घिसता है और चक्का घिसता है तो आप उसको चेंज कराते हैं। बहुत बार क्या होता है कि नहीं, पैसा नहीं है चक्का चेंज कराने का, तो आप उसको रिपेयरिंग कराते हैं। वैसे ही घुटना का है कि अगर जो आदमी चेंज नहीं करा सकता है तो घुटने का रिपेयरिंग कराना है, रिपेयरिंग कराने के लिए उसके घुटने के अंदर लिक्विड जो ग्रीस होता है उसको डाला जाता है, अगर घुटना टेढ़ा हो गया है तो मशीनों से उसको कोशिश करी जाती है कि बहुत हद तक सीधा हो जाए, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, दवाइयां होती हैं। तो अभी फिलहाल जो घुटने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स जो जिसका पूरा ऐड हो रहा है, हर लोग आ रहा है उसी के लिए, जिसका नाम है रोबोटिक नी डिकम्प्रेशन, जिसमें घुटना सटा हुआ घुटना बिना ऑपरेशन का खोल दिया जाता है। तो वैसे तमाम लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनको भी ऑपरेशन से बचना है तो साई हेल्थ केयर के दरवाजे पे तो जरूर एक बार आए। हाँ, हमेशा हम कहेंगे कि आप कितना ठीक होंगे ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर मरीज में अलग अलग अलग अलग इलाज होता है, वेरी करता है उनके शरीर, उनकी इम्यूनिटी पे, उनके जो शारीरिक शक्ति है उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना आप अच्छा होंगे। बहुत बार क्या होता है कि आपका इंटरनल बहुत सारे पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उसमें हम जो चाहते हैं जैसा रिजल्ट आए वैसा नहीं आ पाता है, लेकिन जो स्ट्रांग है

0: जिनका इंटरनल हर चीज, उनका उनका ब्लड लेवल अच्छा है, किसी तरह का कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे जो परेशानी है जो वाइटल उनके अच्छे हैं, तो फिर वो पेशेंट निकल जाता है, उसकी अच्छी रिकवरी आ जाती है। लेकिन जिनके वाइटल्स प्रॉब्लम है, बहुत सारे दिक्कतें हैं, ऑलरेडी शुगर है, बीपी है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का प्रॉब्लम है, इस तरह से किडनी का प्रॉब्लम, तो वैसे चीजों में बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो उस समय में हम जैसा खोजते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट से पेशेंट को रिकवरी हो जाए, तो वो नहीं हो पाता है। तो वैसी चीजों में है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है, अपना आके पूरा फुल चेकअप कराइए एक बार। किसी भी इलाज से पहले आप बोलिए डॉक्टर को, जैसे हम लोग नहीं भी जांच करें तो आप कहे कि जांच करके सर पूरा अच्छे से देखिए और उसके बाद इलाज कराइए, क्योंकि एक बार बीमारी पकड़ा जाता है ना तो इलाज करने में आसानी होता है और आप ठीक भी होते हैं। तो ऐसे केसेस हैं घुटने के, तो आपको आना है और ठीक करवाना है, और मुझे लगता है कि आपको हम अच्छी तरह से चला पाएंगे।
1: वाह डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, यही बेबाकी आपको दूसरे से अलग करती है। कहते हैं आपकी, मैं भगवान नहीं हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, ये भी कहते हैं एकदम, हाँ एक ईमानदारी से, कि बहुत लोग ठीक होते हैं, बहुत लोग नहीं ठीक हो पाते हैं, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए कि आपके शरीर में अगर कोई विकार है तो वो ठीक हो सके, और मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा ये बातें आपने जो हमारे साथियों हमारे श्रोताओं से कही। बहरहाल डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का नंबर नोट करें, 8877372299 8877372299, ये डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, जो फिट है वो हिट है, साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, विष्णु प्लेस के बगल में राय जी की गली है, पटना में है, इनकी तरफ से, और यहीं बैठते हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, क्या समस्या है? अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, वैसे पेशेंट जिनके गर्दन से हाथों की तरफ दर्द आता है, बहुत ज्यादा दर्द आता है, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नई विधि में उनके लिए क्या इलाज हो सकता है ये बता दीजिए।
0: तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बीमारी को ही ठीक करने के लिए डिकम्प्रेशन यूनिट लाया गया है, कि कहीं भी दर्द की समस्या है, अगर वहां पे प्रेशर है, नसों में हड्डियों में प्रेशर है, तो उसको रिलीज किया जाता है। गर्दन से कंधा में आता है तो उसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं, मतलब सर्वाइकल मतलब गर्दन, रेडिकुलोपैथी मतलब रेडिएट करना, गर्दन से जो रेडिएशन होता है हाथों में उसी को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। कभी कभी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है, उसके कारण होते हैं जो शुगर के मरीज है, जिनको चीनी की बीमारी है, उनका कंधा जाम होता ही होता है। तो वैसे लोगों को भी मैं कहूंगा कि आपका अगर ऐसी परेशानी होती है, रात में सोने वक्त आपका कंधा बहुत दर्द करता है, तो उसको नजरअंदाज न करें, क्योंकि कंधा दर्द आपके हार्ट पेन का कारण हो सकता है, हार्ट अटैक करा सकता है। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और मेरे को लगता है कि ऐसी बीमारियों के लिए रामबाण उपाय साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में है, यानी कि हमारे यहाँ, यानी कि मेरे पास डॉक्टर राजीव सिंह के पास। सिंपल सा मशीनों से, दवाओं से, एक्सरसाइज से आप एकदम ठीक हो जाएंगे और आप अपने लाइफ में पुनः जैसे थे वैसे चले जाएंगे। बहुत सारे लोग उठा के आते हैं यहाँ पे कि चल नहीं पा रहे हैं, पेशाब पखाना बेड में होता है, लेकिन उनको भी ठीक करके भेजा जाता है। यहाँ थोड़ा नंबर लगाने का असुविधा जरूर है, बहुत भीड़ रहती है, इसलिए थोड़ी परेशानी जरूर होती है आप लोगों को।
1: डॉक्टर राजीव आपसे एक आग्रह है, आपके यहाँ जो नए नए मशीन्स लगे हैं ना, उसके विषय में हमारे सुनने वालों को जरा जानकारी दे दीजिए।
0: देखिए वैसे तो राजेश जी हमारे यहाँ सारे इक्विपमेंट्स हैं, और आज नहीं बहुत टाइम से इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो रखे हैं, लेकिन फिलहाल जिसका सबसे ज्यादा मार्केट में चर्चा है वो है स्पाइनल डिकम्प्रेशन और नी डिकम्प्रेशन। स्पाइनल डिकम्प्रेशन और नी डिकम्प्रेशन ये उस बीमारी के लिए है जिनके घुटने सट गए हैं, जिनके घुटने टेढ़े हो गए हैं, जिनके घुटने का ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो उसको खोलने की, बिना ऑपरेशन से खोलने की विधि को डिकम्प्रेशन कहते हैं, मतलब कोई चीज कंप्रेस हो गया, सट गया, उसको खोल देना है बिना ऑपरेशन का, तो रोबोटिक डिकम्प्रेशन नी ज्वाइंट के लिए, घुटना के लिए स्पेशली। और एक जो ट्रीटमेंट है स्पाइनल डिकम्प्रेशन, जिसमें कमर में जिनका नसें दब जाती है, जिनको साइटिका की बीमारी है, जिनके कमर से पैरों में दर्द आ रहे हैं, तो वैसे लोग भी बहुत बार क्या होता है कि सर्जरी में फंस जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सर्जरी कराने के बाद

0: ठीक हो जाते हैं ना, फिर भी दिक्कत ही रहता है, तो हम क्यों सर्जरी कराने जाए जब हमको दिक्कत ही रहता है। तो अब जो हम लोग लेके आए हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट्स स्पाइनल डिकम्प्रेशन में, उसमें कोई ऑपरेशन, कोई चीरा की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर से ही आपका नस खुल जाएगा, बाहर से ही खुल जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड, AI बेस्ड ट्रीटमेंट आजकल शुरू हो गया है, आप सोचते हैं उससे ऊपर काम करती है मशीनें। अब कहां वैसे सिस्टम में है, सारा कुछ तो मशीन से हो रहा है, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हर वो चीज देखिए, मोबाइल आपके पास है, पूरी दुनिया दिखती है, कहां बैठे हैं, यहां से वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, क्या क्या सब चीज एक दूसरे को, कितना हजार फीट किलोमीटर भी दूर है तो आप एक दूसरे को देख लेते हैं। वैसे ही मशीनों में इतना सिस्टम आ गया कि आपके अंदर में क्या क्या गड़बड़ी है वो सब दिख जाता है, तो उससे मशीनों के द्वारा आपके नसों को खोल दिया जाता है, आपके घुटने को खोल दिया जाता है। तो वैसी चीजें अगर आपको पता रहेगी तो आप क्यों इधर उधर भटकेंगे, क्यों लोकल में जाएंगे, आपको आना है। अगर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट कराना है जिसमें किसी तरह का शरीर में कटिंग ना हो और आप नॉर्मल वे में ठीक हो जाए, तो साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर जो है पटना में है, आपको जानना है, आना है और आके ठीक होना है।
1: बहुत बहुत आभार डॉक्टर राजीव कुमार सिंह कि आप कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है में आए और बेबाकी के साथ आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, जिसका फायदा हमारे सुनने वाले जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। ये थे डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये रेडियो कार्यक्रम आता है। आप एक कदम बढ़िए, हम चार कदम बढ़ेंगे। हड्डी और नस की कोई भी समस्या हो ना, तो छिपाइए नहीं, परहेज नहीं कीजिए, हाँ इग्नोर मत कीजिए। डॉक्टर का नंबर है 8877372299, 8877372299, इस पर कॉल करें और डॉक्टर राजीव कुमार सिंह से बात करें, वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। फिलहाल चलने का वक्त हो गया है, आज के कार्यक्रम से राजेश निकलता है, आप सबको नमस्कार कहते हुए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर पटना।
3: हाँ तो प्रिया बहन, अभी हम सब सुनते हैं लिए प्रायोजित कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है, और अब हम सब किसान भाई के कुछ फायदे के बात करला चाहवे।
4: बिल्कुल,
3: तो हम सब बात करी कि कृषि रसायन के सुरक्षित प्रयोग कैसे करल जाए, क्योंकि जो रसायन के छिड़काव फसल पर खेत में होवे है

0: पैकेट की सील टूटी हुई ना हो।
1: हम्म।
0: उत्पाद पर लिखे सभी दिशा निर्देशों, उपायों, उपयोग की मात्रा और चेतावनी को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें। रसायनों को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर ताले वाली अलमारी हो या सुरक्षित स्थान पर ही रखें।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जब कृषि रसायन के छिड़काव कर रहे हैं किसान भाई फसल पर, तो छिड़काव करते समय हाथ जो है वो हाथ में सुरक्षित दस्ताना जरूर पहन लेवे के चाहिए। नाक पर N95 के मास्क, वो जो N95 पूरा ये गड्ढा ले मास्क लगा लेवे के चाहिए। आंख पर चश्मा और सिर के कपड़ा से बढ़िया से बांध लेवे के चाहिए, ढक लेवे के चाहिए। क्या मतलब कि ये पूरा जो है अंग ढक करके तब छिड़काव करे के चाहिए। और छिड़काव हमेशा हवा की दिशा में, जैसे हवा अगर पूर्वैया है तो वही दिशा में करे के चाहिए, विपरीत दिशा में ना, ताकि ऐसा ना हो कि अगर दूसरा दिशा में हम करे
0: तो
1: तो
0: उसका
1: ओकरा से
0: छिड़काव वहां
1: हाँ शरीर
0: शरीर पर ना
1: पर
0: आए।
1: पर पड़
0: हाँ।
1: जाए। और छिड़काव के समय भी ये ध्यान रखे के चाहिए कि ई न कि छिड़काव करते करते तनी बीड़ी पी ले ली और तनी
0: हाँ,
1: खैनी लगा ले
0: नशा
1: ली,
0: ना करें,
1: नशा ना कर, धूम्रपान कोई तरह के ना करे के
0: क्योंकि जब
1: चाहिए।
0: धूम्रपान करेंगे या कोई भी
1: तो
0: नशा
1: फिर
0: करेंगे तो
1: हाँ
0: मास्क हटाना
1: मास्क
0: पड़ेगा,
1: हटाए पड़ते हो और रसायन जो है मुंह में जाए
0: मुंह
1: के
0: में जा
1: खतरा हो
0: सकता है
1: जा
0: इससे।
1: सके
0: और
1: है।
0: बहुत बार तो सुनने में आता भी है कि रसायन का छिड़काव करते हुए कुछ ऐसे किसान, उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके के बचाव करने बहुत ही जरूरी है। और
1: बिल्कुल।
0: पूरे शरीर पर जो कपड़ा है ना, वो ढका हुआ होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से वो जो जो भी आप कीटनाशक का घोल बना रहे हैं, या हमेशा उस पर ध्यान रखना चाहिए। और जब भी कीटनाशक का घोल बनाए तो हमेशा साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। कभी कभी क्या होता है कि हम जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं मिला तो घर में पड़े हुए जो बर्तन है उसको इस्तेमाल कर लिया, फिर उस बर्तन से आप फिर खाना बनाएंगे तो वो बहुत ही मतलब हानिकारक है। तो कभी भी इसका जो बर्तन है ना, वो अलग होना चाहिए, और उन बर्तनों का फिर अपने खाने बनाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये जो
1: बिल्कुल
0: दिशा निर्देश है, मुझे लगता है इस पर खास तौर पे ध्यान देना चाहिए और बहुत ही जरूरी है।
1: और जरूरी भी है कि छिड़काव कैला के बाद, हम छिड़काव कर ले ली अब का करे के है, तो
0: हाँ,
1: छिड़काव कैला के बाद बढ़िया तरीके से नहा लेवे के चाहिए साबुन से। और कपड़ा जो पहन ले हथिन वो भी डिटर्जेंट में बढ़िया से साफ कर लेवे के चाहिए। और साथ ही साथ जेकरा से स्प्रे माने छिड़काव जो होवा है ओकरा भी वो बर्तन के भी बढ़िया तरीके से साफ कर लेना बहुत जरूरी है। और जो डब्बा बच गए, अब वो डब्बा के का करते हैं, इधर उधर ध्यान रखते हैं कि इधर उधर ना फेंकते हैं बोतल रसायन के, वो इधर उधर ना फेंकते हैं पानी में, कहीं ना कि कोई नदी तालाब में फेंक दिली या कहीं इति कर दिली, ओकरा से खतरा पैदा हो सके, तो एकरा नष्ट करके मट्टी में बढ़िया दबा देवे के चाहिए। और जैसा कि अपने भी बात करते हैं कि बच्चा या पालतू जानवर से रसायन के दूर रखे के चाहिए, सीधा धूप और नमी से भी रसायन के बचावे के चाहिए, क्या कि धूप लगे से भी रसायन के वो निकले के डर रहा है।
0: हाँ, तो ये सारी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का हादसा हो, नहीं ही होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखें, और हम जैसे इन सारी बातों को आपके सामने, इन विषयों को लेकर के आते हैं, जिससे कि हमारी जितनी जानकारी है वो
1: बिल्कुल
0: आप श्रोताओं
1: बिल्कुल
0: के साथ साझा कर
1: बिल्कुल,
0: सकें।
1: क्योंकि फसल के तो कीट से व्याधि से बचाना ही और रसायन छिड़काव करना ही है, तो कर सुरक्षित प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत ही जरूरी है।
1: और बहुत जरूरी है लोकगीत भी
0: हाँ, क्योंकि
1: सुनना।
0: ये अगर हमने नहीं किया तो
1: हाँ
0: हमारे
1: हाँ
0: श्रोता भी नाराज हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, तो मन के रिझावे लगी, मन के सुकून लगी लोकगीत सुनिए महेश्वर प्रसाद लिम्का के, महेश प्रसाद लिम्का के स्वर में।

0: बहुत ही प्यारा ये
1: बहुत
0: झूमर
1: ही
0: सुना हमने महेश प्रसाद लिम्का की आवाज
1: तो
0: में।
1: बहुत बड़ी बढ़िया गीत सुनेल थी और इनका धन्यवाद कर रही। और अब घड़ी इशारा कर रही है घर चले के।
0: हाँ, क्योंकि कल आना है तो आज तो जाना ही होगा। तो
1: बिल्कुल।
0: नमस्कार अंजुला बहन।
1: नमस्ते प्रिया बहन।

0: चौपाल और खेती गृहस्थी। अभी आप ये ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की सभी पंचायतों और नगर निकायों में सहयोग शिविर का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में हुए शामिल। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटाया। राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त मदरसों की होगी स्थलीय जांच, प्रखंड स्तर पर जांच समिति का होगा गठन। और प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के बाद उमस भरी गर्मी का सिलसिला शुरू। 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ भभुआ सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों के साथ साथ पहली बार नगर निकायों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले की अलग अलग पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और इसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ तय समय सीमा के भीतर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया।
1: शेखपुरा जिले के सामस बुजुर्ग पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री ने खुद लोगों की फरियाद सुनी। उन्होंने कहा कि जनता के समस्याओं को लटका कर रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
2: यदि आपने कोई आवेदन दिया 10 दिन तक यदि कोई कार्रवाई हमारे कर्मचारी के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया तो 11वें दिन उसको मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं नोटिस देने का काम करता है। और यदि 30 दिन में नोटिस की अवहेलना करता हो तो 31वें दिन वो स्वतः निलंबित हो जाता है। किसी का कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।
1: कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं लोगों को, यदि सरकार और यदि पुलिस को कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस 48 घंटे में उसको जवाब देने का काम हमारी पुलिस करने का काम करेगी। अपराधी किसी जात का नहीं होता, कुछ लोग इसको दिल पर लेते हैं। अपराधी किसी जात का नहीं हो सकता, किसी धर्म का नहीं, अपराधी अपराधी है साथियों।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 53 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार।
2: शेखपुरा के बाद मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड की परसोनीनाथ पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 288 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इधर हमारे पटना संवाददाता ने बताया कि जिले की 31 ग्राम पंचायतों और 17 नगर निकायों के विभिन्न वार्डों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।
3: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी नौबतपुर प्रखंड की खजरी पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस शिविर का मकसद सिर्फ आवेदन लेना नहीं बल्कि लोगों को तुरंत न्याय और राहत पहुंचाना है। उप मुख्यमंत्री ने शिविर में लोगों की शिकायतें सुनी। शिकायतों में भूमि विवाद, स्थानीय विकास योजनाओं, राशन कार्ड, सड़क निर्माण और प्रशासनिक शिथिलता से जुड़े मामले मुख्य रूप से शामिल थे। इधर पटना के रुकनपुरा में आयोजित सहयोग शिविर में स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था उपलब्ध थी। शिविर में आए लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें आवश्यक दवाई भी उपलब्ध कराई गई। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
2: सारण जिले के नयागांव आमी और फेरूसा पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव शामिल हुए। विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव सहयोग शिविर में मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उनका तबादला कर दिया है। यह कार्रवाई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सेवाओं की खरीद प्रक्रिया में सामने आए गड़बड़ियों और विवाद के बाद की गई है। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है जिसका नेतृत्व क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगे। इस समिति को 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपनी होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। यह पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: राज्य सरकार ने अनुदान प्राप्त मदरसों की स्थलीय जांच कराने के लिए प्रखंड स्तर पर 3 सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह कुंजियाल ने बताया कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा प्रखंड मुख्यालय स्थित माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरीयतम प्रधानाध्यापक को सदस्य बनाया जाएगा। समिति को 10 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट, फोटो और अन्य साक्ष्यों के साथ जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि शिक्षा विभाग की बैठक में संस्कृत विद्यालयों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए भी एक समिति के गठन का फैसला किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रावास योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रही थी।
5: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से

0: निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में दो श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह देश भर के 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जनभागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मानित करेंगे। बिहार की भी कई पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री कुमार बिहार विधानसभा सचिवालय के नेवा केंद्र में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के बाद एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
5: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है।
1: बिहार संग्रहालय पटना में आज से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने किया। एक रिपोर्ट।
6: 7 जून तक चलने वाले समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को कला और संस्कृति से जोड़कर उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला और कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
7: बिहार म्यूजियम में 2 विधाओं पे काम हो रहा है। एक तो मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला है, क्योंकि बिहार संग्रहालय के पास बहुत अच्छा संग्रह है मूर्तियों का, तो उनको पूरा घुमाया गया है, उनको जो अच्छा लगे वो बनाएंगे। दूसरा, बिहार संग्रहालय में जो चीज है उसको देख के कहानी लिखने की कला, तो उसे उसको देख के उनकी कल्पना खुले और क्या कहानी सोचते हैं वो उस समय के बारे में, और दोनों जगह पे अच्छे विशेषज्ञ को बुलाया गया।
6: समर कैंप में शामिल हो रहे बच्चों ने किताबी दुनिया से इतर उनकी कल्पनाओं को एक नया मंच मिलने पर प्रसन्नता जताई।
8: मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, पॉटरी बना रहे, बहुत सारे नए स्किल्स एंजॉय कर रहे हैं। ये बच्चों को

0: प्रोत्साहन करने का एक तरीका है। और अभी जो ये मैं तेरा कोटा के लिए आया हूँ, इसके लिए मैं उत्सुक हूँ क्योंकि ये एक नया स्किल है जो मैं सीखना।
1: हम लोग कई तरह के चीजें सीखे और आर्ट सीख कर वैसे हम लोग को अभी पता चलता है कि पुराने जमाने में भी इंजीनियरिंग का काम होता था।
2: यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे मौर्यन गुप्ता में कैसे कॉपर कॉइन्स और उस टाइम के टेराकोटा पेंटिंग्स कैसे थे, वहाँ के आर्टिसंस कितने ज्यादा टैलेंटेड थे, कैसे हम लोग आज भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
3: आज के डिजिटल दौर में इस तरह के शिविर बच्चों की मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही ऐसे आयोजनों से बच्चों में टीम वर्क और कौशल विकास की भावना भी मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
4: निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बांका जिले के चांदन अंचल कार्यालय में पदस्थापित सर्वे अमीन आदित्य कुमार को 8,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अमीन सर्वे के कागजात में अशुद्धियों को सुधारने के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। बक्सर में उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 21 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत साहूगढ़ भातु टोला में पुलिस ने छापेमारी कर 258 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के उड़ोसरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत खिलाफतपुर गांव में रेलवे लाइन के नजदीक बिजली की तार की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बहेड़ी अंचल के राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र यादव को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय खेत बचाओ अभियान के तहत शिवहर जिले के हरनाही और शेखपुरा जिले के गोसाई मढ़ी गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की सभी पंचायतों और नगर निकायों में सहयोग शिविर का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में हुए शामिल। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटाया। राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त मदरसों की होगी स्थलीय जांच, प्रखंड स्तर पर जांच समिति का होगा गठन। और प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के बाद उमस भरी गर्मी का सिलसिला शुरू। 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ भभुआ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: इधर आइए। इधर
6: इधर
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
8: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
9: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है दरभंगा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
10: दरभंगा जिले में विकास और आमजन के समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन की ओर से 18 प्रखंडों की 36 ग्राम पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में भारी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनका प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निष्पादन किया गया। पूरे अभियान को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं

0: जनहितकारी बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि पिछले सहयोग शिविरों में विभिन्न शिकायतों से संबंधित कुल 3,764 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2,660 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि यह सहयोग शिविर आम जनता के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपनी समस्याओं को लेकर बिना किसी झिझक के इन शिविरों में आने की अपील की है। राज्य सरकार की ओर से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 5 जून तक विशेष स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिवसीय अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। उप विकास आयुक्त स्वप्निल ने सभी संबंधित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कर्मियों से इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी से ही हम एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में बहेरी प्रखंड के बनडेहली गांव में आयोजित 15 दिवसीय लोड़ी महोत्सव 2026 का सफल समापन हो गया। महोत्सव के अंतर्गत 12 से 15 मई तक विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नामचीन कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य अब पूरी तरह सम्पन्न हो चुका है। रेल सुरक्षा आयुक्त के निरीक्षण और सफल ट्रायल के बाद सबसे पहले इस रूट से मालगाड़ी को गुजारा गया। इसके बाद अब रेल गाड़ियों का परिचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। जिले में नीली क्रांति को बढ़ावा देने और मत्स्य पालन को आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मत्स्य निदेशालय और बिहार एक्वाकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के संयुक्त सहयोग से जिले में मत्स्य पालन के समावेशी और दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। अभियान के प्रथम चरण में जिला मत्स्य पदाधिकारी अनुपम कुमार, राहुल कुमार और स्वाति चौधरी की उपस्थिति में जिले के 9 चयनित मत्स्य पालकों को उन्नत नस्ल के स्पॉन उपलब्ध कराए गए। जिला मत्स्य पदाधिकारी अनुपम कुमार ने बताया कि जयंती रोह और अमृत कतला वैज्ञानिक चयन प्रजनन तकनीकी से विकसित उच्च उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियां हैं। सामान्य मछलियों की तुलना में इनकी विकास दर काफी तेज होती है, जिससे मत्स्य पालकों को कम समय में अधिक पैदावार और बम्पर मुनाफा मिलेगा। जिले में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार पूरी अकीदत, शांति और आपसी सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ। पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील इलाकों सहित विभिन्न जगहों पर सुरक्षा के कड़े और चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रमोहन पासवान के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने कड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने बीडीओ के 6 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बीडीओ पर करीब 89 लाख रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो उनकी ज्ञात कानूनी आय से 81% अधिक है। जांच टीम ने दरभंगा, मधुबनी और केवटी स्थित उनके पैतृक घर, सरकारी कार्यालय और व्यावसायिक परिसरों की गहन तलाशी ली है, जहां से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को भीषण और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है। हालांकि बारिश के साथ चल रही तेज आंधी और झोंकेदार हवाओं के कारण जिले के कई हिस्सों में पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने से जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है।
1: अभी आप सुन रहे थे दरभंगा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मणिकांत झा।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनूप जलोटा से भजन।

शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं तो एक नया अर्थ सामने आता है। अब तात्पर्य है शाम रंग से,

ध्यान दीजिएगा, मैं जो सरगम गाऊंगा पीयूष पवार जी संतूर पर आपको वही बजा के सुनाएंगे। और जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं।

0: अभी आप अनूप जलोटा के से भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
3: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you.

0: you at this special Akashvani series on completion of 12 years of NDA government.
1: Namaskar, thank you.
0: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, न सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
2: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हॉर्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारे से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गाँव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया, उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइन सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रो।

0: ताकि हर 3 साल पर यह कराया जाता है, ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई? ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखे तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता पंप होता है या नहरों से जाता है वो सिंचाई के काम में आता है, लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है,
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को, उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा, सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की, एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले, यानी MSP का जो घोषित मूल्य है अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता

0: तो किसान 27 या 3 हजार पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। तो ये सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन mechanisms, they have emerged as the central pillar of your India's farm to market strategy and have been successful.
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price.
1: Right.
2: And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market. And a good price that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that he revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires a good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore to particularly to take into account this particular problem.
1: Yes.
2: Because you need to see financial risk management. And what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is like for instance a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government trust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही हैं?
3: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। आप समझिए कि हमें लगता है कि 60 से

50% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हजार रुपया या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए,

0: कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में का, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़, और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात की सरकार ने सबको केसीसी दे रखा है, आपने जो कहा ना कि सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि केसीसी आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी केसीसी का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है, इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 लाख फार्मर्स हैव एनरोल्ड। एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग स्टेटिस्टिक इज दैट 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is a one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak, and this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce, in that whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is, for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments, they have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers, they have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishv hai usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports, $51 billion ho gaye hain.

0: इसमें जो प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स हैं उनका शेयर भी बढ़कर 20% को पार कर गया है। सो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड। सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ। फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है, PLI भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
1: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा। हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश जिसका more than 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है। अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है। अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा। तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है। यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है। इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा। कोई भी चीज टमाटर के तौर से, टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है। लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर। तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं।
0: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1,185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक, और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है, और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है। सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
1: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था और उस फंड का अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा। और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो, चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट हैं। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट। प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज। सो यू थिंक यू नो दिस काइंड ऑफ वेरी फोकस्ड अप्रोच दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग लुकिंग एट द वेरी वास्ट एंड वेरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes, you talked of the need for to go in for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for

0: अभी आप अनूप जलोटा से भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी ही देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
2: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय

0: तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।

0: न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2-3 ब्रांचेस।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या AFCAT.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज

भारद्वाज को सीबीएसई में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: India and hosts England will be played at Taunton tonight. The match will begin at 11 p.m. Indian time. The series is leveled at 1-1. Unified Payments Interface UPI has achieved 23.2 billion transaction counts in the last month. In a social media post, the Department of Financial Services thanked these citizens for embracing digital payments. UPI has emerged as world's largest real-time payments platform, anchoring country's digital economy. The India Meteorological Department, or IMD, has issued an orange alert predicting thunderstorm conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh tomorrow. The weather agency has predicted heavy to very heavy rainfall over Andaman Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Karnataka, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Saturday. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government forms panel to probe into procurement of services for on-screen marking system by CBSE, appoints Lokhande Prashant Sitaram as CBSE chairperson. India rejects third-party involvement in resolving boundary matters with Nepal. India successfully flight tests indigenous Rudram 2 air-to-surface missile. Prasar Bharati's Waves OTT crosses 1 crore users within 2 years of launch. 21 people killed in Russian strikes across Ukraine. And in women's cricket, India to take on hosts England in third and final T20 International at Taunton tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है. हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है. भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है. भारत ने फिजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है. प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सारेफीन का संगे मील पार कर लिया है. यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं. और खवातीन क्रिकेट में आज रात टॉन्टन में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा. अब खबरें तफसील से. हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम सिस्टम खिदमात की खरीद से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है. कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन राधा चौहान करेंगी. कमेटी से अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अमले और तरबियत के महकमे को पेश करने को कहा गया है. तलबा को फराहम करदा स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलात के वेरिफिकेशन का अमल और 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जाँच जारी है. यह सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जांच किए गए अपने जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल की हैं. तफसील हमारे नामनिगार से.
2: शरपंसन अनासर की जानिब से लगातार साइबर हमलों की वजह से रुकावट के बाद सीबीएसई पोर्टल जल्द ही लाइव कर दिया गया है. ताहम सीबीएसई ने यकीन दहानी कराई है कि वो तलबा की हर तरह से मदद को यकीनी बनाने के लिए लगातार चौकसी बरत रहा है. सीबीएसई ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज्यादा आसान तर्ज पर और बिला रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके. सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज्यादा सारिफिन की मदद कर रहा है. सोशल मीडिया पोस्ट में सीबीएसई ने बताया है कि 16,000 से ज्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं. सीबीएसई का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी. नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान.
1: इस दौरान सीनियर आईएएस अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है. जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे. उनकी तकरूरी राहुल सिंह की जगह हुई है जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी जिरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है. हुकूमत ने वरुण भारद्वाज को भी

0: सीबीएसई में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फराइज अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरीरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुद कफील, बाखबर और बासलाहियत बनाती है। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफदीन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हकीकी मानी में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी, इक्तसादी और तालीमी तरक्की करें।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों ने कबाइलियों की ज़िंदगी में यकसर तब्दीली लाई है और उनके लिए आला तालीम और नए मौके तक रसाई मुमकिन हो पाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फ़रोग देने के लिए उसकी निशानदेही करने, परवान चढ़ाने और सही मकाम अता करने पर जोर दिया।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के तहत भारत में खातिर खा तब्दीली लाई है। इस मुदत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में हम बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान भारत में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिमत में नुमाया तब्दीली हुई है जो हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। इन कोशिशों का मकसद ख़वातीन को सेहत, तालीम, रोज़गार के मौके, माली शमूलियत और क़यादत के शोबों तक रसाई को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 2015 में शुरू की गई थी ने लाखों ख़वातीन को अपना कारोबार शुरू करने और इसे वसअत देने के लिए बग़ैर ज़मानत के कर्ज हासिल करने के काबिल बनाया है। इस स्कीम के तहत रवा माली साल मार्च तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज मुस्तफिदीन को फराहम किए गए हैं जिनमें से 17 लाख करोड़ रुपए खवातीन को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसे अहम प्रोग्रामों ने मुश्तरका तौर पर खवातीन की बैंककारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्म तक रसाई को मजबूत बनाया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं जिनमें से तकरीबन 33 करोड़ अकाउंट्स खवातीन के नाम है। दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने नेपाल के वजीर आजम की भारत नेपाल सरहद से मुतालिक रायजनी और उसके बाद नेपाल की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरहद से मुतालिक मामलात के सभी पहलुओं से निमटने के लिए कायम शुदा बाहमी तरीक़ेकार मौजूद है। जनाब जायसवाल ने कहा कि हालांकि भारत नेपाल सरहद के तकरीबन 98% हिस्से की वाजह तौर पर हदबंदी हो चुकी है लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर काम होना है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन मुश्तरका बयान में गैर जरूरी तस्करे को भी मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज

के زیر انتظام इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के सिलसिले में जिनकी खुद कोई हैसियत ना हो उन्हें कोई बात कहने से गुरेज करना चाहिए। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज कल से भारत के 4 रोजा दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके हमरा खारजी उमूर, इकतसादी व मालियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासिलात व इत्तलात और नकलो हमल के महकमों के वजरा भी होंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि मोहतरमा रोड्रिगेज अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोतरफा बातचीत करेंगी। इस बातचीत में तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल, अद्वियात और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में इश्तराक के इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकज ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जाब्तों में तरमीमात को नोटिफाई कर दिया है। ये तरमीमात 180 दिन तक भारत आ रहे गैर मुल्की अफराद को मुल्क में अपने क्याम में तौसी की ख्वाहिश की सूरत में उन अफराद के वीजे की मुदत खत्म होने

0: खवातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 बैनुल अक्वामी मैच आज रात इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। भारत ने चेम्सफोर्ड में खेला गया पहला मैच 38 रन से जीतकर और इंग्लैंड ने ब्रिस्टल में खेला गया दूसरा मैच 26 रन से जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला खड़ा किया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सारिफिन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में आज रात टॉन्टन में तीसरे और आखिरी टी20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक। नाटक का विषय है रूह का रिश्ता। आइए सुनते हैं।

आमीन। शानदार ड्रामा जिसका उन्वान रूह का रिश्ता है, पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। तहरीर है नोमान हाशमी की और शुरका हैं एम एच रेहान, रुखसाना सिद्दीकी, अशफाक अहमद, सुनील कुमार सिन्हा और अर्चना सोनी।

0: हैंडसम।
1: हाय स्वीटी, कहो कैसी हो?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो?
1: बिल्कुल फर्स्ट क्लास।
0: फर्स्ट क्लास तो तुम हर इम्तिहान में लाती ही हो।
1: लेकिन तुम तो टॉप क्लास हो।
0: सब समझती हूँ। क्या मैं वाकई तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
1: अरे ये किसने कहा, तुम तो कयामत हो, कयामत।
0: और तुम कयामत से डरते हो क्यों?
1: तुम जैसी हसीन कयामत से डरना क्या?
0: तो फिर इस कयामत को गले क्यों नहीं लगा लेते?
1: जाने मन झुलस जाने का डर है।
0: दिल को करना है अगर सोजे मोहब्बत में कबाब, करवटी आग के बिस्तर पे बदलना सीखो।
1: हाँ अच्छा शेर है।
0: सच कहती हूँ डियर, तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी लगती है।
1: हाँ रोजी, जिंदगी तो शादी के बाद ही मुकम्मल होती है।
0: तो तुम अपनी और मेरी जिंदगी कम मुकम्मल बना रहे हो।
1: जब हमारी शादी हो जाएगी?
0: यही तो जानना चाहती हूँ कि कब तुम मुझसे शादी कर रहे हो।
1: तुम मुझसे शादी करोगी तो उस बेचारे दिलबर का क्या होगा? वो तो बेमौत मर जाएगा।
0: मरने दो, बहुत घमंडी है।
1: तुम पर तो बहुत लोग मरते हैं।
0: लेकिन मैं तो तुम पर मरती हूँ।
1: मुझे फांसी दिलवाओगी क्या? अच्छा मैं लाइब्रेरी चलता हूँ, बाय।
0: तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
1: अरे बाबा वक्त आने पर

0: दे दूंगा,
1: कहीं ना वक्त ना हो जाए।
2: हाय हैंडसम।
0: हाय हीरो।
2: अब मैं हीरो कहां रहा भाई, मैं तो जीरो बन गया हूँ।
0: यार जीरो की भी बड़ी अहमियत होती है, एक पर जीरो लगा दो तो 10 बन जाए और 10 पर जीरो लगा दो तो 100 बन जाए।
2: मैं हिंसे के दाएं नहीं बाएं वाला जीरो हूं। आजकल तुम्हारा और रोजी का रोमांस तो शबाब पर है।
0: रोमांस शबाब पर नहीं है, आताब शबाब पर है।
2: रोजी अभी यही नहीं तय कर पा रही है कि उसे कैसे लड़के से शादी करनी है।
0: ओह, इसीलिए वो अभी तक सिर्फ लड़कों को परखती फिर रही है।
2: अगर वो लड़कों को सिर्फ परखती फिरती तो कोई बात नहीं थी भाई, वो तो लड़कों को चखती फिर रही है।
0: क्यों, तुम्हें भी चखा होगा?
2: मुझे तो सिर्फ चखा ही नहीं बल्कि चट कर गई है। जरा उससे बचकर रहना, वो सिर्फ जख्म लगाना जानती है, मरहम नहीं।
0: जबकि वो एक डॉक्टर की बेटी है।
2: भाई डॉक्टर तो नहीं है ना।
0: अच्छा दिलबर, मैं जरा लाइब्रेरी जा रहा हूं।
2: मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तुम और भी जाओगे कहां? बाय द वे, तुम्हारी मंसूब का क्या हुआ जो तुम्हारी खालाजाद बहन से चल रही थी?
0: तरक्की पजीर है।
2: मुबारक हो, मुबारक हो।
0: घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे और रोजी के दरमियान से हट जाऊंगा।
2: वो तुम्हें हटने देगी जब ना?
0: देखते जाओ, वो खुद ब खुद हट जाएगी।
2: हाँ मैं भी देखूंगा।
1: सैम।
0: हाय स्वीटी, कैसी हो?
1: जिंदा हूँ, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही थी।
0: ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम।
1: इतना गुरूर अच्छा नहीं आफा।
0: तौबा तौबा, मैं और गुरूर, खुदा ना करे। मैं लाइब्रेरी में था और तुम्हें लाइब्रेरी से बैर है।
1: मुझे हर उस चीज से बैर है जो हमारे और तुम्हारे मिलने में हायल होती है।
0: ये भी अच्छी रही।
1: चलो कॉफी पीते हैं।
0: कहाँ?
1: कैंटीन में। और कहाँ?
0: वो भी कोई जगह है बैठने की?
1: फिर तुम जहाँ ले चलो।
0: हाँ आओ, उस दरख्त के नीचे बैठे, पेड़ की नाजुक डालियां हमें पंखे झलेंगी
1: और मैं तुम्हारे कांधे पर सर रख के सो जाऊंगी।
0: अरे तो क्या मैं रात भर यहीं बैठा रहूंगा?
1: सुना है तुम्हारी शादी तुम्हारी खालाजाद बहन से हो रही है।
0: बात चल रही है।
1: तुम्हें पसंद है क्या?
0: इसमें मेरी पसंद को कोई दखल नहीं है।
1: वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है।
0: तुमसे उसका क्या मुकाबला? तुम सुबह खैर हो, वो शब खैर। तुम सरोकद हो, वो पस्तकद। तुम हसीनो जमील हो, वो कभी हो अलील।
1: बस बस बस, और मेरी तारीफ मत करो वरना मैं मगरूर हो जाऊंगी।
0: गुरूर तो हुस्न की शान है।
1: लेकिन मेरी शान तो तुम हो आफाक।
0: अब हमें चलना चाहिए।
1: चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ।
0: मैं बेकार आदमी हूँ, कार पर बैठने से मुझे बुखार आ जाता है।
1: आज बुखार नहीं आएगा।
0: आज तो बुखार के साथ साथ खुमार भी आ जाएगा।
1: वो क्यों?
0: साथ में मैं से लबरेज मीना जो है।
1: चलो बैठो।
0: ये शास्त्री जी का दफ्तर है।
1: कौन शास्त्री जी?
0: अरे शहर के बहुत मशहूर पामिस्ट हैं, तुम इन्हें नहीं जानती?
1: वही तो नहीं जो अखबारों में पेशन गोईयां किया करते हैं?
0: हाँ वही।
1: तुम्हें उनसे क्या काम?
0: सुना है ये हाथ की लकीरें देखकर मुस्तकबिल की सही बातें बता देते हैं।
1: तो
0: ये डार्लिंग कि हम उनसे अपनी शादी के बारे में पूछेंगे।
1: गुड आइडिया, चलो चलते हैं।
0: आदाब शास्त्री जी।
1: आदाब।
3: आदाब आदाब, आइए पधारिए।
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया।
3: फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: हम अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं।

0: जरा हाथ तो दिखाइए।
1: रोजी पहले तुम हाथ दिखाओ।
2: नहीं, पहले तुम हाथ दिखाओ।
0: आप दोनों पति पत्नी हैं?
1: अभी तक तो नहीं है,
2: लेकिन जल्दी हो जाएंगे।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। अपना हाथ दिखाइए।
2: पहले आप आपका हाथ देखिए प्लीज।
1: नो, नहीं, लेडीज फर्स्ट।
0: अब तो हाथ बढ़ा ही दीजिए मिस
2: रोजी। ठीक है, लेकिन आप माजी के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ मुस्तकबिल, वो भी शादी के बारे में।
0: जैसे आपकी इच्छा। हाथ की रेखाएं तो बड़ी अच्छी है। आपका वैवाहिक जीवन तो बड़ा ही सुखमय रहेगा। संतान भी 4-5 होंगे।
1: हाँ, शादी के बाद तो लाइन लगती ही है। वैसे इनकी शादी कब तक होगी?
0: अगले बरस के अंत तक।
2: और कुछ पहले नहीं हो सकती?
0: रेखाएं मैं नहीं बनाता मिस। कुछ और पूछना है तो पूछिए।
2: जी कुछ नहीं।
0: आप अपना हाथ तो बढ़ाइए शर्मान।
1: एक के हाथ से काम नहीं चल जाएगा।
0: बिल्कुल नहीं चलेगा श्रीमान, बिल्कुल नहीं। लाइए, आपका हाथ देखूं।
1: हाँ लीजिए।
0: मैडम कृपया आप जरा कमरे के बाहर बैठेंगी?
2: क्यों?
0: बस यूं ही, जरा इनसे खास बात बतानी है।
2: शादी ही से मुतल्लिक ना?
0: जी हाँ, विवाह के ही संबंध में।
2: तो फिर मैं भी सुनूंगी।
1: हाँ हाँ, इन्हें रहने दीजिए।
0: जैसी आप लोगों की इच्छा।
1: शादी से मुतालिक कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं।
0: हाथ की रेखाएं बताती हैं कि आपकी 2 शादी होगी।
1: नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
0: ऐसा ही है श्रीमान।
2: जरा गौर से देखिए शास्त्री जी।
0: बहुत गौर से देखने के बाद ही बताता हूँ मिस
2: रोजी।
0: हाँ हाँ, मिस रोजी।
2: आफा, क्या तुम शादीशुदा हो?
1: बिल्कुल नहीं भाई, खांटी कुंवारा हूँ।
2: फिर 2 शादी की वजह?
1: ये शास्त्री जी ही बताएंगे।
0: आपके हाथ की रेखाओं के अनुसार आपकी पहली पत्नी विवाह के 1 बरस के अंदर देहांत कर जाएगी।
2: ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता।
1: शास्त्री जी, रेखाएं बदल भी तो सकती हैं।
0: अभी इसकी संभावना नहीं है श्रीमान।
1: मैं इन रेखाओं को खुरच कर मिटा दूंगा।
0: इससे रेखाओं का प्रभाव तो समाप्त नहीं हो जाएगा श्रीमान।
1: मैं ये हाथ ही कटवा दूंगा।
0: यह आपके हाथ की रेखाएं नहीं बताती हैं।
1: काश मैं यहां आता ही नहीं।
2: ऐसा न कहो, अगर हम यहां नहीं आते तो हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में ही रहता।
1: जान लेने के बाद तो अंधेरा और भी गहरा गया है।
2: चलो चलते हैं।
1: हाँ चलो। कितने पैसे हुए शास्त्री जी?
0: मात्र 200 रुपए।
1: ये लीजिए।
0: धन्यवाद।

0: क्या सोच रहे हो आफा?
1: यही कि मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं चाहिए।
0: क्यों?
1: मैं शादी करके किसी की मौत की वजह नहीं बनना चाहता।
0: इंसान अपनी मौत आप मरता है, दूसरा उसकी मौत की वजह नहीं बनता।
1: फिर भी मेरा ज़ुहैर गवारा नहीं करता।
0: नहीं, तुम्हें शादी करनी ही होगी और जरूर करनी होगी।
1: क्या अब भी तुम उससे शादी करने को तैयार हो?
0: मैं अपनी बात थोड़ी ही कर रही हूँ।
1: इसका मतलब है तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती?
0: नहीं नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, लेकिन 1 साल बाद।
1: अभी क्यों नहीं?
0: बात दरअसल ये है आफाक, कि मैं तुम्हारे साथ एक लंबी उम्र गुजारना चाहती हूँ।
1: साफ क्यों नहीं कहती कि तुम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती?
0: ये भी सही है।
1: वसल के चंद लम्हात हिजर की लंबी उम्र से कहीं बेहतर होते हैं।
0: बस 1 ही साल की तो बात है, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।
1: मैंने तुम्हारा मतलब नहीं समझा।
0: तुम ऐसा करो, अपनी खालाजात बहन से शादी कर लो। वो तो 1 साल के बाद मर ही जाएगी, इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी।
1: ओह, तो ये बात है।
0: तुम उसे पसंद भी नहीं करते,

0: तरह वालदैन की बात भी रह जाएगी और हमारा काम भी बन जाएगा।
1: ख्याल तो अच्छा है।
0: शादी मुबारक हो आपा।
1: शुक्रिया, तुम्हें भी मुबारक हो।
0: अपनी बेगम से नहीं मिलवाओगी?
1: मेरी होने वाली बेगम तो तुम ही हो।
0: मैं होने वाली की नहीं, जो हो चुकी उसकी बात कर रही हूँ।
1: ओह अच्छा, जब चाहो तुम्हारा घर है।
0: बुलाओगी? नहीं,
1: आज ही आ जाओ, मैं शाम की चाय पर इंतजार करूंगा।
0: ओके, बाय हैंडसम।
1: बाय स्वीटी। शबनम, शबनम कहाँ हो डार्लिंग?
2: क्यों इतने जोर जोर से डार्लिंग डार्लिंग पुकार रहे? और लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे?
1: अरे कुछ दिन तो डार्लिंग डार्लिंग पुकार लूं, फिर तो मुन्ने की अम्मा या मुन्नी की अम्मा कहकर पुकारना ही पड़ेगा। सुनो, आज मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त तुमसे मिलने आ रही है।
2: प्यारी दोस्त या सिर्फ प्यारी?
1: और अच्छे नाश्ते का इंतजाम कर लोगी?
2: ठीक है, और कुछ?
1: जरा अच्छा सा मेकअप भी कर लोगी?
2: मेकअप कर लेने से मैं खूबसूरत हो जाऊंगी।
1: ये भी तुमने सही कहा, भला शबनम को मेकअप की क्या जरूरत? वो तो जिस चीज पर गिरती है उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देती है।
2: मैं गिरने वाली शबनम नहीं हूँ।
1: हाँ भाई, तुम तो गिराने वाली शबनम हो।
2: अब तक कितनों को गिराया है मैंने?
1: क्या पता, जिसने भी तुम्हें देखा होगा वही दिल थाम कर उलट गया होगा।
2: लेकिन तुम तो अभी तक सीधे हो।
1: कौन?
0: मैं रोजी।
1: आओ भाई अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही राह देख रहा था।
0: शुक्रिया।
1: शबनम, ओ शबनम, आओ देखो कौन आया है।
2: कौन आया है?
1: भाई जिनका इंतजार था।
2: अभी आई।
0: आवाज तो बड़ी मीठी है।
1: बस आवाज ही मीठी है।
2: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: इनसे मिलो, यही मेरी सबसे प्यारी दोस्त रोजी हैं, और ये मेरी बेगम शबनम।
2: बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आप वाकई बड़ी प्यारी हैं।
0: शुक्रिया, लेकिन आपके हुस्न में तो शबनम की तबना की है।
2: और आपके हुस्न में शोले की तमाजत।
0: आप तो बड़ी प्यारी बातें करती हैं।
2: जब मुकाबिल कोई प्यारा इंसान हो तो प्यारी बातें ही निकल जाती हैं। आप दोनों बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ।
0: पहले ये मामूली सा तोहफा तो कबूल कीजिए, शादी मुबारक हो।
2: इस तोहफे की क्या जरूरत थी, आपकी दुआएं ही काफी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अरे भाई जरा इसे खोल कर तो देखो।
2: प्यारे इंसान का तोहफा भी प्यारा ही होगा।
0: ऐसी कोई बात नहीं।
1: हाथ कंगन को आरसी क्या,
2: आप खुद ही खोल कर देखिए ना।
1: लाओ। अरे वाह, नई शादीशुदा जोड़े की मूर्ति। बहुत खूब, बहुत खूब।
2: मैंने गलत नहीं कहा था।
1: वाह वाह, इसके नीचे जो शेर लिखा है इसने तो इस मूर्ति की अहमियत और भी बढ़ा दी है।
2: कौन सा शेर?
1: बुत परस्ती गुनाह है लेकिन फन परस्ती कोई गुनाह नहीं।
2: बुत परस्ती गुनाह है लेकिन फन परस्ती कोई गुनाह नहीं। वाह वाह, वाकई बहुत अच्छा शेर है। सिर्फ इस शेर की वजह से इस तोहफे के कदर व कीमत में इजाफा हो गया है।
1: ये तुम्हारा शेर है रोजी?
0: अरे नहीं, मैं शायरी कहाँ करती हूँ।
2: अच्छा, अब मैं चाय लाने जा रही हूँ।
0: तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था आफा?
1: मैं और झूठ, कैसी बातें कर रही हो?
0: और नहीं तो क्या, किस कतर हसीन है तुम्हारी शबनम।
1: तुमसे ज्यादा तो नहीं?
0: नहीं, मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है।
1: मेरी नजर में तो तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं।
0: मैं सब समझती हूँ।
2: क्या समझती है रोजी बहन?
0: अरे कुछ भी नहीं, बस यूं ही।
1: भाई ये तुम्हारे हुस्न की तारीफ कर रही हैं।
2: मेरा तो हुस्न से दूर का भी वास्ता नहीं है। हाँ, रोजी बहन के अंग अंग से हुस्न टपक रहा है।
0: बिल्कुल।

0: गलत। अगर मेरे अंगांग से हुस्न टपकता होता तो मेरे पैरों के पास की जमीन गीली नहीं हो जाती।
1: नाश्ता आपके दस्ते मुबारक का मुंतजिर है।
2: आप रे, मुझे तो तुम लोगों की गुफ्तगू समझने के लिए लोगत लेकर बैठना पड़ेगा।
0: वाह, क्या शानदार नाश्ता बनाया है आपने।
1: शायद इसीलिए आपने कुछ खाया ही नहीं।
0: पेट तो आपकी बातों ही से भर चुका था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
2: फिर आना।
0: एक बार तो आना ही पड़ेगा।
1: क्या मतलब?
2: अरे ये मजाक कर रही हैं।
0: जब आपके यहाँ नया मेहमान आएगा।
1: अभी तो एक नई मेहमान आप ही आई हुई हैं।

0: कैसी तबीयत है शबनम की?
1: अभी तक खतरे से बाहर नहीं।
0: और वो डॉक्टर ने क्या कहा?
1: खून की बहुत कमी है, बच्चा भी पेट में उलट गया है।
0: यानी अब हमारी किस्मत पलटने वाली है।
1: क्या कहा? मैंने कुछ समझा नहीं।
0: जल्दी समझ जाओगे।
1: अभी मैं बहुत परेशान हूँ रोजी।
0: चंद ही दिनों की परेशानी है, फिर तो तुम्हारी चांदनी ही चांदनी होगी।
1: खुदा मालूम चांदनी होगी या अंधेरी रात, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता।
0: क्या वाकई कुछ नजर नहीं आता?
1: हाँ, सिर्फ दिन में तारे नजर आते हैं।
0: शबनम को जैसे ही कुछ हो जाए मुझे फौरन खबर करना।

0: ये आपकी स्वीटी कौन है जनाब?
1: तुम उससे मिल चुकी हो।
0: कौन? वही रोजी?
1: हाँ वही।
0: आपको बहुत पसंद है?
1: पसंद थी।
0: झूठ मत बोलिए, आप अब भी उसे पसंद करते हैं?
1: मेरी बात का यकीन करो।
0: जब आप उसे पसंद करते थे तो उसे शादी क्यों नहीं की?
1: एक शास्त्री जी ने मुझे रोजी की मौजूदगी में मेरा हाथ देकर बताया कि मेरी पहली बीवी शादी के एक साल के अंदर इंतकाल कर जाएगी।
0: तो आपने इसलिए मुझसे शादी की कि एक साल के अंदर मेरे मर जाने के बाद आप दोनों शादी रचा लेंगे?
1: मैं नहीं, सिर्फ रोजी।
0: रोजी क्या दीवार से शादी करेगी? मैं सब समझती हूँ।
1: अरे बाबा, अब रो क्यों रही हो? एक साल तो गुजर चुका है।
0: और मैं अब तक नहीं मरी, इसी बात का दुख है ना आप लोगों को? मेरा गला क्यों नहीं घोट देते? या फिर दवा में ही जहर मिलाकर पिला दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
1: हाँ, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो स्वीटी, कहो कैसी हो?
2: हाय हैंसम, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे इंतजार में अब तक जिंदा हूँ।
1: अब इंतजार की घड़ियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं।
2: अच्छा?
1: हाँ रोजी, आकर शबनम का आखिरी दीदार कर लो।
2: अल्लाह का शुक्र है, आखिर पुतिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार बरसों से था। अभी आई हैंसम।
0: आप रोजी को मुझे मारने के लिए बुला रहे हैं? अब कब में ही आराम मुझे मिलेगा? मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे?
1: कहो।
0: अगर मारना ही है तो आप अपने हाथों से मारिएगा, मैं आपके हाथों से मरना चाहती हूँ।
1: बस, और कोई ख्वाहिश हो तो बता दो।
0: हाँ, मेरे मुन्ना को मेरी कमी महसूस मत होने दीजिएगा।
1: कौन? अभी आता हूं। हाय स्वीटी, आओ आओ।
2: शबनम खत्म हो गई क्या?
1: नहीं, हमें उसे खत्म करना है।
2: कैसे?
1: तुम उसका गला घोट कर मार डालोगी।
2: नहीं नहीं, उसे ये काम नहीं होगा।
1: तो ठीक है, जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहो, शबनम अभी मरने वाली नहीं है।
2: ऐसा ना कहो, मैं तुम

0: बगैर जिंदा नहीं रह सकते।
1: फिर मैं क्या करूं?
0: उसकी दवा में जहर क्यों नहीं मिला देते?
1: अब इस वक्त जहर कहां से लाऊं?
0: रात में उसकी दवा में जहर मिला के पिला देना, वो सोई की सोई रह जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा।
1: नहीं, नहीं। मैं इस कश्मकश को अभी इसी वक्त खत्म करना चाहता हूँ।
0: फिर तो तुम्हें ही शबनम का गला घोटना होगा।
1: ठीक है, आओ शबनम के कमरे में चलते हैं, तुम मेरी मदद करना।
0: चलो।
2: आप लोग क्यों आए हैं?
1: रोजी तुम्हें देखने आई है।
2: मैं सब समझती हूँ, आप लोग मुझे मारने आए हैं।
1: तुम डरो नहीं, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। मुझे अफसोस है शबनम, पर क्या करूं, दो में से किसी एक का गला तो घोटना ही पड़ेगा, या तो मोहब्बत का या बीवी का।
2: मुझे खुशी है कि मैं आपकी खुशी के लिए आप ही के हाथों मर रही हूँ। आप
1: अरे
2: खुश
1: शबनम, शबनम, अरे आंखें खोलो शबनम, मेरी प्यारी शबनम, ये तो बेहोश हो गई।
0: अरे यही अच्छा मौका है, गला घोट दो उसका।
1: खबरदार, अगर शबनम मर गई तो मैं तुम्हारा भी गला घोट दूंगा।
0: क्या कहा?
1: हाँ, जल्दी से पानी लाओ।
0: पानी टेबल पर है, लो।
2: मैं कहाँ हूँ?
1: मेरी बाहों में।
2: आप भी मर गए?
1: नहीं शबनम, हम दोनों जिंदा हैं।
2: आपने मुझे नहीं मारा?
1: पागल हुई हो? कोई अपनी जिंदगी को मारता है? तुम तो मेरी जिंदगी हो शबनम।
2: मेरे अच्छे अफा।
1: ना शबनम ना, अब हंस दो, हंस दो, शाबाश शाबाश।
2: आप बस मुझे, मुझे गुदगुदी लग रही है।
1: रुको रोजी,
3: बंदगी में
0: अब मेरा यहाँ क्या
1: है? रोजी,
2: हाँ रोजी बहन, रुक जाइए,
1: आओ बैठो रोजी, हम तो तुमसे कुछ कहना है।
0: अब कहने को रखा ही क्या है अफाक,
1: अभी तो हकीकत बयान करनी है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था
3: और हमेशा ही,
1: और तुमसे शादी भी करना चाहता था,
3: काम है,
1: लेकिन तुमने शास्त्र जी की बातों में आकर शादी करने से इनकार कर दिया। मेरी शादी शबनम से हो गई।
2: लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? मैं तो मरने के लिए तैयार थी।
1: तुमसे शादी के बाद शबनम, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ जिस्मों का नहीं बल्कि रूहों का बन चुका है। हाँ रोजी, अगर मैं जिस्म हूं तो शबनम मेरी रूह है, और शबनम जिस्म है तो मैं उसकी रूह हूं।
2: क्या सच?
1: हाँ शबनम, अगर तुम मर जाती तो मेरे जिस्म से रूह निकल जाती और मैं भी मर जाता।
0: तुम शबनम को इतना चाहने लगे हो?
1: हाँ रोसी, हर शौहर अपनी बीवी को इतना ही चाहता है। तुम भी शादी करके देख लो,
0: अब मैं
1: तुम्हारा शौहर भी इससे कम नहीं चाहेगा।
0: अब मैं किससे शादी करूंगी?
4: मोहब्बत है अगर इल्जाम तो इल्जाम लिख लेना, तुम अपने चाहने वालों में मेरा नाम लिख लेना।
1: हेलो, तुम्हारा दिल भर आ गया।

0: लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजी बिहार एक अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार।

श्रोताओं को कुमुद का नमस्कार। आज प्रस्तुत है लोक गीतों में भक्ति रस। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या की बात चिरकाल से चली आ रही है। सृष्टि के रचयिता सर्वशक्तिमान उस ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वालों ने तरह तरह से उसे याद किया। कहीं लीलाओं को आधार बनाया तो कहीं संसार की नश्वरता को। बड़े सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले भक्तों की भीड़ शिव भोला के द्वार पर गुहार लगा रही है। धर्म कर्म की बेला हो गई, हे प्रभो तुम्हारे गण भूत प्रेत सभी तो जग गए। बम बम की गंभीर ध्वनि से मंदिर का प्रांगण गूंज उठा। अब तो पलकें खोलो,

भजना नंदी भक्तों की दूसरी टोली दरस परस मज्जन अरुपाना की लालसा लिए देव नदी गंगा की ओर बढ़ रही है। एक कटोरी है सोने की और दूसरी रुपए की। सोने की कटोरी में है अगर चंदन और रुपए की कटोरी में सुगंधित तेल। गौरी ने अंग प्रत्यंग में शीतल चंदन का लेप लगाया, शिव की जटा से निकलती गंगा की धार में स्नान किया और सुगंधित तेल से अपने लंबे लंबे केश संवारे। इस पार गंगा है और उस पार जमुना, दोनों के बीच की भूमि में फूल खिल रहे हैं। राधा और रुक्मिणी फूल लोढ़ती हैं और बनमाली कृष्ण खड़े देख रहे हैं। कैसी अजीब बात है, शिव पार्वती और गंगा की चर्चा के बीच कहां से तो जमुना आ गई। जमुना आई तो कृष्ण भी खड़े हो गए और जब कृष्ण आए तो राधा रुक्मिणी कैसे रुकती। भक्त हृदय पागल होता है, भावों का कोई ओर छोर नहीं। विह्वल मन जाने कहां कहां की सैर कर लेता है।

कृष्ण कन्हैया का ध्यान आते ही इनकी प्यार भरी करतूतों का भी ख्याल आया। कृष्ण की लीलाओं का अंत नहीं, सब एक से एक बढ़ चढ़कर। गोपियों को छकाने का इरादा हुआ तो मोहिनी रूप धारण किया, आभूषणों से अंग सजाए, पान से होंठ लाल किए, सुरमा डालकर आंखों को सुरमई बनाया, पैरों में लाल महावर और हाथों में मेहंदी रचाई, दर्पण में मुंह देखा और अपनी छवि पर आप ही मुग्ध होकर हंस पड़े। अभी देखिए ये और क्या करते हैं। सोलहों सिंगार से परिपूर्ण घुमावदार लहंगे का छोर पकड़ा और मस्तानी चाल से ग्वालनों के बीच विराजमान हुए। लेकिन ये क्या, वृंदावन की कुंज गली में तो पकड़े गए। एक सखी ने शोर मचाया, जरा देखो तो इस छलिए को, बड़े आए थे औरत बनकर।

जीवन भी कैसा अजीब है, ऐसे श्याम सुंदर को भूलकर संसार में भटकता रहता है। पानी के बुलबुले जैसा ये जीवन, मैं और मेरा, तू और तेरा की परिधि में चक्कर काटता मन। ये कैसी दीवानगी है, आने के साथ जाना और बनने के साथ मिटना जुड़ा है। इस नश्वर शरीर की सफाई और सज्जा से कोई बात नहीं बनती। साफ करना हो तो मन दर्पण पर जमी धूल को साफ करना चाहिए।

घट घट वासी कण कण में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान के निकट सभी नतमस्तक हैं। कोई कृष्ण के रूप में, कोई राम के रूप में, तो कोई प्रकाश पुंज के रूप में उसकी आराधना करता है। ये तो मनमाने की बात है ना। मिथिला वासियों ने उसे पाहुन के रूप में प्राप्त किया। जनक नंदिनी जानकी से श्री राम का पावन परिणय हुआ। कोटि कोटि कामदेव को लजा देने वाला श्री राम का सौंदर्य जनकपुरी की ललनाओं को मुग्ध किए दे रहा है। श्री राम के मधुर बोल, रसधार बरसाती हंसी, चांदनी को फीका कर देने वाली सलोने मुख की कांति ने सबके दिल चुरा लिए हैं। बस एक बार मेरी ओर निहार ले, सबकी यही लालसा है। काश फूलों से भी कोमल इस श्यामल गात को अपलक देखते देखते जिंदगी बीत जाती।

रे मन, उस परम तत्व से प्रेम करना सीख जिससे हम उत्पन्न हुए हैं और जिसमें विलीन होंगे। पान में सुपारी भी है और चूना भी, लेकिन बिना कत्थे के लाली नहीं आती। नैहर में भाई भतीजा भरे हैं, पर माँ के बिना सब सूना है। ससुराल में ज्येष्ठ देवर सब उपस्थित हैं, लेकिन एक पुरुष के बिना सब उजाड़ है। ऐसा ही तो इस शरीर के साथ भी है। प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दिन तन के पिंजरे से मन का पंछी भाग निकलेगा, दूर, बहुत दूर।

0: ही 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: गूंजी बिहार, अभी आप लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं शक्ति फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है RD बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला गीत हमने लिया है कामचोर फिल्म से, किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला गीत हमने लिया है रजिया सुल्तान फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसके गीतकार हैं जैन निसार अख्तर। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अगला गीत हमने लिया है ब्लैकमेल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र किशन और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: अगला गीत हमने लिया है वो कौन थी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी हसन खान के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।
1: बड़े खुद्दार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी के गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और न मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।

0: हम दोनों फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति